नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 42 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब सुनिए हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर

0: आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देशभर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैप महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भारत माता हमारी जननी, जिसकी माटी में है जीवन की कहानी, हिमालय जिसका मुकुट है, सागर जिसकी चरण रज है, वो पावन भूमि भारत माता जिस पर हर भारतवासी गर्व करता है। वीरों की जननी, संतों की धरती, ज्ञान त्याग और तप की मूर्ति, मातृभूमि के कण कण में बलिदान की गाथा गूंजती है। भारत माता के चरणों में शीश झुकाना ही सच्ची देशभक्ति है।

हे कृष्ण, जब तुम साथ थे तब वृंदावन की हर कुंज सुंदर थी, हर पत्ता मधुर था, हर हवा में आनंद था। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भय विषम ज्वाल की पुंजे। सूरदास जी कहते हैं, भगवान कृष्ण के बिना वृंदावन की कुंजे भी शत्रु जैसी लगने लगी हैं। जब जीवन में भगवान का प्रेम या आध्यात्मिक सहारा नहीं होता, तब धन, रिश्ते, संसार सब अधूरा महसूस होता है।

माया महाठगनी हम जानी, तिरुगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। माया महाठगनी। संत कबीर की ये प्रसिद्ध पंक्ति कि माया दुनियावी मोह लालच भ्रम इंसान को ठग लेती है और उसे सत्य से दूर कर देती है। माया बहुत बड़ी ठग है, वो तीन गुणों सत्व रज तम के जाल में फंसाकर इंसान को भ्रमित करती है। उसकी बातें मीठी लगती हैं, इसलिए मनुष्य आसानी से उसके पीछे चल पड़ता है।

गढ़ से मीरा बाई उतरी हाथ लिए तलवार, राणा जी से लड़न चली छोड़ दियो घर द्वार। मीराबाई की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों में मीराबाई के साहस, आत्मसम्मान और कृष्ण भक्ति को दिखाया गया है। वे समाज और राज परिवार के बंधनों से नहीं डरती। भगवान कृष्ण के प्रेम और भक्ति के लिए वे हर संघर्ष को करने को तैयार हैं। मीराबाई किले से बाहर निकलती हैं और हाथ में तलवार लिए हुए हैं। वे राणा जी के विरोध में खड़ी होने के लिए घर, परिवार और राजमहल का त्याग कर देती हैं।

मनुष्य जब संसार के सहारों से निराश हो जाता है तब वो ईश्वर की ओर देखता है। लेकिन भक्ति केवल संकट में पुकारना नहीं बल्कि विश्वास बनाए रखना भी है। कब लोगे हमारी खबरिया बजरंग बली। हनुमान जी की कृपा का अर्थ हमेशा तुरंत चमत्कार होना नहीं होता। कई बार वे हमें धैर्य देते हैं, साहस देते हैं, सही मार्ग पर टिके रहने की शक्ति देते हैं।

0: ये था भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
1: सहयोग मानव जीवन का मूल मंत्र है, जिसके बिना न व्यक्ति की यात्रा पूर्ण होती है और न ही समाज की संरचना सुदृढ़ बन पाती है। जीवन की प्रत्येक उपलब्धि के पीछे कहीं न कहीं सहयोग का अदृश्य किंतु सशक्त हाथ अवश्य होता है। मनुष्य की शक्ति उसकी अकेली क्षमता में नहीं बल्कि सामूहिक सामर्थ्य में निहित है। इसी सत्य को हमारे वैदिक मनीषियों ने अत्यंत प्रभावशाली शब्दों में उद्घोषित किया। संगच्छध्वम् संवद्ध्वम् सम वो मनांसि जानताम, अर्थात हम साथ चलें, साथ बोलें और हमारे मन परस्पर एक दूसरे से जुड़े हों। यही सहयोग का मर्म है, विचारों की एकता, भावनाओं का सामंजस्य और कर्मों का समन्वय। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अकेले रहकर न पूर्ण हो सकता है न सुखी। कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु कर्मों की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब उसमें सहयोग का भाव समाहित हो। इसीलिए

0: योग से ही सृष्टि का संतुलन बना हुआ है। एक अकेली बूंद क्षणिक होती है, किंतु अनेक बूंदें जब मिलती है तब वह नदी बनकर कठोर पर्वतों को भी मार्ग दे देती है। इसी भाव को शास्त्रों ने सरल सूत्र में कहा, एकः वृक्षो न वनम्। एक वृक्ष वन नहीं कहलाता, अनेक वृक्षों से ही वन की शोभा होती है और शक्ति और उपयोगिता प्रकट होती है। यही सत्य मानव समाज पर भी लागू होता है। सहयोग का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जहां मैं की भावना प्रबल होती है, वहां हम की भावना दुर्बल पड़ जाती है। शास्त्र इसीलिए चेतावनी देते हैं, अहंकारः पतनस्य मूलम्। अहंकार व्यक्ति को अलग करता है, जबकि सहयोग जोड़ता है। इसी कारण शास्त्र विनम्रता को महत्व देते हैं। विनयः भूषणम् नरस्य। विनम्रता वह आभूषण है जो मनुष्य को सहयोग के योग्य बनाता है। जहां विनय होता है वहीं संवाद होता है, और जहां संवाद होता है वहीं समाधान संभव होता है। परिवार में सहयोग से प्रेम, विश्वास और संस्कार पुष्ट होते हैं। जब माता पिता और संतान एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तब परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं रहता, बल्कि संस्कारों की सजीव पाठशाला बन जाता है। विद्यालयों में सहयोग से ज्ञान का विकास होता है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम्। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब विनम्रता और सहयोग की भावना उत्पन्न करें। कार्य क्षेत्र में सहयोग से परिश्रम फलदायी बनता है, और समाज में सहयोग से स्थिरता तथा शांति स्थापित होती है। भारतीय संस्कृति का मूल चिंतन भी सहयोग पर आधारित है। हमारी प्रार्थनाएं केवल व्यक्तिगत कल्याण तक सीमित नहीं, बल्कि समष्टि के मंगल की कामना करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। यह केवल एक श्लोक नहीं है, बल्कि सहयोगमय जीवन दृष्टि है, जहां किसी एक का सुख भी सबके सहयोग से ही संभव है। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, किंतु जब वह सहयोग से रहित हो जाती है तब वह संघर्ष और वैमनस्य को जन्म देती है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वही है जिसमें पराजित को भी सम्मान मिले और विजेता में विनम्रता बनी रहे। इसीलिए कहा गया है, विजयः विनयेन शोभते। विजय तभी शोभनीय होती है जब उसके साथ विनय और सहयोग जुड़ा हो। सच्चा सहयोग वही है जहां बिना कहे किसी की आवश्यकता समझ ली जाए, जहां सफलता का श्रेय सब में बांट लिया जाए, और जहां असफलता के क्षणों में भी साथ न छोड़ा जाए। ऐसा सहयोग मनुष्य को संवेदनशील बनाता है और समाज को मानवीय स्वरूप प्रदान करता है। महात्मा गांधी के शब्दों में, किसी समाज की महानता इस बात में नहीं मापी जाती कि वहां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कितना आगे है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वहां सबसे दुर्बल व्यक्ति को कितना सहयोग प्राप्त होता है। यही विचार भारतीय चिंतन की आत्मा है। अतः आज आवश्यकता है कि हम सहयोग को केवल भाषणों तक सीमित न रखें, उसे अपने आचरण का संस्कार बनाएं, क्योंकि सहयोग से व्यक्ति महान बनता है, समाज सुदृढ़ होता है और राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। हम सब सहयोग की भावना से युक्त हों, एक दूसरे का परस्पर सम्मान करें और समन्वय के माध्यम से उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ें। जब सहयोग हमारा स्वभाव बन जाता है, सम्मान हमारा व्यवहार बन जाता है और समन्वय हमारा मार्ग, तभी व्यक्ति का कल्याण, समाज की सुदृढ़ता और राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित होती है।
1: ये था चिंतन। आलेख था रीना जिंदल का और वाचक थे मुकाम सिंह चौहान। लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातें। इसमें आज जानकारी दी जा रही है जीवामृत और घन जीवामृत के बारे में। वाचन है तुलसा दरगैया का।
2: किसान भाइयों, आज हम बात करांगा जीवामृत न घन जीवामृत कसो बनावा। तो सबसे पहले बात करा प्राकृतिक खेती की। तो भाई बहनों, प्राकृतिक खेती से जमीन को स्वास्थ्य मजबूत रहे, न कभी जमीन स्वस्थ रहेगा तो हमारा जो पौधा छे वो भी स्वस्थ रहेगा, न उनमें कीट बीमारी न मौसम की विपरीत स्थिति से लड़ने की क्षमता भी आई जाएगा। एक ही खेती का लेना कोई भी बीज बाजार से हमका खरीदना नहीं पड़ता है, जेका से हमका लागत भी कम लगज, न पैदावार भी विषमुक्त रह, जो का कोई विषैला पदार्थ नहीं रहता है। साथ ही भाई बहन, कम लागत प्राकृतिक खेती में दुई प्रकार की खाद तैयार करी सकान, जेको नाव छे एक जीवामृत न दूसरी घन जीवामृत। इन्हीं पद्धति से एक देसी गाय का एक दिन का गोबर न गोमूत्र से एक एकड़ की खाद तैयार करी सकान। देसी गाय का एक ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु रहज, जो कि जर्सी या एचएफ का गोबर से 500 गुना ज्यादा रहज। दूध नहीं देने वाली जो देसी गाय रहे

0: ओका गोबर में जीवाणु आरु ज्यादा मात्रा में रहे तो हम पहला बात करा जीवामृत बनाने का बारे में। जीवामृत खाद नहीं है बल्कि असंख्य सूक्ष्म जीवाणु को विशाल भंडारण है, मतलब कि एक में बहुत सारा सूक्ष्म जीवाणु रहे जो हमारी फसल का लेना अमृत का समान छे। एका लेना तो एको नाव जीवामृत रखियो। इना सूक्ष्म जीवाणु मट्टी पानी न हवा सी पोषक तत्व नख अवशोषित करी न पौधा नख उपलब्ध कराड़ा। जीवामृत बनाना का लेना भाई सामग्री हम कई लगागा वो भी बताई देवा। एक कलन हमका लगागा देसी गाय को गोबर 10 किलो का करीब, देसी गाय को गोमूत्र 8 लीटर, गुड़ 2 किलो, बेसन 2 किलो, बड़ा पेड़ की जड़ की पास की जो मट्टी लेवा वो 1 किलो न पानी करीब लेवा हम 180 लीटर। अब जो ये सामग्री छे उन सभी सामग्री ख छायादार जगह पर प्लास्टिक का ड्रम डाली न घोड़ी लेवा। 4 दिन तक सुबह शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी का डंडा सी 2 मिनट तक एकर घोलता रहवा। न जो ड्रम छे ओका बोरा सी ढाकी देवा। न छठवा दिन सी हम इना खाद को उपयोग करी सकाए। बहनों ने जीवामृत का महीना में 1 या 2 बार 200 लीटर प्रति एकड़ की दर सी सिंचाई का पानी का साथ देनु चाहिए। अने जब भी हमका सिंचाई करनी हो तो हम खाद दे सकाए। खरीफ मौसम में पर्याप्त नमी अवस्था में बुवाई की सी पहले खेत में हमें उसका छिड़की देवा। खेत में अगर नमी रहेगा तो उस स्थिति में हम छिड़की देवेगा तो भी अमृत को काम करेगा। साथ ही जीवामृत डालने से जमीन में जो जीवाणु छे उनकी संख्या अविश्वसनीय रूप से यानी हमको विश्वास नहीं होने को इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ी जाएगा जो मट्टी की भौतिक न जैविक गुण न वृद्धि करे। तो भाई उन्होंने ये तो बात करी हम जीवामृत के बारे में। अब बात करा कि घन जीवामृत कसो बनावा। घन जीवामृत में भी सूक्ष्म जीव है जेका हम यूरिया की तरह कभी भी हमारा खेत में उपयोग करी सकाए। एका लेना देसी गाय को गोबर 100 किलो का करीब, गुड़ 1 किलो, दलहन आटो मतलब जो दाल वाली दाल न छे न उनको आटो करीब 2 किलो का करीब ले लेवा। खेत की मट्टी 1/2 किलो का करीब न गोमूत्र 1/2 लीटर। अब ये सभी सामग्री का अच्छी तरह से हम गुथी लेवा जेकासी हलवो जसो गाढ़ो बनी जाए, मतलब अच्छी गाढ़ी करनु जेका। ओख 2 दिन तक बोरा नसी ढकी न रखा न थोड़ो पानी ओका में छिड़की देवा। ओख इतना घना बनावा कि उना जो हमने घोल बनाया जोका लड्डू बनी जाए। इना गीला लड्डू नख पेड़ पौधा न का पास हम रखी सकान जेका सी जो जीवामृत रहेगा वो जड़ तक पहुंची सकेगा। न एका लेना जमीन में नमी होनु बहुत जरूरी छे जेका सी आसानी से वो पेड़ पौधा एक अवशोषित करी लेगा। साथ भाई रोहणी गीला घन जीवामृत ख छायादार जगह पर हम अच्छी तरह फैले न सुखई सकान। सूखना पर लकड़ी सी पीटी न बारीक करी न बोरा न भंडारण करी देवा। सूखी घन जीवामृत का हम 6 महीना तक रखी सका। तो भाई उन्होंने कोई भी फसल की बुवाई का समय प्रति एकड़ 100 किलोग्राम बने गोबर खाद में 100 किलोग्राम घन जीवामृत मिले न बीज बोने से उत्पादन क्षमता में चमत्कारिक परिणाम देखना में मिले। तो हम अपनी फसल में जो हमने अभी रबी की फसल लगाई तो काम हम जीवामृत न घन जीवामृत को उपयोग करी न अपनी फसल कम लागत में अच्छो से अच्छो उत्पादन करी सका।
1: ये थी खेती की बातें। इसमें आज आपने जानकारी प्राप्त की जीवामृत और घन जीवामृत के बारे में। वाचन था तुलसा दरगैया का। आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

देवताओं, संतों और दुष्टों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी प्राणी मात्र की वंदना करना भी नहीं भूले हैं। 84 लाख योनियों से स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी तथा आकाश में रहते हैं और उनसे भरा हुआ ये समस्त जगत भक्त कवि को सीता राममय प्रतीत होता है। हवा के साथ धूल आकाश पर चढ़ जाती है और फिर वही नीचे बहने वाले जल की संगत में कीचड़ बन जाती है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, किंतु वही सुसंग पाकर सुंदर स्याही वन धर्मशास्त्र लिखने के काम में आता है। जड़ और चेतन सभी को राममय जान तुलसीदास जी हाथ जोड़ उनकी वंदना करते हुए अपनी अल्प बुद्धि तथा अक्षमता प्रकट करना भी मर्यादा के अनुकूल पाते हैं। मानव की बुद्धि छोटी है और श्री राम का चरित्र अतः श्री राम का चरित्र गायन अपनी ढिठाई मान वो सज्जनों से क्षमा याचना करते हैं।

ये था श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार थे महेंद्र कपूर, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब पेश है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

सुबह 7:20 पर होगा सदाबहार नगमों का कार्यक्रम सुनहरे पल। लोक संगीत के अंतर्गत सुनिएगा सपना सिसोदिया और साथियों के गाए लोकगीत सुबह 9:00। सीमा परवीन के स्वर में सुगम संगीत पेश किया जाएगा सुबह 9:15 पर।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुबह 9:30 बजे सुनवाया जाएगा त्र्यंबक राव जानोरीकर का गाया राग भोपाल तोड़ी। श्रोता अपनी पसंद के गीत सुन सकेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में सुबह 10:05 बजे से।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे सुबह 11 बजे, 12:30 बजे होगा कार्यक्रम संग्रहालय से, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, फिल्म संगीत दिन में 12 बजे और फिर 2 बजे, 2:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दिन में 1 बजे स्टूडियो से प्रसारित किया जाएगा महिला कार्यक्रम। इसमें आज योजना क्रम में बताया जाएगा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अभियान के बारे में। मेरी उड़ान क्रम में प्रसारित करेंगे कैफे संचालिका अमृता मनदीप सहजल से बातचीत। रूप लावण्य क्रम का विषय है मिंट नींबू पंच। फूड जोन के तहत बताएंगे टमाटर के उपयोग। काम की बातें क्रम में बताएंगे गर्मियों में लू से बचाव और उपाय के बारे में। शाम की सभा शुरू होगी 5 बजे युववाणी कार्यक्रम के साथ। इसमें आज का क्रम है हमारे शहर, जिसमें जानकारी दी जाएगी झाबुआ शहर के बारे में। 5:45 पर होगा फिल्म संगीत। शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा एनसीईआरटी का कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम। अंजलि मराठे के स्वर में सुगम संगीत प्रसारित करेंगे शाम 6:30 बजे। रतन दास बैरागी और साथियों के गाए लोकगीत सुनिएगा शाम 6:45 पर। शाम 7:20 पर होगा किसान श्रोताओं के लिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी। इसमें आज सुनवाएंगे प्रगतिशील महिला कृषक श्रीमती कमला पटेल से भारती उपाध्याय की बातचीत। दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम प्रसारित करेंगे 8:15 पर। उर्दू कार्यक्रम कहकशा रिले करेंगे भोपाल से 9:30 बजे। मन भावन कार्यक्रम होगा 10:00 बजे और 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित करेंगे त्र्यंबक राव जानोरीकर का गाया राग सावनी कल्याण। ये था कार्यक्रम विवरण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार दिल्ली से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः राष्ट्रपति भवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे 66 प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्म विभूषणम्, षड्भ्यः पद्म भूषणम्, सहैव 58 विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्मविभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉ एन राजम् अपि पद्मविभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, एचडी कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटॉक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमण

0: राष्ट्रिय चिन्तायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीड़ा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनम् इत्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशति दिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्ट चिकित्सालयेभ्यः चिकित्सा साहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्ण स्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी द्वित्रि दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्यां आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से

0: बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।

0: यह आकाशवाणी इंदौर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार भोपाल से।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिनों तक सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर, आज बीकानेर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों को 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के सुचारू संचालन के दिए निर्देश। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी और राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी। नौतपा के दूसरे दिन आज कई जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आज वे राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां वे दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे आज बीएसएफ की साचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वे बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। इसके बाद इस महीने की 29 तारीख को श्री शाह गुजरात के भुज का दौरा करेंगे, जहां वो बीएसएफ की एक सीमा चौकी का मुआयना करेंगे। अगले महीने की 5 तारीख को श्री शाह त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। भीषण लू के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री ने उनसे परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है, जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान श्री चौहान के अनुभव को साझा किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की दो विभूतियों श्री कैलाश चंद्र पंत और डॉ नारायण व्यास को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि प्रदेश की महान विभूतियों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों, रचनात्मक लेखन और शोध कार्य के लिए दी गई दीर्घकालीन सेवाओं से मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,27,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में नंबर वन स्थान पर है। अब तक लगभग 102 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उपार्जन लक्ष्य को केंद्र सरकार द्वारा 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। उन्होंने किसानों के हित में जिन किसानों ने स्लॉट बुक करा लिए हैं उनके गेहूं उपार्जन की अवधि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक कर दी है। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेज गति से अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। प्रदेश में 1 मई से प्रारंभ हुआ यह फील्ड कार्य 30 मई तक संचालित किया जा रहा है। राज्य के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर प्रत्येक मकान परिवार और अन्य संरचनाओं से संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से संकलित की जा रही है। राज्य में 1,37,000 से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं। दिनांक 25 मई तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 1,34,309 मकान सूचीकरण ब्लॉक में कार्य पूरा किया जा चुका है। 2,39,09,808 मकानों की गणना की जा चुकी है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने नौतपा के दूसरे दिन

आज भोपाल ग्वालियर सहित 45 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर नर्मदापुरम में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। इससे पहले नौतपा के पहले दिन कल प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते खजुराहो में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। बुधवार को न्यू चंडीगढ़ मोहाली में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि विजेता टीम क्वालिफायर टू में पहुंचेगी। रांची में 22 से 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी देव मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया, जबकि कुलदीप कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों ने 5.45 मीटर का शानदार प्रदर्शन करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। इसके साथ ही अकादमी के खिलाड़ी विनोद सिंह ने पुरुष 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा की ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की वायरल घटना के बाद मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पुनासा एसडीएम ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट के सुपरवाइजर दीपक मालाकार सहित 5 अन्य कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर द्वारा अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खनिज अधिकारी ने बताया कि खदानों के नियम अनुसार संचालित न होने पर खदान का पट्टा निरस्त किया गया है। झाबुआ में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम श्रद्धा उत्साह और जनभागीदारी के साथ संपन्न हुआ। पंचज अभियान के अंतर्गत आगरमालवा जिला न्यायालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश देते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए सकोरे लगाए गए। भोपाल कलेक्ट्रेट में टीएल की बैठक आयोजित की गई। इसमें कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, पीएम जनमन अभियान, धरती आबा अभियान और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक का कल आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है सदाबहार नगमों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुनहरे पल कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती जादौन का नमस्कार। श्रोताओं, जब हर तरफ पूरे देश भर में पारा ऊपर चढ़ा हुआ है, गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा है, ऐसे में संगीत का जो असर होता है वो हमारे तन मन को शीतलता प्रदान करता है, कानों में मिश्री खोलता है। चलिए सुनहरे

किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में ये था महल फिल्म का गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सौदागर से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में लीजिए अब सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: तीनों कॉलेज में
1: डोंट वरी
0: फीस तो देखो
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन,
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
4: RBI कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
7: आकाशवाणी इंदौर से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे पल। लीजिए अब सुनिए आरजू फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म तीसरी मंजिल से। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत।

और लीजिए श्रोताओं, अब वक्त है आखिरी गीत पेश करने का। फिल्म का नाम है एक महल हो सपनों का। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। साहिर के बोल हैं रवि का संगीत।

0: श्रोताओं, ये सदाबहार नगमे मन को तो शीतलता प्रदान करते हैं, पर हमें इस गर्मी में शरीर का भी ध्यान रखना है। शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए पानी पीते रहिए, पर उसी के साथ जो लवण और पोषक तत्वों की कमी होती है उसको भी पूरा करना ज़रूरी है। तो अपना ध्यान रखिए और अब आरती को इजाज़त दीजिए कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।
1: सुनहरे पल।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में हम रिले करेंगे समाचार प्रभात दिल्ली से।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे

0: 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
6: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच हुरमुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्तो, ध्रुव कपिला और रोहन कपूर, रुत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
8: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं। ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्ते ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देशभर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. U.S. Secretary of State Marco Rubio had arrived for a four-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed this report.
10: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness of regional countries. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
9: President Draupadi Murmu will undertake a three-day visit to Sikkim beginning today. During her stay in Sikkim, she will attend various events and visit several places. A report.
2: President Draupadi Murmu will visit Namgyal Institute of Tibetology today on the first day of her visit to Sikkim. President Murmu will also visit the Orchidarium and flag of pink buses for the women in Gangtok. Tomorrow, she will visit the Nathula Pass and also attend the convocation of the Sikkim University at Gangtok. Nearly 14,000 degrees will be awarded in the ceremony. On the last day of her visit, President Murmu will present the President of India's Police Colour Medal to the Sikkim Police at Paljor Stadium in Gangtok. Manas Pratim Sharma, Akashvani News, Gangtok.
9: Union Home Minister Amit Shah will visit India's border regions over the next few days and hold security-related meetings. Mr. Shah reached Bikaner in Rajasthan last night. The Home Minister will visit the BSF's Sanchu border outpost this morning, where he will interact with the security forces personnel and inaugurate welfare schemes for them. In the afternoon, he will review the security situation in the border region in Bikaner. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg gondola ropeway have been rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of the NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. The Directorate General of Civil Aviation, DGCA, has issued a standard operating procedure for airlines following the World Health Organization's declaration of the Ebola disease outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda as a public health emergency of international concern. The DGCA said airlines operating connectivity with Uganda and Congo are required to ensure mandatory filing and collection of self-declaration forms before passengers disembark. More in this report.
11: DGCA has made it compulsory for airlines to broadcast specific health announcements during flights to help identify possible Ebola cases early and prevent the spread of the disease. Passengers have been asked to immediately report symptoms such as fever, weakness, muscle pain, headache, sore throat, vomiting, diarrhea or bleeding to the airline crew members as well as immigration or medical authorities upon arrival. The DGCA further stated that if symptoms develop within 21 days of arrival in India, travelers should seek medical assistance from designated hospitals and inform the airport health office. For suspected cases on board an aircraft, the SOP directs that the passenger should be relocated to the rear of the aircraft and if possible, three rows in front and adjacent seats should be kept vacant. Airlines have also been instructed to maintain adequate stock of AAA masks, disposable gloves, PPE kits, hand sanitizers and biohazard disposal bags. With Anand Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
9: Compressed natural gas CNG prices in Delhi have been increased by 2 rupees per kilogram in Delhi. With the latest revision effective from 6 a.m. today, CNG in Delhi now costs 83 rupees 9 paise per kilogram. In Punjab, polling has begun for municipal elections. Voting is taking place for 8 municipal corporations, 75 municipal councils and 20 Nagar Panchayats. More from our correspondent.
12: These civic polls are being closely watched as a key political indicator ahead of the upcoming Punjab Assembly elections in 2027. There is a multi-cornered contest as all major political parties, including the ruling Aam Aadmi Party, Indian National Congress, Shiromani Akali Dal and Bharatiya Janata Party have fielded their candidates. According to the State Election Commission, 7,555 candidates are in the fray from a total of 1,896 wards across the state where the voting is presently going on under a heavy police bandobast with a deployment of 32,000 police personnel. The model code of conduct is already in force across all civic bodies as IAS and senior PCS officers have also been deputed as general observers to ensure a free and fair elections. To encourage voter participation, the Punjab government has declared a public holiday today for all along with paid leave provision for eligible workers in industrial and commercial establishments. Counting of votes will take place on Friday, May 29th. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
9: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. The India Meteorological Department has issued a yellow alert for heat wave conditions today in Delhi. Severe heat wave conditions are also likely today in places over Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Vidarbh and West Rajasthan. Similar weather conditions will persist during the day in parts of Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, East Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha, Telangana, Uttarakhand and West Madhya Pradesh. Gangetic West Bengal, Konkan and Goa, Saurashtra, Kutch, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are expected to experience hot and humid weather today. According to the weather agency, parts of Northeast India, Bihar, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Kerala and Mahe are likely to witness heavy rainfall today. In Uttar Pradesh, there is no respite from heat wave as the temperature is oscillating between 43 to 47 degrees at many places. Bundelkhand region is the worst hit, where temperature in almost every district has crossed the barrier of 45 degrees Celsius. Banda recorded one of the hottest places in the country with 47.6 degrees. Meanwhile, southwest monsoon is expected to reach Keralam today. The arrival of the monsoon is very critical to the Indian agricultural economy and daily life. More from our correspondent.
13: The southwest monsoon, which usually reaches Keralam on June 1st, may advance and is expected to arrive in Keralam today. The meteorological department has declared an yellow alert indicating isolated heavy rain in 4 of the 14 districts in Keralam today. The onset of the monsoon will be officially declared if 2.5 mm of rainfall is recorded for 2 consecutive days in 60% of the 14 designated weather stations in Keralam and Lakshadweep. Wind and inside that will also be considered for the same. In the meantime, about 5 mm of rain was recorded in the southern districts of Keralam by 7 a.m. today. Nidhi M. Palluruthi, Akashwani News, Thiruvananthapuram.
9: The US military carried out self-defense strikes targeting Iranian missile launch sites and boats near the Strait of Hormuz amid an ongoing ceasefire between the two countries. CENTCOM spokesperson Timothy Hawkins said the strikes targeted missile launch sites and Iranian boats attempting to deploy mines, adding that US forces were acting with restraint while defending the troops during the ceasefire. Iranian President Masoud Pezeshkian has ordered the restoration of internet access across the country. Iranian authorities had imposed a near-total internet blackout across the country for more than 87 days. The restrictions reportedly hampered civilians' access to information during the US-Iran conflict, while also severely affecting businesses dependent on internet connectivity. On to sports. In football, India thrashed the Maldives 11-0 in their opening Group B match of the SAF Women's Championship in Margao, Goa yesterday. Avika Singh starred for the hosts with 4 goals, while Priyanka Nauram and Karishma scored a brace each. India will now face Bangladesh in their next match on Sunday. In IPL playoff cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru will take on Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala today. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The winner of the match will advance directly to the IPL 2026 final, while the losing side will get another opportunity in qualifier 2. India's top shuttlers Lakshya Sen and PV Sindhu will spearhead the country's challenge at the Singapore Open Super 750 tournament, kicking off today. Other Indian players including Ayush Shetty, Kidambi Srikanth and H.S. Pranoy are also set to feature in the tournament. In women's singles, PV Sindhu will begin her campaign against Indonesia's Putri Kusuma Vardhani, while Unnati Huda will face Japanese shuttler Tomoka Miyazaki, and Malvika Bansol will be up against Chinese Taipei's Lin Xiang T. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
14: Thank you, Anuja. Hindustan Times and all the dailies have covered the Quad ministers meet in the national capital amid trade and energy concerns, aiming to keep the Indo-Pacific free, open and secure. The price rise of fuel again grabs the headlines in all the dailies today. Oil shock, petrol crosses 102 rupee is a top front page headline in the Pioneer. Defending the Prime Minister's austerity push, Finance Minister is quoted by the Statesman saying, Indian economy is resilient, but West Asia crisis exerting pressure on Forex. The Hindu writes about a two-judge bench issuing notice to the Union Ministry of Education, NTA and others, on pleas to replace on or fundamentally restructure the exam body and make it answerable to Parliament. The editorial in the Tribune talks about renewable energy generation growing up by leaps and bounds and accounting for about a quarter of electricity production. Under the headline, Time to Stop Slipping on Oil, the paper says how renewable energy can make India resilient to oil price shocks. The Indian Express states, live-in rules, polygamy ban as Assam introduces uniform civil code bill. With Trump administration's new policy, 7 lakh green card seekers left US in state of anxiety, writes Economic Times. City swelters, warmest May night in 14 years, says the Times of India. And finally, the Tribune cites Chhattisgarh government turns former Naxal hit areas into tourist hubs, with tribal culture helping the communities develop a sense of ownership while generating income. And with that, it's back to you, Anuja.
9: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg Gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8:30 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल पत्रिका।

नमस्कार दोस्तों, खेल पत्रिका कार्यक्रम के साथ हाजिर हूं मैं आरती जादौन। दोस्तों, आज भारतीय खेल जगत में जो सबसे बड़ी हलचल है वो है क्रिकेट के मैदान से। जहां एक तरफ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम नए युवा जोश के साथ आगामी अंतर्राष्ट्रीय दौरों और T20 सीरीज के लिए अपनी रणनीतियों को धार दे रही है, वहीं पिछले साल दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। भले ही उनका हाल ही का दक्षिण अफ्रीका का दौरा उतना अच्छा ना रहा हो, पर उसे पीछे छोड़कर विमेन इन ब्लू इंग्लैंड के कड़े दौरे पर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में तिरंगा लहराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो रेडियो ऑन रखिए और दुआओं का सिलसिला थमने मत दीजिए।

अब बात करते हैं श्रोताओं उस खबर की जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। विभिन्न चरणों में होने वाली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स के 12वें सीजन में नई दिल्ली में आयोजित चरण में विश्व पैरा एथलेटिक्स के इस चरण में हमारे जांबाज खिलाड़ियों ने इतिहास रचते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। 200 से अधिक पदकों के साथ भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि जब हौसले फौलादी हों तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। शीतल देवी जैसे पैरा तीरंदाजों के विश्व स्तरीय प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब केवल एक खेल के भरोसे रहने वाला देश नहीं है, बल्कि हम हर खेल में हर स्तर पर दुनिया पर राज करने के लिए तैयार हो रहे हैं।

श्रोताओं, खेलों की दुनिया बदल रही है और इस बदलाव की कमान हमारे युवा दिमागों के हाथ में है। हाल ही में साइप्रस में आयोजित फाइड वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली की ऐतिहासिक जीत ने शतरंज की बिसात पर भारत के दबदबे को एक नई ऊंचाई दी है। आर वैशाली की उपलब्धि ऐतिहासिक इसलिए है कि वो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इतना ही नहीं, एशियन लैक्रोस जैसी प्रतियोगिताओं में भारत को मिले दोहरे स्वर्ण पदक और टेबल टेनिस से लेकर बैडमिंटन के थॉमस कप तक हमारे खिलाड़ियों की आक्रामकता यह साफ बताती है कि भारत अब सिर्फ प्रतिभाओं का देश नहीं बल्कि ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर हाउस बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है।

दोस्तों, ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, इसके पीछे मैदान की मेहनत के साथ साथ प्रशासनिक नीतियां भी हैं। भारत सरकार की मेरा युवा भारत पहल और खेलो इंडिया जैसे जमीनी स्तर के कार्यक्रमों के कारण अब दूर दराज के गांवों से भी चैंपियन निकल रहे हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि भारत भविष्य में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे विशाल खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी का दावा ठोक चुका है। बुनियादी ढांचे पर जो हो रहा है, यह निवेश हमारे युवाओं को घरेलू मैदान पर ही विश्व स्तरीय अनुभव देने का काम करेगा और उनका लक्ष्य होगा हर तरह की प्रतियोगिता को जीतना।

दोस्तों, भारत में खेल अब केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, खेल केवल शहरों तक सीमित नहीं है, खेल केवल सशक्त शरीर वाले युवाओं तक सीमित नहीं है। अब हर युवा खेलने का अपना सपना पूरा कर सकता है, भारत का प्रतिनिधित्व करने का सपना पूरा कर सकता है। आज का खेल बुलेटिन हमें यही सिखाता है कि खेल सिर्फ जीत या हार नहीं, बल्कि देश के आत्मसम्मान और एकजुटता का प्रतीक है। चाहे वह बल्ला थामे हमारी लड़कियां हों, बिसात पर चाल चलते हमारे ग्रैंड मास्टर हों, या ट्रैक पर दौड़ते हमारे पैरा एथलीट्स, हर एक खिलाड़ी नए भारत की नई कहानी लिख रहा है। आज के इस 30 मिनट के सफर में मेरे यानी आरती के साथ बस इतना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल पत्रिका। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, वक्त है लोक संगीत के कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सपना सिसोदिया और साथियों के गाए कुछ लोकगीत।

अभी आपने सुने सपना सिसोदिया के गाए कुछ मालवी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। वक्त है सुगम संगीत का। आज सुगम संगीत के कलाकार हैं सीमा परवीन। आगाज कर रहे हैं मिर्जा गालिब की लिखी एक गजल से। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यूं ही इंतजार होता। लीजिए सीमा परवीन की आवाज़ में सुनिए मिर्जा गालिब की ये गज़ल।

आकाशवाणी इंदौर से समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तिश्नाए फरियाद आया। लीजिए सुनिए मिर्जा गालिब की लिखी एक और गजल, आवाज सीमा परवीन की।

सुगम संगीत में अभी आपने सुनी सीमा परवीन की गाई चंद गजलें। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित त्र्यंबक राव जानोरीकर का गाया राग भूपाल तोड़ी। हारमोनियम पर संगत है अप्पा जलगांवकर की और तबले पर विनायक पाठक।

0: शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आपने सुना पंडित त्र्यंबक राव जानोरीकर का गाया राग भोपाल तोड़ी। यह आकाशवाणी इंदौर है, अब सुनिए जिले की चिट्ठी भोपाल से।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।
2: भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी, आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर दीपा सिंह। पश्चिमी मध्य प्रदेश की आदिवासी बाहुल्य धार जिले में नौतपे की तपिश होने से आमजन हलाकान है। भीषण गर्मी के चलते जिले में जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। वहीं किसान आगामी खरीफ फसल के लिए खेत तैयार कर रहे हैं। जिले में इस साल 5,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 3,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, 1,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास, 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का और शेष रकबे में मूंग, उड़द, मूंगफली आदि फसलें शामिल हैं। धार जिले में भी वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में खरीफ सीजन पूर्व जिले में 10 दिवसीय कृषि रथ का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत तैयार किए गए विशेष कृषि रथ को केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद सावित्री ठाकुर तथा कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले के सभी 13 विकास खंडों के लिए तैयार किए गए 13 कृषि रथ प्रतिदिन 4 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धार जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य प्रगति पर है। 9 अप्रैल से प्रारंभ हुई खरीदी 28 मई तक चलेगी। जिले में इस साल 250 मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से अब तक 229 मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी 25,435 किसानों से की जा चुकी है। जिले में इस साल 44,913 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया था, जिसमें से 30,510 किसानों को स्लॉट बुक हुए हैं। धार जिले में जनगणना 2027 का पहले चरण का कार्य चल रहा है। 31 मई तक चलने वाले पहले चरण में प्रगणकों ने समय से पहले ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। जिले में 7,17,530 मकान होने के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। काम पूरा होने के बाद क्रॉस चेकिंग का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। धार जिले में आमजनों की सुविधा और आधार सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से धार के प्रधान डाकघर सहित विभिन्न डाकघरों में विशेष आधार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नागरिकों को नवीन आधार पंजीयन, बायोमेट्रिक अपडेट और मोबाइल लिंकिंग जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा दिए गए फैसले के बाद से सभी ओर उत्साह का माहौल है। भोजशाला के पट खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव धार के ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचे। उन्होंने मां वाग्देवी की पूजा अर्चना और आरती की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि धार में माता सरस्वती लोक विकसित किया जाएगा, राजा भोज शोध संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, धार विधायक नीना वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। धार जिले में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जिले भर में जन सहभागिता से व्यापक स्तर पर जल स्रोतों के पूजन और गंगा कलश यात्रा का आयोजन किया गया। धार जिला इस अभियान में प्रदेश में 6वें स्थान पर रहते हुए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण केवल अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। धार जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सामूहिक रूप से शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर स्वच्छता बनाए रखने का भी संकल्प दिलाया गया। धार के प्रसिद्ध शिल्पकार और संगीतज्ञ रघुनाथ राव कृष्णराव फड़के कला अवदान को समर्पित 3 दिवसीय 11वां पद्मश्री फड़के संगीत समारोह गतिनो जिला मुख्यालय

आयोजित किया गया। गायन वादन और नृत्य की संगीत त्रिवेणी का संगम माने जाने वाले फड़के संगीत समारोह में शास्त्रीय नृत्य गायन और वादन की नई विधाओं से संगीत प्रेमी परिचित हुए। श्रीलंका नृत्य दल की प्रमुख डॉक्टर अंजलि मिश्रा को इस साल पद्मश्री फड़के कला सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं अंतिम दिन कोलकाता की ख्याल गायिका श्रीमती पियाली चटर्जी ने गीत और भजन प्रस्तुत किए। धार जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर के
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: सुबह के 10:05 हुए हैं। कार्यक्रम आप 648 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन पा रहे हैं। लीजिए अब सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
2: हेलो एमएच हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती जादौन। चलिए श्रोताओं, शुरू करते हैं सिलसिला आपकी पसंद के गीतों का। हमारे जो नए श्रोता हैं उनके लिए हम बता दें, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो आप हमें कॉल कीजिए और अपनी पसंद के गीत सुनिए। हम ले रहे हैं पहला कॉल। हेलो हेलो, एम एच हॉटलाइन।
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: नमस्कार, लोकेंद्र जी कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आकाशवाणी से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। और अभी ये 22 तारीख को स्थापना दिवस था, 71 ईयर का स्थापना जो दिवस था
0: जी।
1: उस दिन खूब कोशिश करी थी बधाई संदेश देने के लिए, वो नहीं लग पाया, पर आज लग गया। तो आज सभी स्टाफ और आकाशवाणी परिवार को मेरी तरफ से स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये आकाशवाणी अपने श्रोताओं का ही है।
1: जी मैडम, और अच्छा प्रोग्राम रहा था लाइव, एक अनूठा प्रयास जो आपकी तरफ से रहा
0: जी।
1: बिल्कुल सुना था मैंने जी। मैंने मोबाइल ऐप से सुना था, मैं तो सैलून का काम है मेरा।
0: अच्छा,
1: तो दुकान पर मैं काम कर रहा था और आपका प्रोग्राम भी मैं मतलब सुन रहा था।
0: अच्छा,
1: इसके माध्यम से
0: फेसबुक पर लाइव भी था कार्यक्रम
1: जी मैडम? फेसबुक पे तो नहीं देख पाया था मतलब, पर मैं ऑनलाइन सुन रहा था ऐप के ऊपर।
0: अच्छा अच्छा, चलिए किसी न किसी तरह तो आप भागीदार बने।
1: बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं मैडम, बचपन से ही मतलब यादें हमारी रेडियो से जुड़ी हुई है। खास करके पुराना जो नंदा जी भेरा जी सॉन्ग आता था वो बचपन से मतलब मेरा, जो घुंघरुओं की जो आवाज आती थी ना शुरू में, स्टार्टिंग म्यूजिक बजता था वो बहुत सुंदर लगता था।
0: चलिए पहले आप बता दीजिए कि कौन सी फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं।
1: पुरानी फिल्म राजेश खन्ना जी की, जनता हवलदार फिल्म की गाना है मतलब, तेरी आंखों की चाहत में सब कुछ लुटा दूंगा
0: जी। अनवर की आवाज में ये गीत है
1: जी। जी मैडम जी,
0: राजेश रोशन का संगीत है। तो आपको ये गीत हम सुनवाएंगे, और जैसा कि आपने कहा कि 22 तारीख को आपने कोशिश की पर आप शामिल नहीं हो पाए, बधाई तो आपने दे दी है। अगर कोई और आपकी ऐसी खास याद हो रेडियो को लेकर के तो वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
1: रेडियो तो क्या है मैडम, जैसे मैं बचपन में मेरे पिताजी के साथ में ही सुनने का, मुझे भी ये रेडियो सुनने

0: शौक लगा, क्योंकि हमारे घर में मेरे पिताजी उस समय में बड़ा एक वाल वाला रेडियो लेकर आए थे, वो सुनता था मैं
1: जी।
0: और वो सुनते हुए मुझे भी शौक लग गया। और जब उसका एक एरियर लगता था तांबे के तार का बाहर कैच करने के लिए
1: जी,
0: हाँ, तो वो उससे क्लियर स्पष्ट सुनाई देता था। धीरे धीरे अब दौर बदलता गया रेडियो का, अब ऐप के माध्यम से डिजिटल हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गए अलग अलग, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अभी सभी जगह रेडियो के जो कार्यक्रम है उसकी स्पष्ट जानकारी भी हमें उपलब्ध जाती है कि कौन सा प्रोग्राम कितने बजे कब आएगा। तो आपका भी यहाँ का फेसबुक पर मैं देखता रहता हूँ, सभी महिला जगत के प्रोग्राम की भी अपडेट आती है और सभी प्रोग्रामों की अपडेट आती है।
1: चलिए बहुत अच्छा है। पहले शुरुआती दौर में जहाँ पर रेडियो बहुत बड़ा सा हुआ करता था ना, टीवी की तरह बड़ा सा बॉक्स होता था, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, ऐसे रेडियो का जो आकार है वो छोटा होता गया। और अब तो मोबाइल ऐप में है तो आप अपनी जेब में लेकर घूम सकते हैं,
0: भी सुन सकते हैं
1: जी,
0: और ऐप के माध्यम से स्पष्ट सुनाई देता है। और हमारे राज्य से भी अगर हम कहीं दूर बाहर घूमने के लिए गए हैं
1: जी,
0: तो वो हम ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं, भले हम कहीं बाहर जैसे जम्मू कश्मीर या कहीं
1: कहीं भी हो आप कार्यक्रमों से जुड़े रह सकते हैं। बिल्कुल सही। और केवल इंदौर का ही नहीं, मतलब उस पर ऐप पर तो आपको
0: बिल्कुल
1: पूरे जितने भी आकाशवाणी केंद्र इंदौर में है, भारत में है आपके
0: जी,
1: तो किसी भी केंद्र से आप जुड़ सकते हैं और किसी भी केंद्र का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैडम, सुन सकते हैं।
1: चलिए
0: तो एक बार पुनः आकाशवाणी परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं
1: जी। धन्यवाद। लीजिए सुनिए आप अपनी पसंद का गीत
0: जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: चलिए अब हम लेते हैं अगला कॉल। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: नमस्कार प्रेम सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, और आरती जी आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: तो बहुत अच्छी बात है, खास तौर पर
1: बताऊँ, मैं ना मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम सुनता हूँ आकाशवाणी इंदौर के।
0: जी जी, और अच्छा कवरेज मिलता होगा ऐप से सुनने में?
1: जी, स्पष्ट प्रसारण मिलता है, और हमें मतलब आपको बताऊँ, हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं।
0: अरे वाह, कौन कौन से राज्य के कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: जी बताएं, फिर से पूछिए।
0: कौन कौन से राज्य के कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: मैं आपको बताऊँ आरती जी।
0: हेलो
1: हेलो
0: जी
1: जी, तीस आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, हर राज्य के अलग अलग प्रोग्राम सुनता हूँ
0: जी।
1: और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी हुई हमारे, अभी जो कॉल आया था उज्जैन से लोकेंद्र जी का,
0: जी जी
1: उनके जरिए हमें एक मतलब काफी स्टेशन से जुड़ने का मौका मिला।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, और ये बड़ा अच्छा लगता है सुनकर के कि आकाशवाणी के जरिए बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं वो एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: जी, गाने के बोले ये तो सत्य की भगवान है, हम साथ साथ हैं फिल्म का।
0: हम साथ साथ हैं, ठीक है
1: जी, ये तो सत्य की भगवान
0: जी। चलिए, तो आपको आपकी पसंद का एक गीत हम सुनवा रहे हैं कॉल करने के लिए।
1: निवेदन करेंगे आप
0: जी? जी बोलिए
1: जी, आप भले से गाना थोड़ा कम सुनवाइएगा और अगले कॉलर को मौका दीजिएगा।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: सुनिए आपकी पसंद का गीत।

0: ये गीत पसंद करने वाले हमारे श्रोता ने ये भी निवेदन किया था कि हम भले ही गाना पूरा ना सुनवाएं, काफ़ी लंबा गाना है ये, हम अपने दूसरे श्रोता का फ़ोन ले लें। तो चलिए आपकी बात मानते हुए हम दूसरा फ़ोन ले रहे हैं। हेलो, आई एम हॉटलाइन।
1: जी मैम।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: कैसे हैं?
1: अच्छे हैं।
0: अच्छा, बताइए आपका नाम तो बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: मेरा नाम महर्षि गर्ग है।
0: महर्षि, वाह भाई महर्षि। आप पढ़ाई करते हैं ना?
1: हाँ।
0: फिल्में देखते हैं?
1: हाँ?
0: फिल्में देखते हैं?
1: जी मैम।
0: अच्छा, आपका सबसे पसंदीदा हीरो कौन है? कोई पसंदीदा? शाहरुख खान। अरे वाह।
1: हाँ।
0: अच्छा बताइए, अभी आपसे बात और बात करेंगे बाद में, पहले बताओ आज कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: क्या कहना फिल्म का।
0: फिल्म देखी है?
1: हाँ।
0: अच्छा, कौन है इसमें हीरोइन, कौन है?
1: इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन मैम
0: नाम नहीं पता है ना, गालों पे डिंपल वाली हीरोइन है ना, प्रीति जिंटा। हाँ। अच्छा चलो, कौन सा गीत सुनोगे?
1: मिले हम झलक उठा खुशी का हुआ क्या।
0: अरे वाह महर्षि, आप तो गुनगुनाते भी बड़ा अच्छा हो। चलिए तो महर्षि, आज हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। आपको वैसे शाहरुख खान पसंद है, पर आपने जो है प्रीति जिंटा की फिल्म का गीत पसंद किया है। कोई बात नहीं, अगली बार जब आप कॉल करें, आप करें या पापा करें, कोई भी करें, तो आप थोड़ा सा 2-3 हफ्ते बाद कॉल कीजिएगा, ठीक है?
1: हाँ मैम।
0: चलो सुनो अपनी पसंद का ये गाना।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: लीजिए अब हम बात करते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो, आई एम हॉटलाइन। हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मैं मनोहर लाल गांधी, विजयनगर चाणक्य चौक, गाजियाबाद से बोल रहा हूँ।
0: गाजियाबाद से यानी उत्तर प्रदेश से हमारे पास ये कॉल आया है। मनोहर जी, उत्तर प्रदेश में अभी मौसम के क्या हाल हैं? हम पढ़ते रहते हैं कि लू चल रही है और
1: मौसम तो बहुत गर्म है, गर्म हवाएं चल रही हैं, लू चल रहा है
0: जी। और इस उत्तर प्रदेश में अक्सर देखा गया है कि जो मौसम होता है वो बिल्कुल चोटी पर ही रहता है, या तो बहुत ज़्यादा बारिश है, या बहुत ज़्यादा ठंड है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है।
1: जी, मैदानी इलाके हैं इसलिए यहाँ का मौसम का पता नहीं होता
0: जी,
1: कब आंधी आ जाती है, कभी धूप निकल जाती है
0: जी,
1: ऐसे ही होता रहता है।
0: तो अब आपको इस मौसम की आदत है, मतलब आप इतनी गर्मी झेल पाते हैं?
1: जी, आदत है। गर्मी तो पहले भी पड़ती थी, आज भी पड़ती है, वही गर्मी है
0: जी, जी।
1: मगर आज जो है ना, एसी चलते हैं हर घर में, तीन तीन चार चार एसी हैं
0: जी,
1: तो उनकी जो गर्म हवाएं होती हैं वही हमें परेशान करती
0: है जी। वही जो है वो जहाँ चल रहा है वहाँ तो ठंडक हो जाती है, पर बाकी वातावरण में वो जो गर्मी फैलाते हैं वो सबको झेलना होती है।
1: आज भी आप जो है पार्क में चले जाइए, हरे हरे पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ गर्मी का एहसास नहीं होता।
0: सही है, घरों और उसके आसपास ज्यादा गर्मी लगती है
1: जी।
0: मनोहर लाल जी, आप कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं?
1: जी, आज आप हमें सुना दीजिए। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवर लाल,
0: अमिताभ बच्चन की फिल्म
1: जी। अमिताभ बच्चन मेरा बहुत ही फेवरेट है।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो परदेसी या ये सच है
0: जी, अमिताभ बच्चन और रेखा मेरे ख्याल से इस फिल्म में थी।
1: रेखा
0: और अमिताभ बच्चन
1: बहुत ही सुपरहिट जोड़ी है
0: जी। आपने अमिताभ बच्चन की फिल्में अगर आपके फेवरेट हैं तो काफी सारी फिल्में देख रखी होंगी।
1: बहुत फिल्में, हर फिल्म मैंने तो देखी है। मैं तो उनका जन्मदिन भी मनाता हूँ और एक बार मिल भी चुका हूँ।
0: अरे क्या बात है, कैसा लगा आपको मिलकर?
1: मिलकर बहुत अच्छा, बड़े ही नेक दिल इंसान है।
0: चलिए,
1: बड़ा ही सम्मान किया हमारा।
0: बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप अपने पसंदीदा नायक से मिल भी चुके हैं। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं उनकी आपकी पसंद का एक गीत जो उनकी फिल्म का है। धन्यवाद कॉल करने के लिए
1: जी, बहुत बहुत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से इस समय आप सुन रहे हैं सजे फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। हम जुड़े हुए हैं आपके साथ, आप कीजिए हमें कॉल और सुनिए अपनी पसंद के गीत। हमारे पास अगला कॉल है, बात करते हैं कौन श्रोता है। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोना मार्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: मोहम्मद रैना बोल रहे हैं?
1: हाँ, लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ भाई, कश्मीर से कॉल कर रहे हैं और इस तरफ हम ये मान लें थोड़ी सी ठंडी बयार वहाँ से आ रही है। वैसे
1: हाँ, इतना ठंडी है मैडम, ये भी यहाँ ऐसा लगता है जैसे फीजर का हवा ही लगता है ना।
0: हाँ, तो वहाँ पर इतनी ठंडी है लतीफ भाई, और यहाँ पर ऐसी लू चल रही है। यहाँ पारा जो है वो इस बार 44 डिग्री तक पहुँच चुका है। पर
1: हाँ
0: आप,
1: मैडम, यहाँ पे जैसे एसी का हवा ही चल रही है, ठंडी हवा
0: जी, मतलब इस समय भी वहाँ पर आपको ठंडक महसूस हो रही है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसीलिए जो है वो पूरे भारत से और ख़ास तौर पे मध्य भारत और इधर जो दक्षिण के लोग हैं वो थोड़ी ठंडक पाने कश्मीर पहुँचते हैं इस
1: सही
0: मौसम
1: बात
0: में।
1: है। लगभग एक दिन में तो 1500 से ज़्यादा ज़्यादा पर्यटक तो यहाँ पे आते हैं,
0: यहाँ वहाँ पहुँचते हैं
1: यहाँ
0: जी
1: वहाँ यहाँ सोनामार्ग में पहुँचते हैं।
0: जी
1: हाँ जी,
0: अभी वहाँ पर इस समय चोटियों पर बर्फ होती है या पिघल चुकी होती है?
1: यहाँ पे चोटी ऊंची ऊंची जगहों पे है, पहाड़ों, ये मोटे
0: हाँ,
1: इलाके है ना,
0: गुलमर्ग में
1: वहाँ
0: मिलती
1: पे।
0: है,
1: हाँ, गुलमर्ग, सोनामार्ग में,
0: यहाँ पर होती है
1: गिलेशर, यहाँ गिलेशर है, वहाँ पे भी मिलेगा बर्फ।
0: जी।
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: ऊंची ऊंची जगहों पे मिलेगा।
0: हाँ, नीचे तक की तो पिघल चुकी होती होगी।
1: हाँ, नीचे नीचे जो
0: मार्च अप्रैल
1: मैं,
0: तक मेरे ख्याल से मिल जाती है फिर भी
1: हाँ, ऊंची ऊंची जगहों पे मिलता है, यहाँ
0: जी,
1: पे नीचे नहीं मिलता
0: नहीं मिलेगा।
1: ना।
0: अच्छा,
1: कभी
0: आप कौन सा गीत आज आपको सुनवाएं?
1: तो छलियां लगता है, कभी तो पायल लगता है, ये वाला सुनना है।
0: अच्छा, तो आपको ये गीत सुनना है लता मंगेशकर ने जो गाया है,
1: हाँ, पत्थर के फूल।
0: पत्थर के फूल फिल्म का गीत। चलिए
1: हाँ,
0: आप,
1: और मेरे साथ लोकिंदर वर्मा, नाना खेड़, बस उज्जैन,
0: अच्छा
1: बस
0: आप भी जानते हैं उनको ये।
1: बिल्कुल, उनसे उनसे मैं फोन पे बात भी करता हूँ,
0: अरे
1: वो
0: वाह, क्या
1: बढ़िया।
0: बात है। तो आप फोन पर ही, आकाशवाणी के जरिए ही आपकी उनसे बातचीत हुई है?
1: हाँ, मैं उनके साथ ही बात ही करता हूँ, इससे बगैर भी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। कभी आप
1: हाँ,
0: इधर आए हैं?
1: नहीं कभी नहीं,
0: कभी नहीं आए हैं?
1: कभी खुदा का मन चाह होगा वहां पे भी आ सकेंगे।
0: चलिए, तो कभी आप यहाँ आइए, यहाँ पर आकाशवाणी देखिए, आप अपने यहाँ पर मित्रों से भी मिलिए।
1: हाँ, सही बात, जो लोकेंद्र वर्मा है ना,
0: जी
1: वो यहाँ श्रीनगर पे भी कॉल करता है, वो बढ़िया लिसनर है, उनका
0: चलिए,
1: श्रोता है।
0: अच्छी बात है, ये
1: हाँ
0: जानकर बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी जो है वो दिलों को जोड़ती है, लोगों को
1: हाँ
0: जोड़ती
1: सही,
0: है, भारत

0: हेलो, आई एम एच हॉटलाइन। हेलो हेलो हेलो, हमारी आवाज आ रही है? हेलो, कुछ डिस्टर्बेंस सा महसूस हो रहा है। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं?
1: नमस्कार
0: नमस्कार, अनिल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ, अनिल जी बोल रहा हूँ, मैं सीधा नगर से।
0: तो अनिल जी कहाँ खो गए थे आप? तो
1: ऐसा है, हमारे हम मिश्र तो श्रीमती जी को बुलाने गए थे।
0: अच्छा अच्छा, श्रीमती जी को बुलाने गए थे, मतलब आज श्रीमती जी भी बात करने वाली हैं?
1: हाँ, बात करने वाली, तो काम कर रही थी, मैंने कहा बुला लिया।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: आपके क्या हाल चाल है? बढ़िया,
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। आप दोनों कैसे हैं?
1: हम दोनों बढ़िया। वहाँ आप गए थे क्या स्थापना दिवस में?
0: जी
1: कार्यक्रम में,
0: जी उस कार्यक्रम में हम ऑनलाइन ऐसे जुड़े रहे।
1: हमने ऑनलाइन देखा, हम भी जाने ऑनलाइन देखा।
0: बहुत बहुत अच्छा है कि आपकी भागीदारी भी उसके साथ रही और आप जुड़े रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: अभी तक 71 साल हो गए हमको भी कार्यक्रम सुनते सुनते।
0: क्या बात है। जी
1: हमें आज एक बात बता,
0: आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी, फिर से बोलेंगे? अच्छा, ये गीत सुनना है आपको? ये वाला गीत सुनना
1: कहना चाहेंगे, जो गाना हमने हर बर्थडे पे गाना गाया, हर जन्म के गाना गाते हैं, खुशियां मनाते हैं।
0: अच्छा, ये गाना गा करके?
1: हाँ, ये गाना हर साल 55 साल हो गए गाना गाते गाते हमको आज।
0: अच्छा अच्छा, 55 साल और जी, और ये 55 साल और आज क्या खास बात है?
1: खास तौर पर गाना हम इसलिए याद किया कि गाना

0: हमेशा पत्नी को पसंद है।
1: अच्छा,
0: भी पसंद आना है, दोनों को पसंद है।
1: अच्छा, गहरा दाग फिल्म का ये गीत है, आप उनसे भी बात करवाइए हमारी।
0: हाँ, और दूसरी बात और करना चाहेंगे, 70 साल का हमारा विवेक जीवन बहुत खुशी रहा
1: जी,
0: कभी भी अंदर या फिर ऐसा कुछ नहीं रहा।
1: अरे क्या बात है, अब उषा जी से तो हम सुन लें कि उनको कैसा लगा 55 साल का ये सफर।
0: 55 साल से हम अपना जीवन संगीत के सहारे में बिता रहे हैं।
1: क्या बात,
0: ओल्ड इज गोल्ड को सुन के गाने बजा।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उषा जी बात करेंगी हमसे,
0: एक मिनट करा तुम, एक सेकंड
1: जी। हेलो हेलो
0: हेलो
1: हेलो, उषा जी बोल रही।
0: हाँ हाँ,
1: नमस्ते उषा जी। अनिल जी के फोन तो हमारे पास आते रहते हैं, तो आज जब ये खास दिन है तो हमने सोचा आपसे भी बात की जाए। आप सुनते हैं आकाशवाणी के कार्यक्रम क्या? उन्होंने कहा है कि गीत आज सुनवाने के लिए फरमाइश की है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है।
0: बिल्कुल सुनाओ, बिल्कुल।
1: हाँ, आपकी पसंद का गीत है ये?
0: हाँ, पसंद का है ना।
1: चलिए चलिए, तो आपके लिए भंडारी दंपत्ति के लिए ये गीत हम सुनवा रहे हैं, गहरा दाग फिल्म से।
0: आपसे बात हो गई?
1: जी जी जी।
0: अच्छा लगा, आवाज अच्छी लगी आपको?
1: हाँ बिल्कुल, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कम बोलती हैं।
0: बहुत कम बोलती हैं।
1: जी जी, वो महसूस हुआ। चलिए कोई बात नहीं, तो अब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, और आपको ये गीत भी हम सुनवा रहे हैं।
0: एक छोटा सा काम है आरती जी, आपको
1: जी
0: आपका नंबर दे दिया ना मेरे को, मोबाइल नंबर।
1: वो जो है आप आकाशवाणी के नंबर, हमारे ही नंबर है, उस नंबर पे आप हमारी आपसे बात हो ही रही है। ठीक है, तो आप सुनिए ये गीत।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो नमस्कार दीदी, महेश बोल रहा हूँ दुबई के बगीचे से।
0: नमस्कार महेश जी, कैसे हैं? मौसम तो बहुत गर्म।

0: कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है?
1: बस बढ़िया है जी।
0: बढ़िया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये आपके ख़त हमको मिलते रहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि वो कार्यक्रम में शामिल भी हो पाए, मन भावन कार्यक्रम में, चॉइस टाइम में। जी बताइए, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: अपना देश फिल्म का गाना सुना दीदी है दीदी,
0: अपना देश,
1: ले लो ले लो बाबू पी लो नारियल पानी।
0: हाँ, बड़ी ज़रूरत है अभी तो इसकी।
1: बिल्कुल
0: सही है, बहुत अच्छा गीत आपने चुना है।
1: जी
0: इस मौसम में पानी पीते रहने की ज़रूरत है और नारियल
1: जी
0: पानी तो हमारे पोषक तत्वों को भी पूरा करता है।
1: जी जी जी
0: चलिए
1: मैं मौसम के हिसाब से गाने सुनता हूँ दीदी।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: आपने शायद सुने होंगे, मैं जब फरमाइश करता हूँ
0: जी
1: तो ठंड के अंदर ठंड का गाना सुनता हूँ, गर्मी के अंदर ये गाना।
0: चलिए बहुत अच्छा है कि ये आपको
1: जी,
0: तरोताज़ा रखेगा मानसिक रूप से
1: जी,
0: भी,
1: जी
0: और
1: जी
0: साथ ही नारियल पानी का भी लुत्फ़ उठाइए।
1: जी
0: चलिए,
1: जी
0: तो महेश जी की तरफ से सभी श्रोताओं के लिए ये नारियल पानी वाला गीत पेश है।
1: जी धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: दीदी,
0: कॉल करने के लिए।
1: आपको भी धन्यवाद दीदी।

0: चलिए श्रोताओं, नारियल पानी की इस तरावट के बाद अब हम लेते हैं अगला कॉल। हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते,
1: रानू गुप्ता बात कर रही हूँ।
0: हाँ, रानू जी देवास से। तो रानू जी, आपका कामकाज भी चल रहा होगा घर का?
1: जी बिल्कुल, और फोन मैं रिडायल पे छोड़ देती हूँ, वैसे बार बार नहीं कॉल कर सकती हूँ, तो रिडायल पे छोड़ती हूँ, और क्या है।
0: अच्छा, लग जाए तो चलिए देखिए, आज आपका कॉल लग गया है और आज आपको अपनी पसंद का गीत ज़रूर सुनने को मिलेगा। तो रानू जी, ये इतनी ज़्यादा गर्मी अभी है कि कूलर, पंखे, एसी सब फेल हो रहे हैं। ऐसे में गृहिणियों के लिए, जिनको काम करना होता है, किचन में काम करना होता है, बाकी भी हर समय पंखे वाले कमरे में या एसी में नहीं बैठे रह सकते, तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करती हैं?
1: तो मैम, मेरा तो ऐसा है कि मेरी किचन में भी जैसे फैन लगा हुआ है
0: जी,
1: और तो मतलब फैन चलता रहता है, मैं काम करती रहती हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि चलो लेडीज तो काम करती हैं, बट जैसे कि सभी जेंट्स है ना,
0: हाँ,
1: वो भी बहुत मेहनत का काम
0: बिल्कुल,
1: करते,
0: बिल्कुल
1: हैं, तो मतलब
0: करते हैं, बिल्कुल करते हैं।
1: क्योंकि लोग तो चलो अपना एक घंटे का काम, दो घंटे का काम निपटा कर
0: आराम
1: कर लेंगे, लेकिन वो जेंट्स है ना, सभी सभी का बोल रही हूँ मैं, उसमें मेरे हस्बैंड भी शामिल है, वो लोग भी सच में पूरे दिन भर बहुत मेहनत करते हैं।
0: चलिए, तो आपके पति देव सुन पा रहे होंगे कि रानू जी जो है वो बहुत ख्याल रखती हैं और ध्यान रखती हैं कि कितनी मेहनत वो कर रहे हैं। रानू जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगी?
1: हाँ, मूवी का नाम है मैं तेरा हीरो और गाने के बोल है पलट, डेडिकेशन आपको रहेगा और मेरी बहन नंदनी।
0: क्या बात है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये गाना तो आपको अपने पतिदेव को डेडिकेट करना चाहिए, है ना? गाना वही है, तेरा हीरो इधर है।
1: पतिदेव को ऐसे गाने अच्छे नहीं लगते, उनको ना 90s के सॉन्ग अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा।
1: और वो रेडियो से क्या थोड़ा सा दूर रहते, क्योंकि उनका बिजनेस है ना, तो वो उसी में उसी को समय देते हैं।
0: चलिए कोई बात नहीं, तो आप एंजॉय कीजिए, सुनिए ये गीत
1: जी। ओके, नमस्कार
0: जी, धन्यवाद।

0: लीजिए श्रोताओं, अब कार्यक्रम में वक्त आ चला है कि हम आखिरी कॉल ले लें। हेलो, आई एम एट हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम रमेश मालवीय बोल रहे हैं, इंद्रानगर चौराहे उज्जैन से। मैडम जी
0: नमस्कार। रमेश जी, तो उज्जैन से आज हमारा ये तीसरा कॉल है।
1: जी हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मैडम जी।
0: जी देखिए, अक्सर ये होता है कि फिर कई श्रोताओं को शिकायत रहती है कि उनके कॉल नहीं लग पाते हैं, पर कुछ श्रोताओं के कॉल हमेशा लग जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम लैंडलाइन से आपसे बात कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि किसका कॉल अगला होगा। तो शायद जैसा आप कह रहे हैं कि हमारे ये श्रोता जो हैं वो लगे रहते हैं लगातार पूरे एक घंटे के दौरान कि कभी न कभी तो उनका कॉल लगेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। रमेश जी, कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं?
1: आज मैंने गाना मैडम जी ये क्या है कि ईद की
0: जी
1: जो त्योहार आ रहा है, पर्व है ईद का
0: जी,
1: तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए गीत चुना है मैंने। फिल्म है कुली
0: जी, जी
1: बच्चन साहब पे जो फिल्म आया है
0: जी।
1: गीत मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, ना थी किस्मत मेरी तू देख मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये गीत मैंने सिलेक्ट किया है।
0: चलिए बहुत अच्छा है ये। आपको ये गीत हम सुनवा देते हैं रमेश जी, क्योंकि अब समय हमारे पास बहुत थोड़ा बचा है, तो जी, थोड़ा जी, सा तो आप ये गीत सुन पाएंगे
1: जी। ठीक है,
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय चूंकि समाप्त होने को है, तो अब आरती जाधव उनको दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ध्यान, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।
1: हेलो, MH हॉटलाइन।
0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
2: नमस्कार, बात आपकी, गीत हमारे। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, आज का समय एक तेज रफ्तार समय है, दौड़ती भागती हुई जिंदगी है। ये अनगिनत उलझनों का समय है। चेहरों पर मुस्कानें हैं, लेकिन मन के भीतर कहीं एक बेचैनी भी है। हर कोई कुछ न कुछ पाने की दौड़ में है, और इसी दौड़ में शायद मन का सुकून कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है। कभी काम की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी बिना किसी वजह के मन का खाली खाली सा हो जाना। आज लगभग हर इंसान किसी न किसी अनकही थकान को अपने भीतर लिए चल रहा है। ऐसे में हर कोई अपने अपने तरीके से सुकून की तलाश करता है। किसी को पूजा और प्रार्थना में शांति मिलती है, कोई संगीत से अपने मन को हल्का कर लेता है, कोई प्रकृति के बीच पहुंचकर शांति महसूस करता है, कभी किसी का साथ सुकून लेकर आता है, तो कभी कभी कुछ देर मौन रहकर भी हम अपने मन को शांत करते हैं। तो आज बात आपकी, गीत हमारे कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब कभी आप अशांत होते हैं, बेचैन होते हैं, तब आप खुद को कैसे संभालते हैं? आपके मन का सुकून कहाँ बसता है? कौन सी जगह, कौन सा साथ, कौन सी आदत या कौन सी बात आपके भीतर को शांत करती है? तो आज यही बात साझा कीजिए हमसे। हो सकता है कि आपकी बात किसी को मुस्कुराने और संभलने की वजह दे जाए। बात आपकी, गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए
3: जी। दीदी, मैं ग्राम बिड़ोरा, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुर्जर बोल रहा हूँ।
2: लोकेंद्र जी, क्या हालचाल हैं, क्या चल रहा है इन दिनों?
3: इन दिनों तो दीदी बहुत भीषण गर्मी एमपी में चल रही है, बिल्कुल सभी जगह गर्मी बहुत तेज है। उसके अलावा जो कि लू चल रही है, उससे बचने के लिए भी सभी श्रोताओं से निवेदन है कि क्योंकि ज्यादा जरूरी काम हो तो ही घर से निकले, और घर से निकले वो भी पानी की बोतल साथ में लेकर, और अपने जो कि तौलिया से अपना माने मुंह बांध कर, और सर पे कोई माने कंचा फंचा डाल के बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि सर ढक के और मुंह ढक के जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इसपे जो शरीर पे भूख तेज पड़ रही है तो उसके लिए अपने ही नुकसान के लिए अपने नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हो सके तो अपने जेब में एक प्याज की गठिया भी डाल के जाएं, तो उससे लू लगने की बहुत कम चांस रहते हैं।
2: तो चलिए, लू से बचाव के उपाय तो आपने बताए, अब हम चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि जब कभी जिंदगी में आप बेचैन होते हैं, आपको एक उद्वेलन होता है, तो सुकून की तलाश में आप किस दिशा में जाते हैं?
3: जी दीदी, उसे तो देखो एक बात है कि हर इंसान हर प्रकार का होता है, और हर जगह अपना अपना माने जो सुकून मिलता है वहां जाता है, लेकिन सबसे अच्छा सुकून तो मैं एक ही बात कहूंगा, जो कि मंदिर में सुकून मिलता है, अपने भगवान के दरबार में वो सुकून कहीं नहीं मिलता है। अपने अपने माता पिता नो जो सुकून मिलता है, और जो मंदिर में मिलता है, वो इसके सिवा और सुकून कहीं नहीं मिल सकता है।
2: क्या बात है। तो आप जब बहुत परेशान होते हैं तो आप मंदिर चले जाते हैं, ये आप कह रहे हैं?
3: बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर जाते हैं जो कि बजरंग बली का मंदिर में, तो वहाँ जो कि भगवान के दरबार पे हमको ही नहीं मैम सभी लोगों को सुकून मिलता है, और वहाँ पर इतनी शांति मिलती है।
2: जी, ये हमारी आस्था विश्वास का विषय होता है। दरअसल बात ये होती है कि कोई भी धर्म स्थल जो होता है, वहाँ जब समूह में लोग जाते हैं, इतने सारे लोग जो एकत्रित होते हैं, उनकी सामूहिक जो ऊर्जा है समर्पण की, आस्था की, भक्ति की, प्रेम की, वो काम करती है वहाँ पर, है ना?
3: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल
2: जी। तो हमें बहुत अच्छा लगा लोकेंद्र जी कि जब आप बेचैन होते हैं तो आप ईश्वर की शरण लेते हैं, और आपने कहा कि माता पिता के पास बैठते हैं। बिल्कुल सच है कि जब आप बहुत परेशान होते हैं तो माँ बाप के साये में एक अजीब सा सुकून होता है, वो दो शब्द कह देते हैं, आपके सिर पर हाथ फेर देते हैं, कह देते हैं कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, इतने से ही बात बन जाती है।
3: उनके आशीर्वाद से मैम, बिल्कुल पहला आशीर्वाद तो अपने माता ही पिता है जो भी कुछ है।
2: बिल्कुल
3: उनके माता पिता की सेवा और कोई नहीं है, उसके अलावा जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ शांति मिलती है। और सभी लोगों से निवेदन भी मेरा यही है, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है और आजकल इतने बच्चे लोगों को जो मोबाइल से इतना नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो कोई बच्चे को इतनी लत पड़ जाती है, कोई गेम खेलता है, कुछ करता है, तो हर वक्त अपने माता पिता को टाइम नहीं देते हैं। जितना होता है कहीं भी जाए, चाहे रिश्तेदारी में चाहे कहीं भी, तो मोबाइल में ज्यादा लगे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं,
2: और बच्चों को इसका असर ये होता है,
3: नुकसान, अपनी आंखें भी कमजोर होती हैं और अपने माता पिता जो बैठे उनको भी टाइम नहीं दे पाते, उनसे भी कुछ बातें करो, उनके पास बैठो, उनसे हालचाल पूछो, उनकी सेवा करो, तो भी अपन को आशीर्वाद देते हैं। तो अपने माता पिता है, अपने अपन को ही करना है, तो इसलिए कहता हूँ कि मोबाइल में कम से कम टाइम दें और अपने अपने बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, उनके पास बैठें, उनकी बातें सुनें।
2: तो लोकेंद्र जी आपने एक अच्छी बात कही कि स्क्रीन टाइम चूंकि बच्चों का बढ़ रहा है तो इससे भी एक एंजाइटी होती है बच्चों में, एक बेचैनी रहती है, उन्हें लगता है कि एक घबराहट है ना,
3: बिल्कुल
2: इससे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। तो आज आपने इस विषय पर एक अच्छी बात रखी, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने विचार रखे, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: हेलो,
1: हेलो जी।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: हाँ, मैं गांव रणथंभौर जिला शाजापुर से हसन खां मंसूरी बोल रहा हूँ।
0: हसन खां मंसूरी जी, कितने दिनों के बाद फोन किया है?
1: पहली बार फोन किया मैम हमने, और
0: अरे
1: मैं
0: वाह।
1: रेडियो लेकर बहुत साथ में घूमता रहता हूँ, और मेरे को रेडियो से मेरा बहुत प्रेम है। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आज की जो जिंदगी है मैम, माल के हवा से में, वो हवा से में जो आदमी जो इधर उधर भटक रहा है, जो भटकने के बजाय वो उसकी सांसारिक जीवन का जो अंत है वो छोटा सी चीज लेके जाएगा। वो इतनी बड़ी दुनिया को, जिंदगी को जीकर आया है इंसान जिंदगी में जीने के लिए, तो उसका मकसद ये है कि हम अपने मालिक की बंदगी के साथ उस पे जो मिला है उस पे हमें भरोसा करके उस पे ही हमें जीना है।
0: तो ये तो हमें क्या करना चाहिए, ये बात हुई। तमाम बातें जानने के बाद भी मन कभी कभी बेचैन होता है हसन जी, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: हाँ।
0: जब ये बेचैनी होती है तो आप कौन सा उपाय करते हैं कि आप शांत हों?
1: हमारा अब ये देखो मैडम, ये तो है कि जो सरलता का जो मन है, जो भाव है, जो हमारे जो इसके अंदर है, जो है उसी पर संतोष करना पड़ेगा। बस मेरी तो एक ये राय है।
0: तो आप संतोष तो करते हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि आप बहुत बेचैन हैं, आपको दुख हो
1: जी
0: रहा है,
1: जी जी
0: डिप्रेशन हो
1: जी
0: रहा है। ऐसी स्थिति में भौतिक रूप से आप क्या करते हैं? कुछ लोग किताबें पढ़ने लगते हैं, कुछ लोग बच्चों के बीच चले जाते हैं, कुछ लोग
1: हाँ, तो
0: प्रकृति के
1: हम
0: बीच
1: तो
0: चले
1: देखो
0: जाते
1: किसान,
0: हैं।
1: खेती किसानी वाले हैं,
0: जी
1: और मैं आप रेडियो सुनता हूँ। जो मानसिक तनाव का जो भाव प्रभावित होता है, तो मैं एक विविध भारती, चाहे वो भोपाल का हो या इंदौर का हो या कोई बम्बई का हो, उसको सुनकर हम संतुष्टता पाते हैं।
0: वाह, क्या बात है। तो आपका कहना है कि जब कभी आप जिंदगी में बेचैन होते हैं
1: जी
0: तो
1: जी
0: विविध भारती सुनते हैं, जिससे आपका तनाव कम होता है। तो हमें बहुत अच्छा
1: बिल्कुल
0: लगा हसन खां मंसूरी जी, कि आकाशवाणी यानी रेडियो आपके लिए एक समाधान प्रस्तुत करता है, इलाज की तरह आपके जीवन में प्रवेश करता है। इसी तरह
1: बिल्कुल
0: से रेडियो
1: बिल्कुल
0: से प्रेम बनाकर रखिए। बहुत शुक्रिया आपने हमें फ़ोन किया।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद महोदया। मैं ग्राम तरसुमा जिला मुरैना से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: हरविलास सिंह तोमर जी कैसे हैं?
1: आपकी दुआ ईश्वर कृपा से बहुत अच्छी तरह से हैं।
0: आज हम बात कर रहे हैं कि जब कभी आप जिंदगी में बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, तो सुकून की तलाश में किस ओर चलते हैं आप?
1: जी, जब जब जीवन के क्षण विघटित हो जाते हैं तब तब मैं रेडियो को और चलता हूँ। चेतना की किरण तब रेडियो बनता है मेरा।
0: तो आकाशवाणी समाधान प्रस्तुत करता है।
1: बिल्कुल, मनोरंजन भी और सटीक सूचना भी देता है और शिक्षाप्रद बातें भी देता है आकाशवाणी
0: जी। लेकिन इसके अलावा रेडियो तो आपको सहारा देता ही है, संबल है आपका।
1: इसके अलावा मैं सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहता हूँ।
0: किस तरह के
1: सामाजिक कार्य? कोई है जैसे मैं सुबह उठ के 2 घंटे झाड़ू लगाता हूँ, गांव गली की सफाई, मंदिरों की सफाई। 14 वर्ष का नियम हो गया मेरा, ये प्रतिदिन 2 घंटे करता हूँ।
0: क्या बात है। तो मुझे लगता है कि जब हम बहुत व्यस्त रहते हैं तो बहुत बेचैन होने का वक्त भी नहीं होता। जी जी। तो हरविलास सिंह तोमर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें फोन किया। बहुत आभार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: नमस्कार, अपना परिचय दें।
1: भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज वासोदा जिला विदिशा।
0: भागचंद साहू जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आज के
1: बिल्कुल
0: विषय
1: जी,
0: पर?
1: आज के विषय पे कहेंगे दीदी, जैसे आप बेचैनी होती है, कोई टेंशन में होते हैं, तो हम तो धार्मिक स्थल पे भी जाते हैं, वहाँ पे अपना मन बहला लेते हैं, और संतुष्टि रखना सहनशीलता जरूरी है।
0: तो आप किसी धार्मिक स्थल का रुख करते हैं जब बेचैन होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी।
0: जी, इसके अलावा और कोई उपाय?
1: नहीं दीदी, और हम तो ऐसे ही हैं कि देखो, सहनशीलता जरूरी है। अगर कोई टेंशन में दिमाग है तो उसके इलाज सहनशीलता रखें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
0: बहुत से लोग होते हैं जो बच्चों के साथ बातचीत करने लगते हैं, इससे भी कुछ मन हल्का होता है ना? कई बार
1: हाँ,
0: बुजुर्गों के
1: बिल्कुल
0: पास
1: दीदी,
0: मन हल्का होता है।
1: बिल्कुल
0: जी, तो चलिए भागचंद साहू जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने आज के विषय पर अपना विचार
1: बिल्कुल
0: रखा।
1: दीदी। कैसी हैं आप?
0: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: आप तो, हम तो दीदी बहुत बढ़िया है। और दीदी, हम पानी पूरी सेंटर का ठेला लगाते हैं
0: तो
1: हम।
0: भागचंद साहू जी, ऐसे ही स्वाद बिखेरते रहिए। चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज के विषय पर आपने विचार रखा। बहुत बहुत शुक्रिया
1: बिल्कुल
0: आपने
1: ठीक
0: फोन किया। सुनिए ये प्यारा
1: है
0: सा
1: दीदी,
0: गीत।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताएं।
1: जी, हम जिला मिर्जापुर गांव नदौली से शुभाकांत बोल रहे हैं।
0: शुभाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी जी, आप कैसे हैं?
0: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: जी जी, हम भी बहुत अच्छे हैं। अभी धूप का आनंद ले रहे हैं, रेडियो भी सुन रहे हैं हम।
0: धूप का आनंद ले रहे हैं, बहुत तेज गर्मी है ना। अच्छा शुभाकांत जी, हम जानना चाहते हैं कि आज का जो हमारा विषय है उस पर आप क्या कहेंगे?
1: हमारा यही कहना है कि हम रेडियो बहुत, मतलब दोबारा हमारा जिंदगी जब हो जाता है तो हम यही रेडियो सुनते हैं, संगी साथी के साथ खेलते हैं, बातचीत करते हैं, घूमते टहलते हैं, मन हमारा लगता है बहुत ज्यादा।
0: अच्छा, तो जब कभी जिंदगी में आप बेचैन होते हैं तो सबसे पहले आप रेडियो के पास जाते हैं, ये आपका कहना है, और खेलते हैं।
1: म्यूजिक सुन लेते हैं तो दिमाग हमारा फ्रेश हो जाता है।
0: अच्छा, तो संगीत एक जादू सा असर करता है। बात सही है कि संगीत को तो थेरेपी की तरह भी आजकल हम प्रयोग में लाते हैं ना।
1: जी, हमारा जिंदगी जाते कर सुकून नहीं उसे होता है, हम लोग रेडियो के बाद संगीत साथी जाते हैं, बहुत खेलते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं, हम लोग घूमते
0: खेलते हैं। कैसे खेल खेलते हैं? कौन कौन से खेल खेलते हैं?
1: हम लोग छुआ छुपाई खेलते हैं और चोर सिपाही खेलते हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। खेल तो एक स्वस्थ मनोरंजन का माध्यम है ही, तो आप खेल पाते हैं और घर से बाहर निकलकर खेलते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है।
1: खेलने से हमारे शरीर को तो क्षमता बढ़ती है ना।
0: खेलों से आप मानसिक रूप से भी सशक्त होते हैं और शारीरिक रूप से भी सशक्त होते हैं।
1: जी जी, हमारा भी श्रोताओं से यही अनुरोध है कि आप घूमे टहले खेले, अपने
0: जी। और आपने कहा कि हम बातचीत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप परेशान हो, आपका मन बेचैन हो, तो अपनी बात किसी से जब हम कह देते हैं तो मन हल्का हो जाता है ना, और उसका समाधान भी मिलता है।
1: अपनी बात कर दिया जाए तो बहुत हल्का हो जाता है कि चलो इससे भी कह दिया भाई, मन कुछ सहारा होगा हमारा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बैठ के दिखाएगा तो भला है वो बैठ
0: जी। तो परेशानी के बीच संवाद की स्थिति बनी रहे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, तभी हम सुकून की तरफ चलते हैं। तो शुभाकांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो उपाय बताए हैं मुझे लगता है कि बाकी के जो हमारे श्रोता हैं उन्हें भी इस पर अमल करना चाहिए, है ना। खेल की आपने जो बात की है, खेलों से बहुत दूर होते जा रहे हैं हम आजकल, तो खेलों की तरफ जब हम लौटते हैं तो यूं ही परेशानी कम होने लगती है। तो शुभाकांत जी, आज आपने हमसे बातचीत की, अपने विचार रखे, आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी,

0: हेलो
1: जी नमस्ते दीदी, मैं जगत सिंह चड़ार ग्राम पिपलिया बराई तहसील बेगमगंज जिला रायसेन से बोल रहा दीदी।
0: नमस्कार जगत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।

0: कैसे हैं?
1: जी, बढ़िया है दीदी जी।
0: आज की जो
1: पहले तो हमें आपसे बात करके बहुत खुशी होती है।
0: हाँ, हमें भी अपने श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लगता है। आज के विषय पर क्या कहेंगे?
1: जी मैडम जी, ये आज क्या है कि जो कोई सी चीज के टेंशन हो जाए तो अपन मनोरंजन में काट देते हैं समय।
0: अच्छा, जब आप बेचैन होते हैं तो मनोरंजन में समय काटते हैं।
1: जी, अपना
0: और
1: रेडियो चालू करा तो उसमें अपन ने जो दिमाग खराब कछु में भी हो गया तो
0: जी,
1: अपन रेडियो से लगान है अपनी ज्यादा, तो
0: हाँ जी
1: उससे अपन मनोरंजन से अपन सही हो जाते अपना दिमाग।
0: जी तो गीत संगीत सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है और धीरे धीरे मन शांत होता है।
1: शांत हो जाता है क्योंकि मनोरंजन से भी एक रेडियो भी बहुत बड़ी चीज है। अपना दोस्त बना के चलो तो बहुत बड़ी चीज है रेडियो भी,
0: बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो एक अच्छा दोस्त है, सच्चा दोस्त है।
1: क्योंकि रेडियो से बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती है, अच्छी बात मिलती है और देश विदेश की खबर मिलती है और आप सब जगह की ऐसी बातें मिलती हैं कि उससे अपन को दिमाग में समझने चाहिए कि जैसे कोई दुर्घटना होती है गाड़ी वाहन से तो वो भी अपन को समझ के चलना चाहिए। कि बहुत सी चीजें हैं
0: बहुत सी बातें आपको रेडियो के माध्यम से मालूम होती हैं।
1: जी।
0: तो हालांकि हमारे बहुत से श्रोताओं ने कहा कि हम रेडियो सुनते हैं जब मन का सुकून तलाशते हैं, तो इसके अलावा और क्या उपाय करते हैं आप?
1: जी, अब वो उपाय तो यही है अपनों, तो क्योंकि अपन तो अब जो दुकान है तो इसमें समय पास होता है
0: तो दुकान
1: जाने
0: में
1: के
0: बैठ
1: बाद।
0: जाते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं और रेडियो साथ में जब आपसे बातें करने लगता है तो आपका मन शांत होता है। तो जगत सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। रेडियो से जो आपकी ये मित्रता है ये बनी रहे, ये हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया।
1: जी नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताएं।
1: नमस्कार मैम, मैं सुरेश कुमार सारथी बोल रहा हूँ मैम, बेमेतरा जिला वार्ड क्रमांक 20।

0: ज्ञान है।
1: बहुत अच्छी बात है सुरेश जी। आज के समय में आप जाते हैं किसी लाइब्रेरी में और पुस्तकालय में जाते हैं और पढ़ते हैं, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा है।
0: हाँ। हमारे घर के पास ही लाइब्रेरी है मैम।
1: जी जी जी जी, बहुत अच्छी बात
0: और
1: है।
0: साथ में पेड़ पौधा लगाते हैं मैम। अभी तो बरसात आने वाली है तो बिल्कुल हम दो चार पेड़ उगाएंगे, उसका देखभाल करेंगे मैम। भाग दौड़ की जिंदगी में सुकून तो कहीं ना कहीं हमको अब तो करना होता है।
1: बिल्कुल। तो सुरेश जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि जब आप परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, तो आप जो उपाय करते हैं वो ये है कि पहले तो गीत संगीत सुनते हैं, है ना?
0: बिल्कुल। रेडियो तो हमारा एक संगीत के बहुत बड़ा मायने रखता है मैम। रेडियो हम डेली सुनते हैं मैम।
1: हाँ, बहुत अच्छी बात है।
0: चाहे हम दुखी रहें चाहे सुखी रहें, रेडियो सुनना तो हमारा एक हिस्सा है हमारे जीवन
1: जी।
0: का। हम 40 साल से रेडियो सुन रहे हैं मैम।
1: जी जी, तो रेडियो आपके दुख सुख का साथी है ना?
0: साथी है मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम। और सब बात एक बात मैम, हमारे जीवन में चिट्ठी पत्र लिखना बहुत एक अहम भूमिका है मैम।
1: अच्छा।
0: जितने भी आकाशवाणी केंद्र में है, आपके भोपाल में भी हमारे पत्र जाते रहते हैं। हम अनेकों जगह के आकाशवाणी में फरमाइशी पत्र भेजते हैं मैम।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी आदत है ये।
0: भोपाल है
1: जी,
0: अपना श्रीनगर है, छिंदवाड़ा है, रोहतक हरियाणा है, दिल्ली है, और हमारे छत्तीसगढ़ के आसपास के जितने भी आकाशवाणी केंद्र है, रायपुर, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर।
1: जी जी जी, तो सभी जगह आप चिट्ठियां लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, चिट्ठियों का जो संसार है वो अब लगभग समाप्त सा है। हमारे जो आकाशवाणी के श्रोता हैं वही इस तरह की चिट्ठियां लिख रहे हैं और इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। तो आप चिट्ठियां लिखते हैं, रेडियो सुनते हैं, और बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आप पुस्तकालय जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं। किताबें हमारी सच्ची मित्र होती हैं, है ना? तो आप किताबों का साथ करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है जी। तो सुरेश कुमार जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: हमारे सारथी परिवार की ओर से आपके केंद्र के पूरा यूनिट को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: रमेश शाह बोल रहा हूँ जी।
0: रमेश शाह जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार जिले से का रहने वाला हूँ।
0: बिहार के रहने वाले हैं, अच्छा
1: जी।
0: तो हम जानना चाहते हैं रमेश जी कि जब कभी जिंदगी में आप परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, तो खुद को कैसे संभालते हैं? सुकून की तलाश में क्या करते हैं आप
1: जी? तो अपने तो घर में मिल माल के रहना चाहिए जी।
0: मिलके तो रहना चाहिए, लेकिन होता यह है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं या जिंदगी में ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मन बहुत बेचैन होता है, दुखी हो जाता है। तो हम जानना चाहते हैं कि जब कभी आपके मन की शांति छिन जाती है, तो मन की शांति के लिए, मन के सुकून के लिए आप क्या उपाय अपनाते हैं?
1: बस जी, अपना प्रेम से ही रहना चाहिए अच्छा से जी।
0: बच्चों के साथ खेलने से भी कई बार अच्छा लगता है।
1: हाँ जी, तो ये तो बात सही है।
0: तो आप बच्चों का साथ करते हैं?
1: हाँ जी, बच्चे के साथ भी बैठे हुए हैं जी।
0: तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय बीतता है। जब कभी आप बहुत तनाव में हो, तो उनकी जो निश्चलता है, उनकी जो मुस्कान है, सारा तनाव दूर कर देती है ना?
1: जी।
0: तो चलिए रमेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से बने रहिए आकाशवाणी के साथ। बहुत शुक्रिया।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कौन बोल रही हैं?
1: जी मैं सरिता शर्मा गुना से बात कर रही हूँ। मैं शिक्षक हूँ।
0: अच्छा आप पढ़ाती हैं? किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं?
1: मैं 9th से 12th तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ।
0: क्या बात है, तो बच्चों में संस्कार डालने का आप काम करती हैं, बहुत अच्छी बात है।
1: जी।
0: तो हम ये जानना चाहते हैं सरिता जी कि आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, भागती दौड़ती जिंदगी है, इसमें बहुत सी चिंताओं में हम उलझ जाते हैं और बहुत बार मन बहुत बेचैन हो जाता है ना। सुकून की तलाश हर इंसान को है, तो मन की शांति के लिए, सुकून के लिए आप कौन से उपाय अपनाती हैं जब आप बेचैन होती हैं?
1: मन की शांति के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के भजन सुनती हूँ, कथा सुनती हूँ, जिससे कि मन की शांति मिले। और भगवान की भक्ति में संगीत सुनते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है, या कोई भगवान का जाप मन में करते रहते हैं तो उससे भी शांति मिलती है।
0: क्या बात है, बिल्कुल। नाम जप जब हम करते हैं तो भीतर हमारा जो है वो ठहराव एक पैदा होता है ना, स्थिरता आने लगती है। इसके अलावा और क्या क्या उपाय करती हैं?
1: अधिकतर तो मैं यही उपाय करती हूँ, भगवान के मंदिर में बैठ जाती हूँ, थोड़ा ध्यान लगाना और ये संगीत सुनना। कभी कभी फिल्मी संगीत में भी कुछ ऐसे गीत होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनको भी सुनते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है।
0: बिल्कुल, फिल्मी गीतों में कई बार
1: सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। मैं रेडियो अधिकतर सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: अब कार्यक्रम का तो ऐसा नहीं है, मेरा फिक्स नहीं है। मैं जब भी ऑन करती हूँ तो कोई ना कोई, जैसे आकाशवाणी भोपाल है और अपना FM है, गुनाका है, तो ये मैं कुछ कार्यक्रम इसमें सुनती रहती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है सरिता जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे कि जब कभी आप बेचैन होती हैं तो भक्ति संगीत सुनती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप नाम जप करती हैं। सच है कि जब हम बेचैन होते हैं और मौन हो जाते हैं, मौन होकर भीतर ही भीतर जब नाम स्मरण करते हैं तो मन बहुत स्थिर होता है और हमें बहुत सुकून मिलता है। और इसके अलावा गीत संगीत की आपने बात की, सच है कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समाधान की तरह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, है ना। ऐसे बोल होते हैं कि आपकी बहुत सी परेशानी कई बार दूर हो जाती है उन बोलों को सुनकर। तो सरिता जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इसी तरह जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, आज अपने मन के सुकून के जो रास्ते आपने हमारे साथ बांटे, वो सिर्फ बातें नहीं थीं, बल्कि जिंदगी को थोड़ा सहज, थोड़ा और सुंदर बनाने वाले एहसास थे। इसी तरह कोशिश करके अपनी जिंदगी में सुकून के रास्ते तलाशते रहिए, क्योंकि जिंदगी है तो संघर्ष भी है, थकान भी है, चिंताएं भी हैं, अवसाद भी है, मुश्किलें भी हैं, लेकिन इन सब के बीच अपने लिए कुछ पल सुकून की तलाशना बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद है कि भागती हुई इस जिंदगी के बीच आप अपने लिए कुछ पल सुकून के जरूर बचा कर रखेंगे। इसी संदेश के साथ अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है इस घंटे की खास खबरों का।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार दोनों सरकार और पार्टी गठबंधन से संबंधित मुद्दों के अलावा राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने धार जिला स्थित भोजशाला में भव्य माता सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम उज्जैन में आयोजित शिप्रा तीर्थ परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। राज्य महिला आयोग में लगभग 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर जन सुनवाई शुरू हो गई है। पहले दिन तक 40 प्रकरण बेंच के समक्ष प्रस्तुत किए गए। आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव कल विश्व प्रसिद्ध खजुराहो में आयोजित होने वाले 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप फुटबॉल के ग्रुप बी मुकाबले में भारत ने कल मालदीव को 11-0 से हराया। 5 बार की चैंपियन भारत का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप

की फरमाइश। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने चुना है लता मंगेशकर की आवाज, इंदिवर का गीत, संगीत है कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है सुहागरात, पसंद आप सब श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, विश्वनाथ साहू, गुलाब दास मानिकपुरी और भागवत वर्मा, इन्होंने दतरेंगी से ये पत्र लिखा है हमें।

पतंगा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़। राजेंद्र किशन ने गीत लिखा है, संगीत है सी रामचंद का। पसंद आप सब श्रोताओं की। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, एलपी, रोहित, लल्लू राम, पूरन, रोहित और छोटू के साथ डुंडुन और समस्त परिवार इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद किया है किशोरी बोस, प्रियंका, बसंत, सरोज, अजीत, मोनिका, हिमांशी और नितिन ने। इनका साथ दिया है आशीष और ममता ने भोपाल से। तो आइए सुनते हैं पतंगा फिल्म का ये नगमा।

और अब आपको सुनवा रहे हैं प्रेम पर्वत फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, जान निसार अख्तर के बोल हैं, संगीत जयदेव का है। पसंद आप सब श्रोताओं की, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्य इस गीत को सुनना चाहते हैं। ये हैं मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, किरण, गीतू, निहारिका, वंश और हार्दिक ये इस गीत को पसंद कर रहे हैं। इस गीत को पसंद किया है राजेश नेमा, संगीता, भावना, प्राची और इनके समस्त परिवार ने। ये पत्र हमें मिला है सिंहपुर बड़ा से, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब आपको सुनवा रहे हैं बेमिसाल फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर, किशोर कुमार, सुरेश वाडकर और साथियों ने। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं। रूपाली मालवी, अर्चित मालवी, सुमन मालवी का पत्र हमें मिला है होशंगाबाद रोड भोपाल से। तो आइए सुनते हैं बेमिसाल फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं जंगली फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, हसरत जयपुरी के बोल है, संगीत शंकर जयकिशन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय इस गीत को सुनना चाहते हैं। कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित के साथ हैप्पी राय ने ये गीत सुनने की ख्वाहिश जताई है।

0: रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों बाद होगा।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी
2: फीस तो देखो
4: क्या हाल है क्या हुआ
3: फीस की टेंशन
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही
5: रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक नो कोलैटरल वो कहाँ है मिठाई
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
8: युवाओं के जोश उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे
9: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ मनोरंजन और ज्ञान की बातें
8: तो सुनते रहिए मालवा की शान
10: आकाशवाणी इंदौर
9: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है
11: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे

0: श्रोतागण को मेरा प्रणाम। पिछली कड़ी में आपने पंचतंत्र का पांचवां प्रकरण अपरीक्षित कारक सुनना प्रारंभ किया, जिसमें चार युवक धन की लालसा में हिमालय की ओर गए। एक को तांबे की खान मिली, दूसरे को चांदी और तीसरे को सोने की खान। चौथे ने सोचा आगे अवश्य ही रत्नों की खान मिलेगी। उस लालच में वो आगे बढ़ गया और तीक्ष्ण धार वाले चक्र को सिर पर धारण कर रक्त रंजित हो गया। स्वर्ण प्राप्त करने वाला मित्र उसे खोजता हुआ वहां पहुंचा और उसकी ये दशा देखकर उसको मूर्खता के लिए कोसा। उसने चक्रधर को मूर्ख युवकों की कथा सुनाई।
1: मित्र चक्रधर सुनो।
2: कहो मित्र।
1: किसी नगर में चार युवक रहते थे। उनकी आपस में बड़ी मित्रता थी।
2: अच्छा।
1: बाल्यकाल में वे विद्या अध्ययन के लिए कान्य कुब्ज देश चले गए। एकाग्र चित्त होकर 12 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद चारों मित्र उद्भट विद्वान हो गए। एक दिन चारों ने परामर्श किया।
2: क्या?
3: मित्रों, आज हमें गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते हुए 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं।
4: हाँ, हम सभी विद्याओं में निपुण हो चुके हैं। गुरु की आज्ञा लेकर अब हमें चलना चाहिए।
5: आप सच ही कह रहे हैं, परंतु हमें अभी घर नहीं जाना चाहिए। अभी तो हम अन्य देशों में पर्यटन करके सभी प्रकार का आनंद लें। इन 12 वर्षों में हमने विद्या ग्रहण के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं किया।
6: ठीक है, यदि ऐसा ही आप सबका विचार है तो मैं भी सहमत हूँ, परंतु चलने से पहले हमें गुरुदेव की आज्ञा लेनी चाहिए।
7: अवश्य अवश्य अवश्य।

0: गुरुदेव से आज्ञा लेकर चारों पूर्व दिशा की ओर चल पड़े।
1: अच्छा,
0: कुछ दूर जाने के पश्चात मार्ग को दो तरफ जाते हुए देखा। अब किस मार्ग पर चलना चाहिए ये निर्णय करने के लिए वे एक स्थान पर बैठ गए। अब एक युवक ने ग्रंथ निकाला और देखना आरंभ किया।
1: अच्छा,
2: किस मार्ग पर चला जाए

0: चारों मित्र शव यात्रा में शामिल होकर उसी मार्ग से चल दिए। अब देखो चक्रधर, महाजन का अर्थ महान लोगों से था, न कि महाजन यानी वणिक। पर उन युवकों को समझ आए तब ना। उधर श्मशान पहुंचकर उन लोगों ने एक गधे को देखा, तुरंत ग्रंथ निकाला गया।
1: अच्छा,
2: मित्रों तनिक ध्यान दें।
3: हाँ।
2: इसमें लिखा है उत्सव के समय दुख में दुर्भिक्ष पड़ने पर शत्रुओं से घिर जाने पर राजसभा तथा शमशान में जो मिले वह स्वजन है।
4: मित्रों अर्थात ये गर्दभ हमारा स्वजन है, तो इसे तो हमें गले लगाना चाहिए। आओ मित्रों गले लगाओ इसे। बड़ा अच्छा लग रहा है।
5: भद्रगण, हम अपने स्वजन को लेकर यहाँ व्यस्त हैं, परंतु दक्षिण दिशा से तीव्र गति से आने वाला वह कौन है जरा देखो तो।
6: मित्र, ये तो ऊंट है।
4: अच्छा,
6: ये तो अत्यंत तेज गति से चलता है।
4: मित्रों चिंता ना करो, चिंता ना करो। हमने ग्रंथ खोल लिया है।
6: अच्छा,
4: अब देखो इसमें लिखा है धर्म की गति तीव्र होती है। हो ना हो ये अवश्य ही धर्म है।
6: धर्म है।
2: क्या ये धर्म है?
4: हाँ।
2: तब तो हमें अपने स्वजनों को धर्म के साथ जोड़ देना चाहिए।
5: बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उचित है। आइए मित्रों इस गर्दभ को ऊंट के गले में बांध देते हैं।
4: हाँ, चलो मित्रों,
5: चलो चलो, चलो, चलो।

0: ये सूचना तब तक किसी ने गधे के मालिक को दे दी थी। लाठी लेकर उसको आता देख चारों युवक भाग खड़े हुए।
1: अरे भागो, अरे देखो वो लाठी लेकर आ रहा, मालिक आ गया, मालिक आ गया, भागो भागो भागो, जान बचा ली, भागो।
0: भागते भागते वे एक नदी के तट पर पहुंचे।
2: अच्छा फिर क्या हुआ?
3: मित्रों थोड़ा यहाँ नदी के तट पे विश्राम कर लेते हैं।
4: विश्राम करते हैं।
1: अरे वाह, कितनी स्वच्छ नदी है। चलो इसमें हम स्नान कर ले।
4: चलो
3: परंतु मित्र ठहरो, इस नदी की गहराई का तो हमें अनुमान ही नहीं है। अब कहीं कुछ हो गया तो
4: भी ठीक है, बिना जाने स्नान करना ठीक नहीं है।
1: परंतु मित्र आपने कदाचित देखा ही नहीं, वो देखिए एक पलाश का पत्र बह रहा है, डूबने पर पत्ता हमें पार उतार देगा, ऐसा ग्रंथ में लिखा है।
4: अच्छा?
1: हाँ अब मैं तो चला स्नान करने। बचाओ बचाओ।
4: अरे अरे मित्र ये तो डूब रहा है।
2: अरे
4: अरे वो पलाश का पत्र तो पता नहीं कहाँ डूब गया।
2: अरे
4: ये तो डूब रहा है, बचाओ भाई, मित्र से बचाओ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता।
3: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी आया।
4: कोई तो बचाओ उसे।
3: अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाओ। अरे कुछ तो प्रयत्न करो भाई। अरे अरे ये तो तुम्हारी चोटी हाथ में आ गई, अब क्या करूं? अब
5: चिंता ना करो, चिंता ना करो, मैंने ग्रंथ खोल लिया है।
4: पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो।
5: इसमें लिखा है सर्वनाश होने की स्थिति में चतुर्जन विनष्ट होने वाली वस्तु का आधा भाग छोड़ देते हैं।
4: अच्छा?
5: और आधे से ही संतुष्टि कर लेते हैं, क्योंकि सर्वनाश दुसह होता है।
3: ऐसा लिखा है?
5: हाँ हाँ यही लिखा है।
3: तो मैं इसका मस्तक काट लेता हूँ, आधे शरीर का

0: कुछ दूर जाकर शेष तीनों मित्र एक गांव में पहुंचे। ग्रामवासियों ने उन्हें अलग अलग घरों में निमंत्रित किया। पहले ने भोजन में घी चीनी से बनी सेवई को दीर्घ सूत्र विनाशकारी कहकर छोड़ दिया। दूसरे ने रोटी को अधिक विस्तृत वस्तु चिरस्थाई नहीं होती ये कहकर, और तीसरे ने वृत्ताकार बड़े को सदोष और आपत्ति कारक कहकर छोड़ दिया। तीनों ही भूखे रह गए, लोगों के उपहास के पात्र भी बने। हे चक्रधर, तुम लालच में आकर मूर्खता कर बैठे, इस कारण तुम्हारी ऐसी दशा हो गई।
1: नहीं भाई स्वर्ण सिद्ध, तुम्हारा कहना निरर्थक है, क्योंकि भाग्य की प्रतिकूलता से बुद्धिमान व्यक्ति भी कष्ट उठाते हैं, और भाग्य के साथ देने से एक मूर्ख व्यक्ति भी आनंद उठाता है। भाग्य द्वारा सुरक्षित वस्तु बिना किसी सुरक्षा के भी बची रहती है। हिंसक पशुओं के मध्य वन में अनाथ छोड़ा हुआ व्यक्ति भी जीवित रह जाता है, और प्रयत्न पूर्वक घर में सुरक्षित व्यक्ति भी जीवित नहीं रह पाता। स्वर्ण सिद्ध,
0: सुनो चक्रधर, सच्चे मित्रों की बात को अनसुनी करने वाला पछताता है, अर्थात अगर व्यक्ति स्वयं बुद्धिहीन है और मित्र का कहना भी नहीं मानता, तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करता है। अतएव मैं कहता हूं, जिसकी स्वयं बुद्धि नहीं होती, उसे मित्रों की सलाह पर विचार अवश्य करना चाहिए। वैसे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सभी लोग लोभ के वशीभूत होकर ऐसा करते हैं। मित्र, अब मुझे जाने की अनुमति दे दो, जिससे मैं घर जा सकूं।
1: भद्र, विपत्ति काल में सहयोग करने के लिए ही धन एवं मित्र का संचय किया जाता है, और तुम मुझे इस परिस्थिति में छोड़कर चले जाओगे। मित्र मित्र को छोड़कर निष्ठुरता पूर्वक जाने वाला नरक का भागी होता है, नरक का भागी।
0: हाँ चक्रधर, तुम ठीक कहते हो, यदि इस स्थान पर रहना संभव होता तो मैं अवश्य रह जाता, परंतु ये स्थान दूसरे के रहने योग्य नहीं है, और इस चक्र से छुड़ाने का सामर्थ्य भी किसी में नहीं है, और तुम्हारी अवस्था भी नहीं देखी जाती। कहीं मैं ही विपत्ति में न पड़ जाऊं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं बाबा, मैं तो चलता हूं।
1: नहीं, स्वर्ण सिद्ध, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। स्वर्ण सिद्ध, मैं इस विपत्ति में अकेला नहीं रह सकता, मुझे छोड़कर मत जाओ। स्वर्ण सिद्ध।

और फिर ये कहकर स्वर्ण सिद्ध चला गया। चक्रधर किसी दूसरे लोभी की प्रतीक्षा में बैठा रह गया। सुधी श्रोताओं, यहीं पर पंचतंत्र का प्रकरण अपरीक्षित कारक समाप्त होता है। साथ साथ विष्णु शर्मा की प्रतिज्ञा रूपी पंचतंत्र भी पूर्ण हुआ। राजा अमर शक्ति के तीनों पुत्र अब मूर्ख नहीं थे, तीनों ही राजनीति के प्रकांड विद्वान बन चुके थे। आज 6 मास पूरे हुए। महाराज अमर शक्ति के लिए तो ये 6 मास 6 युगों की तरह बीते थे। सारी रात्रि आंखों में ही काटी थी उन्होंने। सूर्योदय होते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। मन में कई प्रश्न आ जा रहे थे।

0: हे कुल देवता, मैंने पंडित विष्णु शर्मा की बातों का विश्वास किया था। मेरे विश्वास की लाज रखना प्रभु, मेरे इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कौन होगा? हे ईश्वर, आज समय कटता क्यों नहीं?
1: महाराज, धैर्य का फल मीठा होता है, आप तनिक भी संदेह ना करें। पंडित विष्णु शर्मा आते ही होंगे, वो वचन के बहुत पक्के हैं।
2: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पंडित विष्णु शर्मा तीनों युवराज के साथ आए हैं और दर्शन की आज्ञा चाहते हैं।
0: अरे वाह, उन्हें अविलंब दरबार में ससम्मान लाए।
3: महाराज की जय हो। सुप्रभात महाराज।
4: प्रणाम पिताश्री।
0: आयुष्मान भवा। स्वागत है आचार्यवर, आपके लिए ही हम चिंतित हो रहे थे।
3: नहीं महाराज, चिंता चिता समान होती है। ये एक ऐसा दीमक है जो अंदर ही अंदर खाया जाता है, और अब आपके ये तीनों पुत्र आपकी सारी चिंताएं ले लेंगे।
0: महामंत्री सुमति, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं।
4: नहीं पिता महाराज, कानों सुनी बातों पर विश्वास करना उचित नहीं। राजा को कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उसके पूरे तथ्यों पर विचार कर लेना आवश्यक है। चाहे तो आप हम तीनों की परीक्षा ले लें।
0: पुत्र, हम आपकी क्या परीक्षा लेंगे? ये आपके खाने खेलने के दिन है और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
5: खाने खेलने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है महाराज। हम तीनों भाई चाहते हैं आप अब किसी भी प्रकार से अपने को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं देंगे।
1: पुत्र बहुशक्ति, आप सब में बड़े हैं, आप हमें बताएं एक सच्चे मित्र के क्या लक्षण होते हैं।
5: सर्वप्रथम महामंत्री सुमति को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, एक सच्चा मित्र कभी भी झूठी प्रशंसा नहीं करता, हर सुख दुख में आपके साथ होता है, आपको सही राह दिखाता है।
0: अद्भुत, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
6: महाराज, अधिक प्रसन्नता दर्शाना भी राजा के लिए उचित नहीं है। ये वो पल होते हैं जिनकी प्रतीक्षा शत्रुगण करते हैं। राजा को सर्वदा अपने क्रोध और प्रसन्नता के साथ दुख को भी सीमित रूप से ही दर्शाना चाहिए। मेरे अधिक बोलने के अपराध को क्षमा करें पिता महाराज।
0: नहीं नहीं पुत्र, आप सबकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कानों में अमृत घोल दिया हो।
4: पिताश्री, गुरुदेव बहुत दूर से पैदल आए हैं, वह थक गए होंगे, उनके विश्राम का प्रबंध करना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं यह कार्य करूं, क्योंकि कहा जाता है कि अतिथि देवता का रूप होते हैं। अपने भोजन से आधा भाग अतिथि को देना पुण्य होता है। उनके पैर धोने से कन्या के लिए योग्य वर मिलता है। अतिथि नारायण का रूप है।
0: आपका कथन सर्वथा उचित है वत्स। हे आचार्यवर, मैं किस प्रकार आपका सम्मान करूं? मेरे पास शब्द ही नहीं है, परंतु मैं भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूला हूं कि आपको 100 गांवों का आधिपत्य दूंगा। इसके अतिरिक्त मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं गुरुदेव?
3: नहीं महाराज, नहीं। मैं आपसे पूर्व में ही कह चुका हूं कि मुझे धन

0: भूमि इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन के संध्या काल में अब मेरी कोई कामना शेष नहीं है। महाराज, आपके पुत्रों का जो दायित्व मैंने लिया था मैंने पूर्ण किया। अब अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप मुझे देने वाले धन से अपने राज्य में एक शिक्षा संस्थान बनवाएं, जिसमें ऐसी शिक्षा दी जाए जो छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान से अधिक व्यावहारिक ज्ञान दे सके। आप चाहें तो मैं इस कार्य में आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं।
1: आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। महामंत्री सुमति, आज से ही आप इसकी तैयारी शुरू करवा दें और पूरे राज्य में घोषणा करवा दें कि आज मेरे पुत्रों के आने की खुशी में उत्सव मनाया जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।

हमारी ये पंचतंत्र की यात्रा भी यहीं समाप्त होती है। आप सबका साथ बड़ा आनंददायी रहा, आशा है आप सबने भी आनंद लिया होगा। हमारी ओर से आप सबको सादर नमस्कार।

संग्रहालय से इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र का भाग 13। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

होता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, रामायण दिखी

इश यार दिखा पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा इनसैट

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड, जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एवं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन किया। श्री चौहान ने इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार उन्होंने सरकार और पार्टी संगठन से संबंधित मुद्दों के अलावा राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने धार स्थित भोजशाला में भव्य माता सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के साथ ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज शाम उज्जैन में आयोजित शिप्रा तीर्थ परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव कल खजुराहो में आयोजित होने वाले 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्य महिला आयोग में लगभग 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर जन सुनवाई शुरू हो गई है। पहले दिन कल 40 प्रकरण बेंच के समक्ष प्रस्तुत किए गए। आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 1 बजे हैं, लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

नमस्कार सखियों, महिला सभा लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी सखी नीलम चौरे। और ये सब संभव हो पाया है सखियों रेडियो के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुँचाने का। रेडियो एक ऐसा सफर जिसने समय के साथ कदम मिलाते हुए हर दिल तक अपनी आवाज पहुंचाई। आकाशवाणी 90 वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा को जारी रखते हुए शुरू करते हैं आपसे बातों का सिलसिला। सखियों कहते हैं हर वक्त कामयाबी साथ नहीं होती, कोई भी हार आपके हौसले से बड़ी नहीं होती। वाकई सखियों, अक्सर जब हम असफल होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मन निराश हो जाता है, आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। लेकिन क्या सच में सखियों असफलता अंत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा भी गया है असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। सखियों कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने कभी असफलता का सामना ना किया हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग टूट जाते हैं हताश निराश, तो कुछ लोग उसी से सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। सखियों माना कि हम महिलाओं के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की अपेक्षाएं। लेकिन इन सब के बीच जो सखियां हार नहीं मानती वही आगे बढ़कर अपनी पहचान बनाती हैं। सखियों हमें यह समझना होगा कि असफलता हमें रोकने के लिए नहीं, सही दिशा दिखाने के लिए आती है। कभी कभी अगर किसी काम में सफलता नहीं मिलती इसका मतलब यह नहीं कि हम उस काम के योग्य नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों को और बेहतर बनाना है पूरी बौद्धिक क्षमता और मेहनत के साथ। सखियों जब भी असफल हों तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। यही सोच हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है।

ऐसा ही साथ है सखियों हमारा और आपका सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का, जो हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ी है। और वो योजना है सखियों प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अभियान योजना, जिसकी शुरुआत की गई। यह योजना पहले मिड डे मील योजना के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब बेहतर रूप से आगे बढ़ाया गया, जिसका उद्देश्य स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, ताकि वे स्वस्थ रहें और पढ़ाई में भी रुचि बढ़े। इस योजना से बदलाव आया सखियों। अब सरकारी सहायता स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन तो दिया जाता है, जिससे बच्चों की सेहत में सुधार हुआ और स्कूलों में उपस्थित भी बढ़ी, साथ ही कुपोषण की समस्या भी कम हुई। इसके साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी, जिसमें महिलाओं को भोजन बनाने का काम मिल रहा है, रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। सखियों यह योजना केवल भोजन देने तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों को उनके स्वास्थ्य उज्ज्वल भविष्य की नींव मजबूत करने का सफल प्रयास है। सखियों हमारे आसपास कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, भूखा ना सोए, संतुलित पोषण आहार देना हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार तो काम कर रही है बखूबी, हम भी उनके इस काम को सफल करें। और अब बारी है सखियों गीत सुनवाने की, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तो क्यों अब समय हो रहा है आपको किसी ऐसी सखी से मिलवाने का जो आत्मनिर्भर है। तो आइए सुनते हैं क्रम मेरी उड़ान। सखियों, आज की महिला केवल सपने नहीं देखती बल्कि उन्हें साकार करने का साहस भी रखती है। खाना बनाना, मेहमान नवाजी और स्वाद जो कभी केवल घर तक सीमित माने जाते थे, आज वही हुनर महिलाओं को स्वरोजगार और पहचान दिला रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम ऐसी ही एक प्रेरणादायक महिला से बातचीत करने वाले हैं सखियों, जो एक कैफे की सफल संचालिका है। तो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है श्रीमती अमृता मनदीप सैजल, जो कैफे की ओनर है और अपने कैफे के माध्यम से न केवल स्वरोजगार कर रही हैं बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमृता जी आपका हमारे कार्यक्रम में मेरी उड़ान में।
1: नमस्कार नीलम जी।
0: सबसे पहले आप हमारे श्रोता सखियों को यह बताइए कि कैफे खोलने का विचार आपके मन में कैसे आया?
1: हाँ जी नीलम जी, ये जैसे आपने अभी कुछ देर पहले ही बोला कि खाना बनाने का शौक और खाना खिलाने का शौक, ये दोनों शौक मुझे बचपन से ही हैं। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैं पंजाबी हूँ, तो खाना, ये दोनों शौक मेरे खून में ही हैं। मैंने बचपन से देखा है, मेरे मम्मी होम साइंस के स्टूडेंट थे और वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते थे और मेरे डैडी उनकी पूरी पूरी मदद करते थे और मेरी मम्मी के पास एक उनकी होम मतलब कुकरी की किताब थी, तो उस कुकरी बुक से देख देख के खाना बनाना सीखती थी और वो मुझे खाना बनाने के लिए प्रेरित करते थे। तो वो खाना बनाते बनाते इतना शौक बन गया और फिर मुझे तारीफें मिलने शुरू हो गई, तो जिसके कारण क्या हुआ कि मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लग गया। और मैं बहुत छोटी थी तभी से मैंने क्या मतलब बड़ी बड़ी मतलब राजमा चावल बनाने शुरू कर दिए, पकौड़े, घर के पकौड़े बनाने शुरू कर दिए और मेरी सखियां मतलब मेरी फ्रेंड्स क्या है घर पे खाना स्पेशल खाना डिमांड करके घर पे आना शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब उन्हें अच्छा लगने लग गया मेरे हाथ का खाना और रिश्तेदारों को भी अच्छा लगने लग गया। और एज सच मैंने स्टडीज में एमबीए किया हुआ है तो, और तो थोड़ा व्यवसाय की तरफ मेरा माइंडसेट है।
0: इसका मतलब आप बहुत अच्छी अच्छी डिशे बना लेती हैं और आप इसी फील्ड में मतलब जाने का आपने सोचा?
1: 2021 में मेरे फादर इन लॉ के एक्सपायर होने के बाद हम लोग इंदौर शिफ्ट हुए, तो हमारा यहाँ पे व्यवसाय है, उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस क्षेत्र में नया कुछ करने का सोचा और इसलिए हमने कैफे ओपन करने के बारे में विचार विमर्श किया।
0: तो जब आपने कैफे शुरू किया तो शुरुआत में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
1: देखिए, व्यवसाय एक ऐसा क्षेत्र है कि आप किसी भी इसके किसी भी फील्ड में आप बिजनेस ओपन करें तो कठिनाई आती ही आती है। ऐसे ही कैफे के क्षेत्र में भी बहुत कठिनाई आई और एक महिला होने के नाते कह लीजिए, चाहे आप एक व्यक्ति विशेष के रूप में कह लीजिए, कठिनाई तो आती ही है। जैसे कि शुरू में बहुत लोगों ने बोला कि आपको लॉस होगा, इंदौर में लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो नई नई डिशेस ट्राई नहीं करते हैं, वो पुराने पोहा जलेबी से ऊपर नहीं उठते हैं, आपको कुछ नया नहीं करना है यहाँ पे। मगर मुझे ऐसा लगा कि टाइम के साथ साथ लोगों का टेस्ट भी बदलता है, टाइम के साथ साथ लोग ऊपर मतलब अपने स्वाद के अनुसार नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं, तो हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लोगों के स्वाद को ध्यान में रखते हुए अपने कैफे में नए नए प्रयोग लेके आए ताकि लोगों को हम सेटिस्फाई कर सकें।
0: बहुत अच्छी बात है अमृता जी। और जैसा कि एक महिला उद्यमी हैं आप, और महिला उद्यमी होने के नाते क्या आपको कोई विशेष कठिनाई या कोई अनुभव आप जो बताना चाहें?
1: देखिए, कैफे का अनुभव एक डिफरेंट अनुभव होता है। कोई भी लोग कैफे में क्यों आना पसंद करेगा, वही कॉफी आप घर में बैठ के भी पी सकते हैं और कैफे में भी आके पी सकते हैं। कैफे में आपको जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं, आपको स्पेशल फील करवाते हैं, आप एक एक्सपीरियंस के लिए कैफे में आते हैं, तो वो एक्सपीरियंस हमारे कैफे में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो इंटीरियर है, हमारे जो हॉस्पिटैलिटी स्किल्स जो रहती हैं, जो हमको आपको कोजी वाइब्स मिलती हैं, जो आपको वेलकमिंग जो वहाँ पे महसूस होता है, वो हमारे कैफे में वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं। जैसे हमारे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, बुक्स भी हैं, हम आपको वहाँ पे बिल्कुल बोर नहीं होने देते हैं। हमारे कैफे का इंटीरियर बहुत अच्छा है, जो मैंने खुद किया है, खुद लोगों को ध्यान में रख के, बच्चों को, आज की जनरेशन को प्रेरित करके कोटेशंस कुछ ऐसी लगाई हैं, जो बच्चे को लोगों को मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए। और हमारे में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हैं, जो लोग म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं वो वहाँ पे आते हैं, सिंगिंग करते हैं, बजाते हैं और अपना टाइम अच्छे से इंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ पे बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, इसका भी पूरा अरेंजमेंट रहता है। और जो खाना बनता है वो भी पूरे प्रॉपर हाइजीन और हेल्दी तरीके से बनता है, जैसे पिज्ज़ा बेस रहता है, ब्रेड्स वगैरह रहती है, वो भी बिल्कुल फ्रेश रहती हैं।
0: इसका मतलब आप लोगों के, कस्टमर का काफी ध्यान रखती हैं और उनके खासकर स्वास्थ्य का।
1: देखिए जी, कस्टमर इज अ किंग। कस्टमर के साथ साथ अगर आप ये सोचिए कि जब आप किसी कैफे में जाती हैं तो आप किस चीजों का उम्मीद रखती हैं, तो वही चीज हमने ध्यान में रखते हुए कि अगर मैं कल किसी कैफे में जाऊंगी तो मैं किन चीजों की उम्मीद रखूंगी, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने भी उन चीजों को अपने कैफे में इंक्लूड किया है।
0: बिल्कुल, आपकी जर्नी और आपका सफर सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है अमृता जी। तो हम जानना चाहेंगे कि इस सफर में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण रहा आपके लिए?
1: देखिए जी, परिवार का सहयोग ही सबसे महत्वपूर्ण था। और यकीन मानिए जी, मैंने तो मेरे माँ बाप से और मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से बहुत कुछ सीखा है। मेरे माँ बाप से मैंने कुकिंग स्किल्स का सीखा है और मेरे फादर इन लॉ जो गांव से अकेले आके उन्होंने इंदौर शहर में अपना व्यवसाय शुरू किया और आज जिस मुकाम पे वो पहुंचे हैं उनको पूरा इंदौर शहर जानता है। और मेरी मदर इन लॉ आज भी मतलब एजड हैं मगर उनको अपना डेयरी फार्म चला रही हैं, तो उनसे मैंने ये व्यवसाय स्किल्स का सीखा भी। उम्र कोई मायने नहीं रखती है, इस कोई भी काम आप किसी भी उम्र में शुरू कर सकती हैं। तो ये चीजें सबका

0: मतलब क्या है, मेरे हस्बैंड खुद इंजीनियर हैं, उन्होंने भी अलग अलग तरीकों से मेरे माइंड में ये चीजें डाली है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब मोटिवेशन, एक परिवार का पूरा मेरे को सहयोग मिला है जिससे मैं आगे बढ़ पाई हूँ।
1: बिल्कुल अमृता जी, आपकी बातें सुनकर हमारी सखियां भी सुन रही हैं और आपसे प्रेरणा ले रही हैं। हमारी सखियां भी इस व्यवसाय को करना चाहती हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगी?
0: देखिए, सखियों के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि महिलाएं अगर व्यवसाय में हैं या महिलाएं व्यवसाय में नहीं हैं, तो अपने आप को कमतर ना आंकिए। और महिलाओं के लिए एक कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि विरासत में हमें मेहनत मिली है, कहानी हम खुद लिखेंगे। तो महिलाएं इतनी मेहनती हैं, वो अपने आप को कमतर ना आंकें, और अगर वो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो खुद पे भरोसा रखें, अपनी हिम्मत पे भरोसा रखें और शुरू में छोटे से शुरुआत करें, छोटे से शुरुआत करें और फिर बस निकल पड़े, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। किसी से प्रेरणा ले सकती हैं और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, और जो आपका शौक है, जो कभी आपका शौक रह सकता है, रह चुका है, वो आप उसको व्यवसाय में भी तब्दील कर सकती हैं। अगर आप अच्छे डांसर हैं तो आप डांस क्लास शुरू कर सकती हैं, आप तो अपनी सिंगिंग क्लास शुरू कर सकती हैं। तो आपके खुद के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को तराशिए, उसको तराशने के लिए आपको खुद से प्यार करना होगा। आप खुद से प्यार करिए, अपने गुणों को तराशिए और अपने व्यवसाय पे ध्यान दीजिए।
1: अमृता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो सखियों, इनसे मिलकर, इनसे बातें कर हमने जाना जो एक सीख देता है, हुनर छोटा नहीं होता। हाँ, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए।

सखियों, इस गर्मी में रूखे बेजान बालों का आप ध्यान कैसे रखें? आप यही सोच रही है ना? बिल्कुल सखियों, गर्मियों की तेज धूप, पसीना और धूल हमारे बालों की नमी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और बाल रूखे, उलझे हुए और बेजान से लगने लगते हैं, है ना? लेकिन थोड़ी सी सही देखभाल अपनाकर आप अपने बालों को फिर से मुलायम और स्वस्थ बना सकती हैं। रूप लावण्य में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ घरेलू आसान से उपाय। सखियों, सबसे जरूरी बात इन दिनों शरीर को हाइड्रेशन की ज्यादा जरूरत होती है, ये तो आप जानती हैं। वैसे ही बालों को भी नमी चाहिए, इसलिए दिन भर पर्याप्त पानी पिएं और कोशिश करें बालों को बहुत ज्यादा ड्राई ना होने दें। इसके साथ ही सखियों, एक आसान घरेलू उपाय हम आपको बताते हैं, सखियों दही का इस्तेमाल। सखियों, दही के साथ शहद मिलाकर बालों में लगाएं और ठंडे गुनगुने पानी से बालों को धोएं। जो प्राकृतिक कंडीशनर होते हैं इससे बाल मुलायम चमकदार बनते हैं। और अब दूसरा उपाय है सखियों, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बालों और स्कैल्प पर लगाएं, ठंडक मिलती है और रूखापन भी कम होता है। एक छोटी सी आदत भी बदलना है सखियों, बाल धोते समय हमेशा सामान्य या ठंडे पानी से बाल धोएं, नमी बनी रहेगी। इसी तरह सखियों, तेज धूप के चलते बालों को कॉटन दुपट्टे से ढकना भी अच्छा उपाय है, धूप से तो बचाते हैं साथ ही धूल से भी। सखियों, थोड़ी सी सावधानी बालों में फिर से नमी चमक बरकरार रखती है। स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए और सुनते रहिए ये प्यारा सा गीत।

सखियों अब बढ़ते हैं रसोई की ओर, हमारे क्रम फूड जोन में। सखियों तेज धूप, बढ़ती गर्मी, बस लगता है कि ऐसे में मन चाहे पेय मिल जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है, जिसको पीने मात्र से ही गला तर और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। सखियों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिंट नींबू पंच। फूड जोन में सामग्री नोट करें सखियों, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच शहद, पुदीने की पत्तियां 4-5, 1/2 चम्मच काला नमक, चाट मसाला वो भी 1/2 चम्मच। अब ठंडाई के लिए 1 कप कुटी बर्फ और अंत में 1 गिलास सादा पानी। आप सखियों इसको बनाने के लिए सबसे पहले नींबू के रस के साथ उसमें पुदीने की पत्तियां, काला नमक, चाट मसाला और शहद को एक साथ मिलाकर मिक्सर में पीस लें। अब ग्लास में बर्फ के टुकड़े डालें, तैयार मिश्रण को पानी में डालकर खोलें। इसके बाद ग्लास में नींबू की स्लाइस और पुदीने की पत्तियों से सजाकर सर्व करें। इसको पीने से पेट की गर्मी भी कम होती है सखियों, साथ ही पाचन के लिए भी फायदेमंद होगा इस गर्मी में। तो पीजिए सखियों मिंट नींबू पंच, जो बिल्कुल शुगर फ्री है। और अब सुनवाते हैं आपको ये मीठा सा प्यारा सा गीत।

सखियों अब बात करते हैं काम की। सखियों जैसा कि गर्मियों का मौसम है, तेज धूप और लू भी लेकर आता है, ऐसे में थोड़ी सी सावधानी जरूरी है क्योंकि लू लगने से कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द, थकान, बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो काम की बातों में लू से बचने के उपाय हैं सखियों, दोपहर के समय जितना हो कम निकलें। यदि काम की वजह से आप जा रहे हैं तो सिर पर दुपट्टे, टोपी या छतरी से अपने आप को ढकें। माना कि छुट्टियां हैं सखियों, घूमने जा रहे हैं, पानी की बोतल साथ रखें, दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। साथ ही नींबू, छाछ, नारियल पानी, आम पन्ना जैसे तरल पेय पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। सखियों इन दिनों ज्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन की जगह आप अंकुरित मूंग दाल, मोठ चना का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। साथ ही सखियों मौसमी फल खाएं। उन फलों को चुने सखियों जिनकी तासीर में ठंडक हो, और सखियों जब ज्यादा गर्मी यदि आपको महसूस हो तो तुरंत ठंडा पानी यानी फ्रिज का पीने के बजाय मटके का ठंडा पानी लें और कुछ देर आराम करें। खुद भी रहें सुरक्षित और अपने परिवार का भी ध्यान रखें सखियों इस तपती गर्मी में। ज्यादा बेचैनी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सखियों अब वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें। तो सखियों हम बता दें क्यों कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने, और अब दे अनुमति नीलम चौरे को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
4: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। सुनवाते हैं प्रीतम बोदाना और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लोक संगीत में आप सुन रहे हैं प्रीतम बोदाना और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। आइए इन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं अगला गीत।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे प्रीतम और साथियों के गाए लोकगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। इसमें सुनवाते हैं उमेश भट्ट की गाई कुछ गजलें। पहले सुनते हैं मोहसिन अलवी की लिखी ये गजल।

0: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे, जिसमें आपने सुना उमेश भट्ट की गाई कुछ गजलें। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: पानी की हर बूंद है अनमोल,
2: बहने ना दें इसे बेमोल।
1: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
2: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।

कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रहना।
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार का गाया हुआ है। बोल मजरू सुल्तानपुरी के आर डी बर्मन का संगीत है। फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी।

मेरे हमदम मेरे दोस्त, लीजिए इस फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर को। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत का संगीत दिया है। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषितम के तहत संदेश साझा करते हुए कहा कि सच्चा ज्ञान देश, समाज और पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलता है। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक भी पोस्ट किया, जिसका मतलब है कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध और स्वयं प्रकाशमान है, लेकिन अज्ञान के कारण वह मलिन दिखती है और ज्ञान से फिर अपने असली स्वरूप में आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 साल पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची हैं। यहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन वे महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन करेंगी और आर्किडेडियम और नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगी। वहीं दूसरे दिन नाथुला दर्रे की यात्रा के साथ सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। दौरे के आखिरी दिन वे सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी, जिसके साथ सिक्किम यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में भोपाल निवासी 2 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा। कैलाश चंद्र पंत को शिक्षा और साहित्य और डॉ. नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोनों विभूतियों को बधाई देते हुए कहा कि इनके कार्यों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आज समापन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शाम 5 बजे माँ क्षिप्रा की 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। इस परिक्रमा की शुरुआत कल गंगा दशहरे के मौके पर मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव ने रामघाट पर पूजन कर की थी। ये परिक्रमा 23 साल पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ही मां शिप्रा के संरक्षण के लिए शुरू की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है, उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है, मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत आयुष मंत्रालय पूरे देश में 100 दिनों की काउंटडाउन सीरीज चला रहा है, जिसके तहत 25वें कार्यक्रम की मेजबानी खजुराहो कर रहा है। इस सिलसिले में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप जाधव आज खजुराहो पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर सांसद वीडी शर्मा और विधायक अरविंद पटेरिया ने उनका स्वागत किया। अब रुख करते हैं मौसम का। इस बार नौतपा आते ही प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छतरपुर के खजुराहो में पारा 47.2 डिग्री और नौगांव में 46.8 डिग्री पर दर्ज किया गया। प्रदेश के करीब 45 जिले हीटवेव की चपेट में हैं और मौसम विज्ञान विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी किया है। अच्छी खबर यह है कि 28 मई से प्री मानसून की दस्तक हो सकती है और 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश सरकार ने ईद उल जुहा यानी बकरीद का सरकारी अवकाश 27 मई की जगह 28 मई कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब 27 मई को सभी सरकारी दफ्तर और बैंक खुले रहेंगे। झाबुआ के ग्राम रंभापुर के हाट बाजार में संभाग स्तरीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा बिक रहे खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच की गई। छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों ने शिमला में आयोजित नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड सहित 5 मेडल हासिल किए हैं। खंडवा के मानधाता के आरक्षक रवि सोलंकी ने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में डूब रहे महाराष्ट्र निवासी युवक की जान बचाई और आगरमालवा जिला अस्पताल में तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी देर में दोपहर समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक

0: में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: Will become even more important to the world.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 37वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की।

0: बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 2:30 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ही फिल्मी नगमा, जिसे हमने लिया है मेरे हुजूर फिल्म से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का। इस गीत को सुनना चाहा है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह से ये पत्र आया ओम प्रकाश, किरण, आकाश, विकास, नंदिनी, शिवांश और समस्त नेमा परिवार का। तो आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद का मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ है, शकील बदायनी की शब्द रचना संगीत नौशाद का। मेरे महबूब फिल्म के इस गाने को सुना चाहा है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, सरिता सिद्धांत प्रिंस एकांश, विश्वकर्मा नगर नागपुर से पत्राया शैलेश वैशाली श्वेता सुमित और ध्वनि गवाड़कर का। इसी गीत को सुना चाहा है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश के फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत साथी फिल्म से है, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा, नौशाद का संगीत है। सुनना चाहा है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर रहे महराज जहां, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया का।

कनेरा मोहल्ला पटियाला से ये पत्र आया है बत्ता परिवार का। मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता का। इसी गीत की फरमाइश भेजी पटेल नगर मलूर पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया ने। इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना, राहुल देवबर्मन का संगीत, स्वर किशोर कुमार के और फिल्म है कुदरत।

ये गीत आरजू फिल्म से लिया है जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने। इसे सुना चाहा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया असमा, सालिया शोएब खान, पोतरा मुस्ताफा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई ने। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत वक्त फिल्म से है, जिसे गाया आशा भोसले ने। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा, संगीत तैयार किया रवि ने। सुना चाहा है ग्राम धोरा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, डेविड रुस्तम, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से पतराया दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का। आदर्श नगर मलोट पंजाब से इस गीत को सुना चाहा है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ शर्मा ने।

0: आशा भोसले की आवाज़ में गाए वक्त फिल्म के इस गाने के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम छाया पाठक को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषितम के तहत संदेश साझा करते हुए कहा कि सच्चा ज्ञान देश, समाज और पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची हैं। यहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन वे महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन करेंगी और आर्किडेरियम और नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में भोपाल के निवासी 2 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। कैलाश चंद्र पंत को शिक्षा और साहित्य और डॉक्टर नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश

के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आज समापन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम 5 बजे माँ क्षिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। और इस बार नौतपा आते ही प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति रहेगा। शाम 5:33 और 6:30 आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे रात 8:15 पर और रात 10:00। छः बजे सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें आज आप सुन सकते हैं किसानों की कस्टम हायरिंग, इस विषय पर डॉक्टर अनुराग पटेल से ली गई भेंटवार्ता। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। उर्दू कार्यक्रम कहकशा में रात्रि 9:30 सुनिएगा कव्वालियों पर केंद्रित कार्यक्रम महफिले समा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 आज हम आपको सुनाएंगे पंडित उमाकांत रमाकांत गुंदेजा का ध्रुपद गायन। ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3:02 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ समय के लिए बंद होता है। शाम 5:00 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 मीटर पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम DTH पर जारी है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युव वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं मार्गिशा
1: और मैं श्रद्धा, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: तो दोस्तों, आज है मंगलवार का दिन। आज कई अलग अलग विषयों पर आपसे चर्चा हम करेंगे ही, लेकिन साथ ही आज होता है हमारे एक बहुत ही खास सेगमेंट हमारे शहर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश का एक बहुत ही खास शहर। और ये जो शहर है ये इंदौर से कुछ 100-150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और आप में से कई लोग यहाँ पर गए भी होंगे। और गेस कीजिएगा कि कौन सा शहर है। और इसी के साथ हम जानेंगे कि किस तरह से AI ने डिजिटल स्पेस को पूरी तरह से बदल करके रख दिया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप मौसम का हाल तो देख ही रहे हैं, उफ ये तड़पती गर्मी। लेकिन दोस्तों, इस सब में आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कड़कती धूप में चल रही है बहुत ही तेज़ लू, और इस लू के कारण कई लोगों को कई सारी अलग अलग स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं भी आ रही हैं।
1: और दोस्तों, तेज़ धूप और गर्म हवाओं के कारण कई लोगों को चक्कर आना, उल्टी होने जैसे और फूड पॉइजनिंग जैसी भी समस्याएं हो रही है। और इन सब से बचने का सबसे आसान तरीका है कि कम से कम दोपहर के समय घर से बाहर निकले।
0: इसी के साथ दोस्तों, अपनी डाइट में भी आपको सुधार करने होंगे, जैसे कि फ्रूट्स, जूसेस, कस्टर्ड, सैलड्स, ये सब शामिल करें। और ऐसी फलों और सब्जियों का सेवन करें जिसमें वाटर रिटेंशन काफ़ी हाई हो, ताकि आपकी बॉडी का जो लिक्विडिटी लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहे।
1: साथ ही दोस्तों, जब भी घर से बाहर निकले तो हाथ पर, नाक पर और आँखें, ये तीनों चीज़ें अच्छे से ढकी हुई होनी चाहिए, ताकि धूप डायरेक्टली आपको ना लगे।
0: बस दोस्तों, धूप से बचना और अपना ख्याल रखना और सही मात्रा में पानी पीते रहना आपको इस तेज तड़पती धूप और गर्मी से बचा सकता है और आपको स्वस्थ भी रख सकता है। अब दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले चलिए

0: पूछ लेते हैं आज के जो हमारे प्रश्न हैं। तो ये जो दोनों प्रश्न हैं आप इनके उत्तर गेस कीजिएगा और आपको इसके सही उत्तर हम कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि भारत का पहला डिजिटल विलेज कौन सा था।
1: और दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी फिल्म कौन सी है।
0: तो इन दोनों प्रश्नों के जो उत्तर है आप गेस कीजिए। इसी के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, अब बात करते हैं आज की जेनरेशन के सबसे हॉट टॉपिक की, वो है एआई, या फिर हम उसे एआई रिवॉल्यूशन कहें, क्योंकि एआई ने डिजिटल स्पेस को पूरी तरह से बदल करके रख दिया है। डिजिटल क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। ये केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और जीवन शैली का एक नया इंजन बन गई है।
1: यहाँ डेटा विश्लेषण, ऑटोमेशन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को पहले से कहीं अधिक तेज और सटीक बना रही है। एआई केवल एक तकनीक बदलाव नहीं है, बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति है।
0: और इसीलिए अनुमानों के अनुसार एआई वर्ष 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में 15.7 ट्रिलियन डॉलर का योगदान दे सकता है। ऑटोमेशन के कारण प्रशासनिक और दोहराव वाले कामों में भी लगभग लगने वाला जो समय है वो 40% कम हो सकता है एआई की मदद से।
1: और दोस्तों, ओपन एआई के GPT-40 और एंथ्रोपिक के Claude 3 जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिन्हें हम LLM के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने सामग्री निर्माण को बहुत ही आसान बना दिया है। और आप सभी ने भी अगर कभी ट्राई किया हो तो अब मशीनें पल भर में आपको जो चाहिए वो टेक्स्ट बनाकर दे सकती है, फटाफट वेबसाइट बना देती है। अब जब चाहे कोई भी चित्र एआई से बनवा सकते हैं या वीडियो भी बनवा सकते हैं।
0: इसी के साथ दोस्तों, बिजनेस में भी एआई की बहुत मदद मिल रही है, क्योंकि एआई उपभोक्ता व्यवहार यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर का विश्लेषण करता है और रियल टाइम में उनकी जो भी रिकमेंडेशंस हैं, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करता है, जिससे मार्केटिंग स्ट्रेटजी और बिक्री में भारी वृद्धि होती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने मार्गेशा, और इसीलिए कई बार आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में गूगल पर सर्च करते हैं या फिर आप आपस में बातचीत करते हैं, तो तुरंत अचानक से आपके इंस्टाग्राम पर या गूगल पर उन्हीं चीज़ों के रिकमेंडेशंस आने शुरू हो जाते हैं, उन्हीं चीज़ों के एड्स आने शुरू होते हैं। ये सब AI की वजह से है। साथ ही दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में AI डायग्नोसिस सटीकता में सुधार कर रहा है, जो रेडियोलॉजी और जटिल बीमारियों की पहचान में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।
0: मतलब दोस्तों, हम ये बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि AI केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं है। AI अब जानकारी भी देता है, उससे एनालाइज भी करता है, रिजल्ट भी देता है, और साथ में फोटोज, वीडियोस और जो भी आपको चाहिए उसे जनरेट करके भी देता है। इसे एंजेनिक AI भी इसके स्वरूप में भी इसको देखा जा रहा है, और IT ops यानी IT operations जैसे काम भी इससे बड़ी ही आसानी से किए जा सकते हैं।
1: और दोस्तों, भारत में इस डिजिटल AI क्रांति का प्रभाव शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सरकारी नीतियों के सहयोग से भारत खुद को एक वैश्विक AI पावर हाउस के रूप में स्थापित करने की दिशा में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है।
0: यानी कि श्रद्धा, हम ये बड़ी ही आसानी से कह सकते हैं कि AI ने मनुष्य के जीने और सोचने समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल करके रख दिया है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, ये जो बदलाव है, ये और भी अलग अलग रूपों में हमें देखने को मिलेगा। मतलब हमारी जो सोच है वो कहीं ना कहीं अब सिर्फ AI ओरिएंटेड हो सकती है। लेकिन इस समय हमें ये ध्यान रखने का बहुत जरूरी है कि क्रिएटिविटी जो है या आर्ट जो है, ये कहीं ना कहीं मनुष्य से ही होके निकलता है, इसलिए हमें उसे नहीं भूलना है और AI का उपयोग सुरक्षित ढंग से करना है। क्योंकि AI में सबसे ज्यादा जो खतरा लोगों को लगता है वो है प्राइवेसी का। आपकी प्राइवेसी कभी भी ब्रीच हो सकती है, इसलिए आप जब भी AI का उपयोग करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो प्राइवेसी है वो अफेक्ट नहीं हो रही हो। तो AI जो है, ये हम सभी की जिंदगी में बहुत मददगार साबित और आगे होगा ही। इसके साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: श्रद्धा, तुमने कभी गौर किया है, कुछ जगहों का नाम सुनते से ही ना आंखों के सामने तस्वीर बनने लगती है।
1: और दोस्तों, आज जिस शहर की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है झाबुआ, और वो भी कुछ ऐसी ही जगह है जिसको सुनते ही सबसे पहले ना हमारे दिमाग में हमें रंग दिखते हैं, लाल मिट्टी, रंग बिरंगे कपड़े, चांदी के गहने, मादल की थाप और पहाड़ियों के बीच बसे छोटे छोटे से गांव।
0: और उसके साथ याद आते हैं झाबुआ के रहवासी, जिनके चेहरे पर इतनी सादगी होती है कि शहर वाले उसे देखते ही मुस्कुरा देते हैं।
1: बिल्कुल, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बसा झाबुआ सिर्फ एक जिला नहीं है, ये भील और भिलाला आदिवासी संस्कृति की धड़कन है।
0: और यही वजह है कि झाबुआ की पहचान दोस्तों इसकी इमारतों से नहीं

0: उसकी संस्कृति से होती है।
1: हाँ, और अगर वहाँ किसी गांव में कभी मान लो कि शादी हो जाए तो पूरा गांव शामिल हो जाता है, मादल बजता है, थाली की आवाज गूंजती है और फिर शुरू होता है आदिवासी लोक नृत्य।
0: उफ, और वो घूमते घूमते करने वाले डांस स्टेप्स, ऐसा लगता है कि जैसे लोग नहीं पूरा का पूरा गांव नाच रहा हो।
1: और सबसे खास बात बताए, वहाँ डांस ना सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। खेती अच्छी हुई तो डांस, त्योहार अच्छा आया तो नाचो, और बारिश अच्छी हो गई तो भी नाचो।
0: और इस सबसे मुझे याद आता है भगोरिया।
1: अरे भगोरिया को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, भगोरिया मतलब कि झाबुआ की जान। होली के पहले लगने वाला वो मेला जहाँ रंग, संगीत और परंपरा सब एक साथ मिल जाते हैं।
0: दोस्तों मैंने तो वीडियोस में देखा था, लड़कियां इतने सुंदर पारंपरिक कपड़े पहनती हैं, वो घाघरा, कांच की चूड़ियां, भारी चांदी के हार, आह।
1: और तो और पुरुष भी बिल्कुल पीछे नहीं है, रंग बिरंगे साफे बांधते हैं। कई जगहों पर तो आज भी लोग पारंपरिक हथकरघा कपड़े पहनते हैं। कपड़े यहाँ पर सिर्फ फैशन नहीं, पहचान होते हैं।
0: और श्रद्धा, मैंने तो ये भी सुना है कि भगोरिया के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा भी है।
1: बिल्कुल, और भगोरिया तो इसलिए फेमस भी है दोस्तों, पहले के समय में ना युवा लड़के लड़कियां भगोरिया मेले में अपना जीवन साथी चुनते थे, इसीलिए वे इसे सिर्फ मेला नहीं प्रेम और स्वतंत्रता का त्योहार भी कहा जाता है। और मैंने तो ये कहानी भी सुनी है कि भगोरिया का नाम भगोरिया इसलिए है क्योंकि जब दो युवा साथी एक दूसरे से मिलते थे, अपनी पसंद का पार्टनर चूज करते थे और वो वहां से भाग जाते थे अपने पसंद के पार्टनर के साथ, इसलिए इसका नाम भगोरिया कहा जाता है।
0: मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये झाबुआ का टिंडर है या जो भी ऐसे डेटिंग एप्स है, कहीं ना कहीं ये वही हुआ। बस हम वहां पर डेट करते हैं, यहाँ पर लोग अपने लाइफ पार्टनर्स को भी चूज कर सकते हैं। कितना ऑर्गेनिक है और आप डायरेक्टली फेस टू फेस भी मिल पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बात है।
1: बिल्कुल, और ये एक बहुत ही छोटे सी गांव की बात है, लेकिन फिर भी आज भी जब मतलब कितनी मॉडर्न सोच रही होगी कि अपना पार्टनर खुद, आज जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, खुद का पार्टनर खुद चूज करने की बात करते हैं, वहीं पर झाबुआ एक ऐसी जगह है जहां पर लोग न जाने कब से खुद अपना पार्टनर चूज करते आ रहे हैं।
0: बहुत ही अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमने बस इसे डिजिटलाइज कर दिया है, लेकिन जो एसेंस है कि खुद का पार्टनर हम खुद चूज करें, खुद की जो हमारी लाइफ है उसे किसके साथ स्पेंड करना है हम ये खुद चूज करें, ये कहीं ना कहीं सोच बहुत ही अच्छी है। देखा जाए तो ये जो फेस्टिवल है यहाँ पर रिश्ते भी है, संगीत भी है और उत्साह भी है।
1: बिल्कुल, और झाबुआ के लोकगीत, उफ, उनकी मिट्टी में खुशबू होती है, वहाँ के गीतों में ना, उनके गीतों में पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, बारिश है, प्यार है, खेती है और जीवन की सच्चाई है।
0: और सबसे प्यारी बात, वहाँ लोग गाते वक्त परफॉर्म नहीं करते, उस पूरी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, उसे पूरी तरह से फील करते हैं और इमोशनली उसके अंदर पूरी तरह से डूब जाते हैं। शहरों में लोग स्टेज पर गाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन झाबुआ में खेत में काम करते करते भी गीत शुरू हो जाता है। तो दोस्तों झाबुआ के बारे में हम और भी बातचीत करेंगे ही, चलिए फिर आइए उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, और झाबुआ, इनकी जो लोक कला है वो भी बहुत ही कमाल है। मिट्टी के घरों पर बनी डिजाइन, हाथों से बने बांस के सामान, मन मनके का काम, ये सब कुछ ये बहुत खूबसूरत है।
1: बिल्कुल, और बहुत सी महिलाएं तो आज भी हस्तशिल्प बनाकर कमाई करती है दोस्तों। बांस की टोकरियां हो, पारंपरिक गहने हो, कपड़े हो, ये सब कुछ वहां पर आज भी हाथों से तैयार किया जाता है।
0: लेकिन श्रद्धा, जितनी समृद्धि उनकी संस्कृति है, उतनी ही चुनौतियां भी तो हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, और यही झाबुआ की सबसे बड़ी सच्चाई है। वहां की पहचान सिर्फ त्योहार नहीं, संघर्ष भी है।
0: मैंने पढ़ा था कि कई गांवों में आज भी अच्छी शिक्षा तक पहुंचना आसान नहीं है।
1: बिल्कुल, कई बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए किलोमीटरों तक पैदल चलना पड़ता है। कुछ गांव में आज भी शिक्षकों की कमी है।
0: और खासकर इस समय जब गांव की शिक्षा की हम बात करते हैं, तो वहां पर बात आती है लड़कियों की पढ़ाई की।
1: बिल्कुल, और वहाँ पर हालात तो ये हो रहे हैं कि पहले के अगर बात करें, पहले के मुकाबले बेहतर तो हो रहे हैं हालात, लेकिन अभी भी कई परिवार आर्थिक कारणों से बेटियों की पढ़ाई जल्दी छुड़वा देते हैं।
0: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अवेयरनेस फैल रही है और सरकार भी योजनाएं ला रही है, बदलाव आ रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव आ रहा है। झाबुआ में सरकारी स्कूल, नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। वहां पर कॉलेज भी बन रहे हैं, जैसे शासकीय महाविद्यालय झाबुआ। लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा के लिए ना बहुत से छात्रों को इंदौर या दूसरे शहरों में जाना पड़ता है।
0: ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा तो लगता है कि जो बच्चा पहाड़ियों में बड़ा हुआ है, अपने सपने देखता है, उसे पढ़ाई करने के लिए अपना पूरा गांव

0: अपना घर छोड़ना पड़ जाता है।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि कई युवा काम और पढ़ाई के लिए गुजरात, इंदौर, अहमदाबाद जैसे शहरों की तरफ पलायन करने लगते हैं।
0: और मैंने ये तक सुना है कि झाबुआ से कई लोग जो है वो लेबर्स और जो इंजीनियर्स हैं वो भी कई सारे वहाँ से निकल करके आते हैं।
1: बिल्कुल, खेती वहाँ की एक मुख्य आय का साधन है, लेकिन बारिश पर बहुत ज्यादा निर्भरता है और यही वजह है कि वहाँ पर मुश्किलें भी बहुत ज्यादा आती है। मक्का, कपास, सोयाबीन जैसी फसलें वहाँ पर पैदा की जाती है, लेकिन हर साल मौसम साथ दे ये जरूरी नहीं होता।
0: और शायद मुझे इसीलिए ऐसा लगता है कि जब भी लोग शहर आते हैं तो वो निर्माण कार्य हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, इसी के साथ जो भी लेबर का काम होता है और इंजीनियरिंग के जो काम होते हैं वो लोग काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि खेती बहुत ज़्यादा वहाँ पर मुश्किल है, इसलिए शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि बच्चे जो हैं वहाँ पर, जो युवा है, वो सिर्फ खेती पर निर्भर ना रहे बल्कि शहर आकर जो बढ़िया काम होते हैं जैसे आईटी वर्क्स हो गया और फैक्ट्रीज में मशीन वर्क हो गया, इसे सीख सकें और अपने परिवार को और अपने गांव को आगे बढ़ा सकें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, और यही तो मैं भी कहना चाहती थी कि क्योंकि अब लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो महीनों महीनों के लिए पूरा परिवार गांव छोड़कर चला जाता है और इसीलिए बच्चे भी साथ में जाते हैं और उनकी पढ़ाई भी छूट जाती है। अब अगर उन्हें वहीं पर अच्छा काम मिलेगा, बच्चे वहीं पर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो धीरे धीरे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और धीरे धीरे वहाँ पर भी डेवलपमेंट होता जाएगा।
0: सही कहा श्रद्धा, और जितनी ज़्यादा स्कूल बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा कॉलेजेस बढ़ेंगे, उसके साथ बच्चे घर पर रहकर ही पढ़ाई कर पाएंगे और उन्हें अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा जैसे कि तुमने कहा। और मुझे इसीलिए ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों की जो ताकत है वो कभी हार मानना नहीं है। और इसी के साथ झाबुआ के बारे में दोस्तों हम और भी बात करेंगे, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, गीत से पहले हमने बात की थी कि झाबुआ में लोगों को क्या क्या समस्याएं देखनी पड़ती है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही झाबुआ के लोगों में ना बहुत ही ताकत भी दिखती है। वहाँ के लोग हार नहीं मानते। महिलाएं स्वयं सहायता समूह चला रही है, युवा लोक कला और आदिवासी संस्कृति को सोशल मीडिया तक पहुँचा रहे हैं।
1: और मुझे ऐसा ये भी लगता है कि धीरे धीरे लोग झाबुआ को सिर्फ एक बहुत ही पिछड़ा इलाका या एक कोई बहुत ही आदिवासी और पहाड़ी इलाका ये कहकर नहीं पुकारते, बल्कि उसकी असली पहचान को भी अब अच्छी तरीके से देखने लगे हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि झाबुआ हो सकता है कि एक गरीब क्षेत्र हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से बेहद ही समृद्ध है।
1: तुम्हें पता है मुझे झाबुआ की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है?
0: क्या?
1: हाँ, वो है वहाँ के लोग जो आज भी जल्दी में नहीं जीते।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शाम का टाइम जब होता है ना, तो शाम को वहाँ के लोग घर के बाहर बैठते हैं, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, बुजुर्ग लोग कथाएं सुनाते हैं और आसमान में सच में तारे दिखते हैं।
1: और शहर की बात करें तो शहर में आज लोगों को अपने पड़ोसियों के नाम तक नहीं पता।
0: और झाबुआ में ना किसी घर का चूल्हा ना जले तो पूरा मोहल्ला जान जाता है।
1: और शायद इसी कारण से झाबुआ में ना जिंदगी में एक अपनापन है जो बड़े शहरों में बहुत ही कम देखने को मिलता है।
0: और यही झाबुआ को खास बनाता है। वहाँ की संस्कृति सिर्फ संग्रहालय में रखने वाली चीज नहीं, बल्कि लोग उसे रोज जीते हैं। आपको बताया, झाबुआ में भी राजवाड़ा नाम का एक किला है जो कि शहर के बीचों बीच स्थित है, और वो भी एक बहुत ही फेमस जगह है झाबुआ की। साथ ही मार्गेशा, दोस्तों मैं और मार्गेशा अभी बात कर रहे थे कि झाबुआ में देखने लायक क्या है। तो झाबुआ में देखने लायक वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ही तो है, वहाँ के झरने, वहाँ की नदियाँ, यही तो है झाबुआ में देखने लायक।
1: बिल्कुल, और पहाड़ों से घिरा हुआ ये छोटा सा शहर अपने आप में बसाए हुए है कई सारी खूबसूरत संस्कृति, अपनापन और बहुत सारा प्यार। मांदल की आवाज में, भगोरिया के रंगों में, खेतों की मिट्टी में और उन बच्चों की आंखों में जो आज भी बड़े सपने देखते हैं, यहाँ बसता है झाबुआ।
0: बिल्कुल, और शायद यही उम्मीद झाबुआ को इतना खूबसूरत बनाती है।

0: तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम आपको जो हमने दो प्रश्न पूछे थे कार्यक्रम की शुरुआत में, उसके उत्तर बता देते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने जो उत्तर है वो सही गैस कर लिए होंगे। तो जो पहला प्रश्न था वो ये था कि भारत का पहला डिजिटल विलेज कौन सा है। तो इसका उत्तर है अकोडारा विलेज, जो सबरकंठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में स्थित है। दोस्तों, ये भारत का पहला डिजिटल विलेज है, जिसे ICICI बैंक ने 2015 में अडॉप्ट किया था और उसे ट्रांसफर करने की पूरी जवाबदारी ली थी। और इसी कारण से दोस्तों आपको हैरानी होगी कि इस पूरे गांव में डिजिटल पेमेंट जो है वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से कैशलेस है। मतलब कि जो लोग हैं वो डिजिटल पेमेंट्स जैसे कि डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, SMS, UPI, इन सब का उपयोग करते हैं ताकि वो पेमेंट कर सकें। इसी के साथ यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी सारी सुविधाएं जैसे कि फॉर्म्स भरना हो या किसी को कुछ भी करना हो, वो पूरे तरीके से डिजिटली उसे करते हैं। और ये पूरा शहर जो है ये डिजिटलाइज है। कितनी अच्छी बात है ना।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है कि

0: भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्म कौन सी है? और इसका जवाब है तमस। तमस को सबसे लंबी फिल्मों में एक कहा जाता है, जो कि गोविंद निहलानी द्वारा निर्देशित की गई है और ये फिल्म भीष्म साहनी के उपन्यास पर आधारित है। ये फिल्म लगभग 4 घंटे 58 मिनट की है और साथ ही साथ 1947 के विभाजन में जो दंगे हुए थे उस पर ये फिल्म बेस्ड है। तो ये फिल्म बहुत ही फेमस थी उस वक्त की।
1: तो अगर आप में इतना पेशेंस है तो आप ये फिल्म जरूर देखिएगा। और घड़ी ने भी इशारा कर दिया है कि समय हो गया आपसे विदा लेने का। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। इसी के साथ दीजिए मार्गशीर्ष
0: और श्रद्धा को इजाजत। नमस्ते।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं बेताब फिल्म का गीत। स्वर हैं लता मंगेशकर और साबिर कुमार के, बोल हैं आनंद बख्शी के।

आइए अब सुनते हैं प्रेम रोग फिल्म का गीत। स्वर हैं सुरेश वाडकर के, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की और बोल हैं संतोष आनंद के।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी।
3: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
3: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
3: जी विमलेश जी ठीक वैसे ही ना, जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
3: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा।
2: जी।
3: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
3: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
2: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओं हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
2: जी
3: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
2: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
3: और वो ये है कि इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
2: जी
3: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
2: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं।
3: जी
2: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
3: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
2: जी,
3: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
2: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
3: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
2: जी,
3: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं, कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
2: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
3: जी,
2: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
3: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
2: जी,
3: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
2: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
3: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
3: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
2: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम।
3: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
4: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
5: अ जू?
4: यस, अ जू।
5: Oh yes.
4: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
5: Tiger. Lion.
4: Yes.
5: Monkey. Birds of different kind.
4: Very nice.
5: Camel. Giraffe. And so on.
4: Oh wow. So, here is a child like you. Who wants to go to a zoo? Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
5: Ready!
4: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
5: We are going to the zoo to see a kangaroo.
4: And a lion too.
5: And a lion too.
4: We are going to the zoo.
5: We are going to the zoo.
4: The monkeys swing and climb.
5: The monkeys swing and climb.
4: They know it's feeding time.
5: They know it's feeding time.
4: The polar bear and seals.
5: The polar bear and seals.
4: Enjoy their fishy meals.
5: Enjoy their fishy meals.
4: Yes, we are going to the zoo.
5: We are going to the zoo.
4: The snakes all slide along.
5: The snakes all slide along.
4: The skunk just makes a pong.
5: The skunk just makes a pong.
4: The tiger gives a roar.
5: The tiger gives a roar.
4: He wants to eat some more.
5: He wants to eat some more.
4: We are going to the zoo.
5: We are going to the zoo.
4: Yes, we are are going to the zoo.
5: We are going to the zoo.
4: So children, you all have listened to this poem just now. Hope you have enjoyed, isn't it?
5: Yes!
4: All right. So now, what will we do?
6: We will hum and we will sing along.
4: Yes, we will hum and sing along.
5: Yay!

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
4: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
5: वीर जोरावर की
6: जय।
5: वीर जोरावर की
6: जय।
5: जय जेरापुर, जय भारत।
6: जय जेरापुर, जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।

0: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
1: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
0: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
2: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
3: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
2: जी।
3: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
2: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
3: बिल्कुल,
2: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
3: जी मंत्री जी।
2: जी महाराज।
1: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
5: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह।
6: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
6: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
3: देखिए निजाम साहब।
6: जी फरमाइए।
3: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
6: जी।
3: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
6: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
3: जी।
6: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
7: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
1: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
0: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
7: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
5: बिल्कुल।
7: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साये की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनाम इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
8: हुजूर आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
7: लेकिन जरा होशियारी से।
8: जो हुकुम सरकार।

0: John Albert!
1: What all?
0: Tum charo taraf se ghir chuke ho.
1: Ye kya hai?
0: You are under arrest.
1: Ek sote hue nihatthe insaan ko आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
1: छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश। सालार जंग, मैं खुश हुआ, तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
3: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: जाओ, ले चलो इसको।
1: छोड़ो मुझे, जल्दी से हाथ हटाओ। छोड़ो मुझे।
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े।
5: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
6: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
6: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
6: वाई?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
6: तो तुम नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा।
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
6: एक्चुअली यू आर अ फूल।
4: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
5: काला पानी की सजा?
4: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
5: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
4: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
5: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज हमारी कलाकार हैं अंजलि मराठे। आइए सुनते हैं उनके स्वर में ये गजल।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है सुगम संगीत और आज हमारी कलाकार हैं अंजलि मराठे और हम सुन रहे हैं इन्हीं की गजलें। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे अंजलि मराठे की गज़ल। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में आइए सुनते हैं रतनदास बैरागी और उनके साथियों के स्वर में गाए ये लोकगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है लोक संगीत और आज हमारे कलाकार हैं रतनदास बैरागी और उनके साथी। तो आइए सुनते हैं उनके स्वर में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत में रतनदास बैरागी और साथियों के गाए लोकगीत। लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अस्वाभाविक जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जनसांख्यिकी बदलाव पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अगले 6 महीनों के भीतर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जहां सीमा पार से आने वाले खतरे महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वहीं देश के भीतर ऐसे खतरों में मदद करने वाले आंतरिक तत्वों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए समुद्री निगरानी को मजबूत करने और गतिविधियों की एक साझा तस्वीर तैयार करने की पहल पर सहमति जताई। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा तथा फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की है।
1: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
2: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
1: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली

0: विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। डॉ मांडविया ने कहा कि योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी और अब इसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालिफायर मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को सीधे फाइनल में प्रवेश मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर के विजेता से दूसरा क्वालिफायर खेलना होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है आज और कल की सभा के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आज की सभा के मुख्य कार्यक्रम है 7:20 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम होगा खेती गृहस्थी। कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता, प्रगतिशील महिला कृषक श्रीमती कमला पटेल से भारती उपाध्याय की बातचीत। 8:00 भोपाल से रिले होगा सुर्खियों में, दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम होगा 8:15 पर। चित्रगीत का कार्यक्रम होगा 9:15 पर। भोपाल से रिले होगा उर्दू कार्यक्रम कहकशा 9:30 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन कार्यक्रम होगा 10:00। दस बजकर 30 पर कार्यक्रम होगा शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में सुनिएगा गायन त्रयंबक राव जानोरीकर का, राग होगा सावनी कल्याण। ये थे आज की सभा के मुख्य कार्यक्रम।

कल की सभा के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुन लीजिए। सुबह 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम वंदना, चिंतन सुन सकेंगे सुबह 6:30 पर, सुबह 6:35 पर खेती की बातें में जानेंगे नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र, आपका पत्र यह कार्यक्रम होगा 7:20 पर, कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा 8:30 पर, लोक संगीत के कार्यक्रम में कल कलाकार होंगी सरिता मेघार, कार्यक्रम होगा सुबह 9:00 और शाम 6:45 पर।

सुगम संगीत में कल कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। कार्यक्रम होगा सुबह 9:15 पर और शाम 6:30 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा कल 9:30 पर। कलाकार होंगे पंडित रत्नाकर भट्ट, राग होगा ललित। जिले की चिट्ठी भोपाल से रिले होगा 10:00। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन होगा 10:05 पर। फोन करेगी सुने ये फोन इन कार्यक्रम होगा भोपाल से 11:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दोपहर 12:00 और 2:00 ये भोपाल से रिले होगा। संग्रहालय से ये कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 12:30 पर, भोपाल से ही रिले होगा। भोपाल से अनुप्रसारित होगा महिला कार्यक्रम दोपहर 1:00। लोक संगीत का कार्यक्रम भोपाल से रिले होगा 1:30 पर।

भोपाल से ही सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा 1:45 पर। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा 2:30 पर। यह कार्यक्रम भोपाल से रिले किया जाएगा। युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी शाम 5:00। 5:45 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। 6:00 सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होगा शाम 7:20 पर। सुर्खियों में भोपाल से होगा 8:00। दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम होगा 8:15 पर। चित्रगीत का कार्यक्रम होगा 9:15 पर। चर्चा का विषय है दिल्ली से रिले होगा 9:35 पर। रूपक सुनेगा इंदौर का पूरा वैभव व स्थापत्य, सुनेगा रात 10:00। शास्त्रीय संगीत में सुनेगा ख्याल गायन विदुषी अश्विनी भिड़े देश पांडे का, राग होगा बिहाग। ये थे कल की सभा के मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम भोपाल से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे, 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन में मां शिप्रा को अर्पित की 351 फीट लंबी चुनरी। त्रिशा शर्मा मौत के मामले में सीबीआई का एक्शन, पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में एफआईआर दर्ज। और पन्ना में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धसकने से 5 मजदूरों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण का एक लेख सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस लेख में उपराष्ट्रपति ने सरकार की उन योजनाओं का जिक्र किया जिनसे महिलाओं, युवाओं और किसानों को सीधा फायदा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि देश अभी अमृतकाल में आगे बढ़ रहा है और यह लेख इसी सफर को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद, तिरुवल्लुवर और सुब्रमण्यम भारती से प्रेरणा लेने की बात कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची, जहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन उन्होंने महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन किया। कल वे नाथुला दर्रे की यात्रा करेंगी और सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इसके साथ ही सिक्किम यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का समापन किया। उन्होंने रामघाट पर मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित कर परिक्रमा का विधिवत समापन किया।
3: जल संरक्षण को लेकर हमारे सरकार लगातार काम कर रही है और ये तीसरा साल, इस साल गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो हमने काम चालू किया, लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा के लागत के 2 लाख से ज्यादा अलग अलग प्रकार के काम, जिसमें कुएं, बावड़ी, नदी, नहर, तालाब, पोखर, झरने, नदी के उद्गम, हर स्थान पर जल संरक्षण को लेकर के सरकार काम कर रही। सभी राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है।
2: यह परिक्रमा कल गंगा दशहरा के अवसर पर मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव द्वारा पूजन के साथ शुरू हुई थी। यह परिक्रमा मुख्यमंत्री डॉ यादव ने 23 वर्ष पहले मां शिप्रा के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की थी। पन्ना जिले के अजयगढ़ ब्लॉक के बिहरपुरवा गांव में मनरेगा के तहत बन रहे सिंचाई कुएं की मिट्टी धसक गई। इसमें दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। कलेक्टर उषा परमार और एसपी निवेदिता नायडू ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। सांसद वीडी शर्मा और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com

0: newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि बल ने सीमा की रक्षा के साथ साथ सीमावर्ती लोगों का हौसला भी बुलंद रखा। श्री शाह ने बीएसएफ, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलाकर चार स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया ताकि सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाया जा सके।
2: बीएसएफ के जवानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन रहा उसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहते। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था बीएसएफ ने, वो न केवल डटकर रहे सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी बीएसएफ ने बहुत बड़ा योगदान किया।
1: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शराब दुकानों पर सख्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को आबकारी नियमों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश भर में अवैध अहाते, देर रात तक शराब बिक्री और ओवर रेटिंग जैसी शिकायतों पर विशेष अभियान चलेगा, जिसके तहत पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें रात को गश्त करेंगी और नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। इसके साथ ही हर दुकान पर शराब के दाम दिखाना और क्यूआर कोड लगाना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। अभिनेत्री तुषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने भोपाल पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर दी है। एजेंसी ने मृतका के पति समर सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरवाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। कल रात टीम ने दोनों आरोपियों से ढाई घंटे तक पूछताछ की और घटनास्थल का मुआयना भी किया। जबलपुर के बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे की न्यायिक जांच आज से शुरू हो गई है। इस हादसे में 13 पर्यटकों की जान गई थी और 28 लोगों को बचाया गया था। रिटायर्ड जज जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जब क्रूज को पहले ही नष्ट कर दिया गया है तो उसकी तकनीक जांच अब कैसे होगी। यह भी सामने आया कि क्रूज में एनजीटी के नियमों के खिलाफ कमजोर इंजन लगा था और संचालकों के पास पर्यावरणीय अनुमति भी नहीं थी। आयोग ने सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। देवास जिले के टोंक खुर्द में 14 मई को पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था। इस हादसे की न्यायिक जांच के लिए भी सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुभाष काकड़े की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया है। आयोग विस्फोट के कारण, लापरवाही और जिम्मेदारी तय करेगा। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और राहत बचाव की प्रभावशीलता की भी जांच होगी। एक महीने के भीतर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। प्रदेश सरकार ने नागरिकों के लिए एमपी लॉकर ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज एक जगह डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा देती है। इस ऐप पर विवाह प्रमाण पत्र, ट्रेड लाइसेंस, संपत्ति कर रसीद समेत 22 से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि एआई की मदद से यह एप्लीकेशन खुद ब खुद दस्तावेजों को पहचान लेता है और किसी भी लाइसेंस की मियाद खत्म होने से पहले ही अलर्ट भी भेजता है। भोपाल में दाऊदी बोहरा समाज ने आज बकरीद का त्यौहार पूरे जोश और अकीदत के साथ मनाया। सुबह से ही अलीगंज हैदरी मस्जिद समेत शहर की तमाम बोहरा मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सफेद पारंपरिक लिबास में सजे समाज के लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। अब बात करते हैं मौसम की। नौतपा के दूसरे दिन प्रदेश में गर्मी का कहर जारी रहा। मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। खजुराहो और नौगांव में पारा लगातार 45 डिग्री के पार बना हुआ है। भोपाल, ग्वालियर समेत 45 जिले हीट वेव की चपेट में हैं। अच्छी खबर यह है कि 28 मई को प्री मानसून की दस्तक के संकेत मिले हैं और 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अब एक विशेष सूचना। आज 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो गए हैं। इन 12 वर्षों का लेखा जोखा और देश की बदलती तस्वीर पर वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह और सुरेश शर्मा से खास बातचीत सुनिए आज रात 10 बजे सिर्फ आकाशवाणी भोपाल पर। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गंगा दशहरा के अवसर पर नर्मदापुरम जिले के विवेकानंद घाट पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने श्रमदान किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंडला में आज पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। अशोकनगर शहरी परियोजना के सेक्टर 3 स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र पर ईसीसीई दिवस का सफल आयोजन किया गया। खंडवा जिले में यातायात पुलिस के द्वारा परिवहन बसों की विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 138 वाहनों की जांच की गई और धार में 1 जून को रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे। 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली थी

शपथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में मां क्षिप्रा को अर्पित की 351 फीट लंबी चुनरी। तुषार शर्मा मौत मामले में सीबीआई का एक्शन, पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में एफआईआर दर्ज। और पन्ना में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धसकने से 5 मजदूरों की मौत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

0: खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहन का अनुराधा की राम राम। भाई बहनों ने जब फसल कटी ना ना खेत से बाहर आई जाए तो ओका बाद ओका अवेयरमेंट थोड़ा मुश्किल पड़ज, क्योंकि अपना उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में रज अपना पास रखने की व्यवस्था नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार की जी योजना छे कृषि अवसंरचना कोष, इन्हीं योजना में कई रहे कि भाई फसल कटाई का बाद ओको नुकसान नहीं हो, बस इज इन्हीं योजना को उद्देश्य छे। एकालन कटाई का बाद को प्रबंधन सामुदायिक कृषि संपत्ति जैसो कहा कि कोल्ड स्टोरेज रहे वेयर हाउस रहे गाँव नमा सॉर्टिंग यूनिट रहे जखा में की छटाई हो ऐसी सब यूनिट ना का बनावना का लेना का निर्माण का लेना आसान न सस्ता लोन या ऋण का उपलब्ध कराने इन्हीं योजना को मुख्य उद्देश्य छे। योजना में ऋण राशि ने ब्याज अनुदान की बात करा तो इन्हीं योजना का तहत 2 करोड़ तक का लोन पर 3% प्रति वर्ष की ब्याज दर का हिसाब से छूट मिली जाए न अधिकतम ही 7 वर्ष तक हमारा किसान भाई बहन का मिली सके। अका में पात्र कौन रहेगा, कोई भी किसान या कोई कृषि उद्यमी या कोई स्टार्टअप जिनने शुरू करियो है या कोई एजेंसी हो जो बहुत सारा लोग मिली ना करी रहा है, किसान उत्पादक संगठन भी इन्हीं योजना को पात्र रह तो ये सब लोग मिली ना एक लेना आवेदन करी सके। एका में कई रहेगा कि कृषि अवसंरचना का अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड चेन की जी योजना छे वेयर हाउस हो गोदाम कोई भी हो साइलो हो ई मार्केटिंग का कोई प्लेटफॉर्म हो जैविक आदान उत्पादन की इकाई ने जैसे ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन जी करी राज भाई उनका सब नकल लेना या अभी देखी राज की पॉली हाउस ग्रीन हाउस हाइड्रोपोनिक खेती जी हुई रेज इनका सब नकल लेना ने एक साथ साथ अपना जिस अनाज आयो जो की ग्रेडिंग ने की पैकिंग नकल लेना इकाई ना हमारा किसान भाई बहन निर्मित करी सकज। एक लेना उनका आवेदन कहाँ करना पड़ेगा, कृषि अवसंरचना कोष की आधिकारिक जी वेबसाइट छे ओका पर जाइन ना अप्लाई फॉर लोन एक पर क्लिक करेगा न पूरी जानकारी वो काम भरी दे न पात्र व्यक्ति इन योजना को लाभ उठाओ। तो ये तो थी अपनी कृषि अवसंरचना कोष योजना का बारे में जानकारी। आज अपन बहुत सारी बात नहीं करांगा, अलग अलग लोकगीत भी सुनांगा। अब एक सबसे पहला अपन जी शुरुआत करी रहा है उसे भेंटवार्ता से, प्रगतिशील कृषक वो भी महिला उनका से अपनी भेंट करी रही भारती उपाध्याय वो बात करी रही श्रीमती कमला पटेल से, तो उनकी भेंटवार्ता सुनाएं।
1: अपनी नरी सारी बहन होन खेती किसानी का साथ साथ खेती किसानी को भी काम करे है और खेती किसानी का साथ घर को काम भी करे है, तो आज अपन बात करांगा कमला पटेल बहन से जो कि घर को कामकाज तो करे ही करे साथ साथ खेती किसानी पशुपालन और ओका साथ साथ खेत में पूरी बखत अपना खेत में काम भी करे है। तो बहन तमारो हमारी चौपाल पे स्वागत है ने राम राम।
2: राम राम।
1: सबसे पहला तो मैं यो जानना चाहूंगा कि तुम्हारा पास कितना बीघा खेत है।
2: हमारा पास 16 बीघा जमीन जी।
1: तो इन्हें 16 बीघा जमीन में तुमने कई लगायो है?
2: हमारा यहाँ बीज की रोपनी चली रही जो 8 बीघा में हमने बीज बोई दिया और अब हमारी दूसरी फसल की भी तैयारी चली रही, जो मिर्ची खेती को खेत भी रहेगा वो की भी हम तैयारी करी रहा है, जो रोपो हमारो तैयार होगा मिर्ची को तो हम ओका भी पौधा ना का लगाई देंगा।
1: और एक साथ साथ और काय की करी रहा फसल की तैयारी?
2: हमारा यहाँ अभी तो मिर्ची की ना कपास की खेती चला गया।
1: अच्छा, तो कपास की खेती की भी शुरुआत हुई की है?
2: कपास की खेती की शुरुआत हुई गई, 8 बीघा में हमने कपास लगाई दी।
1: अच्छा अच्छा, तो ये जो कपास और मिर्ची का साथ साथ तम और कई का मतलब करो पशुपालन भी करो?
2: हम पशुपालन भी करान, पशुपालन की देखभाल भी करान, हर किसान घर पशु तो होना चाहिए क्योंकि जो गोबर को खाद रज वो अपना खेत में डली भी जाए, अपन का दूध मही भी मिली जाए, जो घी रज वो भी अपन बाजार में भी बेची सकान, घर से भी गाँव में ले जाए, तो अपनो 2-3 काम हुई जाए जो काशी ते पशुपालन राखना को काम बहुत अच्छो छी।
1: तो तुम्हारे कितना ढोर डंकर है?
2: हमारा का 4 भैंस न छे न 2 बैलिया छी और 2 गाय गौ माता छे बछड़ा 2 छे।
1: अच्छा अच्छा, तो उनके देखभाल सारू तम कई करो मतलब उनको चारो और ये कहाँ से बाहर से कि घर पे ही उगाओ?
2: हमारा के गेहूं जैसा निकल तो उनको भूसो रज तू हम देख कमरा में रखी देवान आन वो भूसो रज, जो मूंग की अभी खेती गई तो ओको चारो भी भूसो रज वो भी हम छे वो काम मिले ही ना आन पशु न का खिलावान, और जो हमारा यहाँ खड़ ककड़ा रज वो हम बाजार से मोल ले आन, तो पशुपालन न की देखभाल का लेना हम कमी नहीं रखता। हमारा खेत में ये पशुपालन को खाद रहेगा तो हमारा खेत में पोचापन भी रहेगा, हमारी फसल भी अच्छी आओगे, हमको मुनाफा भी अच्छा मिलेगा।
1: अच्छा, खेत सारू तो मट्टी परीक्षण भी करवाता होगा?
2: हाँ, खेत को मट्टी परीक्षण हमारा गाँव में हुई जाए, ग्राम सेवक जैसा गाँव न आवज तो हम मट्टी को परीक्षण कराना आना, फिर घर भी हम तुलसी का क्या आराम हो 8 से 10 दाना बोई न देखी लेवा कि उंगी राज की नहीं उंगता तो हमको वो रिजल्ट मिल ही जाए।
1: अच्छा, मतलब वे अच्छी तरह से उगी जावे तो मतलब तमारो दानो अच्छो है?
2: अच्छो है।
1: तो वो
2: और कभी नहीं उंगा तो अपन का पतो चली जाएगा कि अपनों का दानो खराब ही गई।
1: अच्छा अच्छा, और खाद सरु तो गोबर को उपयोग करो ही सही, पर साथ साथ तम बते रहा कि तुम्हारे गोबर गैस भी है तो ओको उपयोग कैसे करो तुम?
2: हमारा यहाँ गोबर गैस है तो गोबर 14 गज को है हमारा यहाँ, तो घर आवना के नले से हम जो गोबर गैस को ही रज तो वो आवाते 20 मीटर की दूरी पर हमारा यहाँ गोबर गैस है तो हम वो काम 20 किलो से 18 किलो तक गोबर घोड़ा न को घोल बनावा तो जितरो गोबर घोड़ांगा वो को अपनों का ज्यादा अच्छे उपयोग को मिलेगा तो अच्छी अपना करके रोटी भी बनी जाएगा, चूल्हो भी जले जाएगा, बत्ती भी जले जाए,
1: ओका से बत्ती भी जली जाए,
2: बत्ती भी जले जाए।
1: और खेत में दाड़की सारू महिला बहनों भी काम करे?
2: हाँ, महिला न भी करे न काम न पुरुष भी करे, तो महिला न तो अधिकतर जो खत पतवार हो तो नींदई गुड़े को काम महिला ने भी करे न हम भी कराए आन पशु न को काम जो रज वो मजदूर न को काम रज वो छे अपना जो मजदूर रज वो सब काम कर तो जैसे पशु अपना अगर बैलिया छे तो आउट गेर न को काम रहेगा तो बैल गाड़ी ले जाएगा आना वखर गेरनू छे कोड़पा गेरनू छे तो मजदूर करेगा, पुरुष न को काम आए न महिला न को नींदई गुड़ई कपास बीड़नू मिर्ची तोड़नू यो महिला को काम छे।
1: अच्छा, और भंडारण सारू तम कई करू?
2: भंडारण में हम जो ड्रम न रह ओकद हम 1 महीना तक सुकावा आम जेका बाद में हम को ड्रम न को सुकाड़ी न घेऊ न कभी अच्छा सुकाड़ा आम फिर उनका बीणी करी न हम भंडारण कराए तो जो पत्रिका न अपना घर में आवन ब्याह शादी की।
1: अच्छा।
2: उनका हम ये एक नीचे धर रखी दियान पेंदा में रखी न आना फिर एक एक बोरी डालता जाओ उसी पत्रिका ने धरता जावा तो ओका से हमारा घर कीटनाशक कई लगता नहीं जंतु नहीं लग पड़ता आन फिर अपनो मन हो तो अपना नीम का पत्ता रज वो भेसगी दे कपूर मिले दे जो माचिस न रन वो भी हम रखी सका जो का से अपना कीटनाशक लगता नहीं।
1: अच्छा, माचिस को उपयोग भी करी सकते?
2: माचिस को भी उपयोग करी।

0: सकन।
1: अच्छा, तो यो दानो जो भंडारण करी के रखो तम, यो उपज सारू रेवे कि घर का उपयोग सारू रेवे?
0: घर का उपयोग सारू भी रह, आना अच्छो चाले चुलेन रखांगा तो ओखो अपन विजय में भी ले सका, ओखो भंडारण अच्छो करनु पड़े, ओखो खूब सुकवनु पड़े, ओखो साल में 2-3 बार अपन का देखनु देखभाल भी करनु पड़े कि अच्छा अपना अगर बीज छे कि नहीं है, नहीं तो आप तो कीटनाशक धंधोरिया इल्ली ने सब लगी जान, तो ओखो बार बार अपनों का महीना 2 महीना में देखनो पड़े।
1: अच्छा, और साथ साथ तम बताई रहा था कि खाद सारू तुम्हारे यहाँ केचुआ खाद को उपयोग करोगे तुम?
0: केचुआ खाद को भी उपयोग कर लिया, क्योंकि किसान का तो सब खाद को उपयोग करनो आई जाए, तो वो काम हम कचरो कूटो डाली दिया, केचुआ पटकी दिया, फिर रोज पानी चलना देवान, तो जो सड़ी गड़ी जाए वो खाद अच्छो बनी जाए, तो वो भी खेत में डाली दिया, तो मिर्ची का खेत में जो डाला तो ओकासी मिर्ची अच्छी रह।
1: अच्छा अच्छा, मिर्ची का खेत में एक उपयोग करो केचुआ?
0: हाँ, केचुआ को करा।
1: अच्छा, और पानी की सोई कही है तुम्हारे यहाँ?
0: हमारे यहाँ कुओ छे बाड़ा में, तो ओकासी पशुओं को काम भी जाए, घर को काम भी जाए, आन जो हमने बाड़ा में सब्जी न लगे न ओको काम भी जाए।
1: अच्छा, बाड़ा में तुमने मतलब सब्जी न लगाई है?
0: हाँ हाँ, हमेशा सब्जी लगाई, गिलकी लौकी आपने ये भट्टा टमाटर ये सब पौधा लगे देवा।
1: अच्छा, तो अच्छी आए उपज, अच्छी होए,
0: अच्छी
1: मतलब
0: उपज
1: सब्जी
0: हो
1: लगे।
0: सीताफल का पौधा लगे, नींबू का छे, अनार का छे, ये सब बाड़ा में लगे दे तो अपना घर को काम ही जाए।
1: तो वहाँ पे फिर पानी कैसे देता होगा?
0: पानी क्यारी सी दे दिया, जो नल रज वो काम ड्रिप की बीन लाइन लगे देणु, हाँ ओका सब सिंचाई वो काम भी हुई जाए। अच्छा, अपना पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती।
1: तो तुम्हारा खेत में कौन सी पद्धति से सिंचाई करो तुम?
0: हमारा यहाँ विन लाइन ड्रिप की भी छे, नर्मदा की सिंचाई भी छे, तो जो नर्मदा की साइड में जमीन छे वो नर्मदा की सिंचाई हो, और जो कुआ की सिंचाई हो जो काशी टपक सिंचाई ऐसी करा। अच्छा, कि भाई काम कम पानी लगज और अपनी चेते फसल भी अच्छी रह।
1: कमला बहनों, बहन आप चलते चलते हमारी बहनों के कई कहना चाहोगा?
0: चलता चलता बहनों को यो कहना छे कि आप भी पुरुष के साथ में कंधों से कंधों मिले इनका भी काम करांगा, तो अपना खेत में अपन का मुनाफो मिलेगा ना, अपन कभी घर बैठी रहांगा तो अपनों कहीं मुनाफो मिली रो, तो स्वयं काम करांगा तो अपनों का मिलेगा, आना जो अपना खेत में कमी होएगा तो अपन घर आई ना भी बता सका कि अपना खेत में कीटनाशक हुई गया कि इल्ली ना पड़ी गई, तो घर आई बताएंगा तो पुरुष दवा को डब्बो ले जाएगा, दवा को छिड़काव करेगा तो अपनी फसल अच्छी रहेगा। तो बड़ना कहा यो कौन कि हार बड़ना न पुरुष को साथ देणु, तो ओकासी अपनी फसल भी अच्छी रहेगा, अपना घर खेती में अपन काम भी बराबर करांगा।
1: कमला बहन, आप हमारी चौपाल पे आई और हमारी बहनों के इतनी अच्छी जानकारी दी, एक लेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राम राम।
2: महिला प्रगतिशील कृषक श्रीमती कमला पटेल अभी अपूर्णा को बताई रही थी कि वो अपना खेत में किना तरीका से काम करी रही, न जितना काम पुरुष करज नहीं खेत में वो सब उनका आईजाज न उनका सब नखा का बारा में उनका जानकारी भी छे, उन्हें इतनी अच्छी जानकारी अपूर्ण खबे दी, उनका अपूर्ण धन्यवाद कमाज। इनका से बातचीत करी थी भारती उपाध्याय भाई ने। अब कार्यक्रम में सुनांगा एक लोकगीत, बालकृष्ण धनगर ने उनका साथी नको गायल।

अभी अपन नाना अंजनी पुत्र हनुमान को कल्याण जी गाए थो बाल कृष्ण धनगर को ये गीत सुनियो ना अमा देखो मारा पास में कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का भाव आई गाज। हम अपना किसान भाई बहन को बता दियो आज सोयाबीन को भाव थो 4,000 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव न वहाँ देखो अधिकतम भाव थो 7,555 रुपया मॉडल भाव रहे हो 7,430 रुपया। गेहूं की बात करें तो गेहूं 2,120 रुपया से शुरू हुआ था 2,785 रुपया अधिकतम भाव पर बंद हुआ। वहाँ जो मॉडल भाव रहे हो 2,450 रुपया प्रति क्विंटल। चना देसी 4,290 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव का साथ शुरू हुआ न 7,885 रुपया प्रति क्विंटल अधिकतम भाव पर बिकिया। एक मॉडल भाव तो 7,600 रुपया प्रति क्विंटल। चना डॉलर 6,200 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव 9,500 रुपया प्रति क्विंटल। नहीं को मॉडल भाव तो 7,600 रुपया। मूंग की बात करें तो मूंग 3,500 से शुरू हुई थी 7,555 पर बंद हुई न 7,430 रुपया मॉडल भाव रहे। मक्का 1,600 अधिकतम भाव 2,026 मॉडल भाव 1,826। मिर्ची आज एकज भाव बिकी 15,500 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से। सरसों को भाव तो 6,000 रुपया न्यूनतम प्रति क्विंटल 7,360 रुपया अधिकतम प्रति क्विंटल को न 6,000 रुपया मॉडल भाव। तुअर 2,500 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव 7,180 रुपया न वहाँ जे को मॉडल भाव 6,200 रुपया प्रति क्विंटल। तो ये तो था कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का

की सही तैयारी कर ले तो फसल की वृद्धि अच्छी होती है, लागत कम आती है और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। आज हम खरीफ की बुआई से पहले खेत कोर मिट्टी की तैयारी कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे। हमारे देश में खरीफ का मौसम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धान, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, कपास, उड़द, मूंग, तुवर जैसी प्रमुख फसलें खरीफ के मौसम में बोई जाती है। इन फसलों की जो पैदावार होती है काफ़ी हद तक खेत की तैयारी पर निर्भर करती है, जैसे कि मिट्टी स्वस्थ होगी, मिट्टी में नमी संरक्षण होगा, पोषक तत्व संतुलित होंगे तो फसल भी हमारी अच्छी होती है। खरीफ की फसल बोने से पहले खेत की तैयारी में सबसे मुख्य बात है कि हम खेत की गहरी जुताई करें। फसल को बोने से पहले खेत की गहरी जुताई करना बहुत ही आवश्यक है। हम मिट्टी पलटने वाले हल से एक या दो बार गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने से जो पिछली फसल के अवशेष है वो मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में धूप मिलती है जिससे दीमक, कीट, रोग पैदा करने वाले फफूंद नष्ट होते हैं। मिट्टी भुरभुरी बनती है। वर्षा का पानी मिट्टी में अच्छी तरह से समा जाता है। विशेष रूप से गर्मियों में की गई गहरी जुताई प्राकृतिक रूप से रोग मुक्त बनाने में मदद करती है। दूसरी बात, हम खरीफ की फसलें बोने से पहले यह ध्यान रखें कि खेत में पाटा लगाना और खेत को समतल करना। जुताई के बाद खेत में पाटा अवश्य लगाना चाहिए। बहुत से किसान इस कार्य को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन यह नमी संरक्षण के लिए बहुत ही जरूरी है। पाटा लगाने से मिट्टी के ढेले टूट जाते हैं, खेत समतल होता है, वर्षा का पानी समान रूप से मिट्टी में समाता है, मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है, खेत ऊंचा नीचा रहेगा तो पानी भर जाएगा, कहीं नमी कम हो जाएगी जिससे फसल प्रभावित होती है। फसल बोने से पहले, खरीफ की फसलें बोने से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य कराए। किसान भाई यह ध्यान रखे कि हम अपनी मिट्टी का परीक्षण करवा कर ही उसमें खाद उर्वरक दें। मिट्टी परीक्षण से हमें यह पता चलता है कि हमारी मिट्टी में कितने मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तथा सूक्ष्म तत्वों की कितनी मात्रा है, पर्याप्त मात्रा है, अधिक मात्रा है या कम मात्रा है। अतः मिट्टी परीक्षण करवाना बहुत ही जरूरी है। इससे हमें उर्वरक सही मात्रा में कितना देना है यह पता चलता है। मिट्टी परीक्षण करवाने से किसान भाई लागत भी कम होती है, क्योंकि अगर हम बिना मिट्टी की जांच कराए उर्वरक दे रहे हैं तो हमारी लागत बढ़ती है, और मिट्टी की जो सेहत है मिट्टी परीक्षण से वो बनी रहती है, हमें पता चलता है कि हमें कितना उर्वरक उसमें देना है। मिट्टी परीक्षण करवाने के लिए आप अपने पास के किसी भी कृषि विभाग केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र में आप अपने मिट्टी का नमूना 500 ग्राम मिट्टी का नमूना लेकर आप मिट्टी परीक्षण करवा सकते हैं, जिससे हमें मिट्टी की सही स्थिति का ज्ञान हो जाएगा और उसी के अनुसार हम उर्वरक उसमें मिट्टी में देंगे। खरीफ की फसल बोने से पहले हमें नमी संरक्षण के लिए भी उपाय करने चाहिए, क्योंकि मौसम की अनिश्चितता के ध्यान में रखते हुए नमी संरक्षण करना भी अपने खेत में बहुत ही जरूरी है। नमी संरक्षण करने के लिए हमें खेत में जुताई करें, खेत समतल रखें, मेड़बंदी करें, वर्षा जल को खेत में किस प्रकार संरक्षित कर सके ये भी उपाय हमें करना चाहिए। हमें अपने खेत में जैविक पदार्थों का उपयोग बढ़ाएं, जिससे कि हमारे खेत में पर्याप्त नमी बनी रहे, बीज अंकुरण अच्छा रहे तथा फसल की शुरुआती वृद्धि भी मजबूत हो। खरीफ की फसलें बोने से पूर्व हमें खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए भी उपाय करने चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए हम खेत की गहरी जुताई करें, जिससे कि जो खेत में खरपतवार कांस, मोथा आदि हमारे जो खेत में खरपतवार पहले से है गहरी जुताई करने से वह भी नियंत्रित होंगे तथा पोषक तत्व की अधिक उपलब्धता मिलती रहेगी, जिससे कि उत्पादन भी बढ़ता है और लागत भी कम होगी। फसल होने से पहले हमें बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है। पहली बात तो किसान भाइयों, प्रमाणित बीज का

0: हम उपयोग करें खेत में और उस बीज को, बीज चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर आप बीज उपचार नहीं अपनाते हैं तो बीज इतनी अच्छी पैदावार नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो उसमें बीमारियां, कीड़े, रोग लग सकते हैं। अतः हमारे खेत में हम बीज उपचार करें। बीज उपचार करने के लिए राइजोबियम, पीएसडी, एजुटोबैक्टर का आप उपयोग कर सकते हैं। बीज उपचार करने से बीज जनित रोगों से बचाव हो जाता है, अंकुरण प्रतिशत में वृद्धि होती है, पौधे की शुरुआती वृद्धि अच्छी होती है, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है, कम लागत में अधिक लाभ देने वाली यह बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। किसान भाइयों, खरीफ की फसल बोने से पूर्व आप गहरी जुताई करें, मिट्टी परीक्षण करें, जैविक खाद का उपयोग करें, खेत में नमी संरक्षण को बनाए रखें, बीज उपचार करें, ये इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा किसान भाइयों, आज के समय में बदलते मौसम और अनियमित वर्षा को ध्यान में रखते हुए हमें खेती में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना भी बहुत जरूरी हो गया है। यदि खेत में तैयारी सही तरीके से की जाए तो फसल बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। किसानों को चाहिए कि वह वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं और खेत की तैयारी करें, प्रमाणित बीजों का उपयोग करें, साथ ही अपनी फसल को समय समय पर निरीक्षण करते रहें कि उसमें कोई कीट रोग तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इन कीट अगर रोग प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक अवस्था में अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सब बातों का भी किसान भाई ध्यान रखें। प्रारंभिक अवस्था में ही हम कीट और रोगों को पहचान करें, तुरंत हम उस पर हमें यूज करना है उसका भी ध्यान रखें। मिट्टी की सेहत बनाए रखने के लिए हम जैविक खादों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे जैसे कीट और रोगों को नियंत्रित करने के लिए हम नीम से बनी चीजों का भी उपयोग कर सकते हैं खेत में, जिससे रासायनिक प्रभाव भी खेत में कम बने और हमारी मिट्टी की सेहत भी बनी रहे। अतः किसान भाइयों से यही निवेदन है कि फसल की तैयारी, जब खरीफ फसलें बोने से पूर्व फसल की तैयारी करना बहुत ही जरूरी है, तथा इन मुख्य बिंदुओं पर आप ध्यान दें और खेत की सफल उत्पादन के लिए मिट्टी की तैयारी करना ही सबसे पहली पहचान है हमारी। अतः इससे निश्चित ही आपका उत्पादन बढ़ेगा और फसल उत्पादन भी में भी बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद किसान भाइयों।
1: अभी अपन सुनी रहा था वार्ता, खरीफ फसल का लेना खेत की तैयारी किना तरीका से कर, डॉक्टर दिव्या भायाल ने बहुत अच्छा तरीका से अपन का समझाया, अपन इनका धन्यवाद देवाय न। भाई बहनों ने देखो, अभी इना समय जी छे भीषण गर्मी को दौर, अपन जगह के नवतपा कवानी, यानी अपना पूरा साल भर का सबसे गर्म 9 दिन काल से शुरू होगा, 25 मई से लेना 2 जून तक नवतपा को समय चलेगा। न सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का साथ नवतपा की शुरुआत हो जाए। कच्छ की सूर्य उष्ण ग्रह छे, न वहाँ जो रोहिणी जो छेद उष्ण नक्षत्र छे, इनका दो ही का मेल सी गर्मी को प्रकोप इतो बढ़ी जाए, लू खूब तेज चलना लगी जाए। न ये जी समय चली रोज ओका में खाली एक अच काम करनूज कि इन्हीं गर्मी से बचाव करनूज, क्योंकि अरु कोई उपाय नहीं है, ये गर्मी अपन का नुकसान पहुँचे सक शरीर का लेना बहुत हानिकारक छे। अवा कच तो ये कि भाई ज़्यादा इना समय में दिन का 10-11-12 बजे का बाद से लेना शाम का 4 बजे तक आप घर में रहो, बिल्कुल भी बिना काम बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। पर अपना काम धंधा छे, अपन एकदम सब छोड़ी छाड़ी ना बैठ ही नहीं सकता है, तो थोड़ी सी समझदारी का साथ, बचाव का साथ अपन बाहर निकलांगा तो लू सी बची सकांगा। हम कभी कभी कहे हुए कि जैसा जब अपन घर में आया बाहर से घूमी ना, तो अपन का एकदम लगे कि भाई तेज बुखार आई रोज, या शरीर पूरा गर्म लगने लगी जाए, कभी कभी चक्कर आने लगी जाए, जी घबराज, बेहोशी आई जाए, कोई कोई खाना सिर दर्द बहुत तेज हो न, त्वचा ऐसी लाल चट हुई जाए, ऐसा अलग अलग लाल चट सूखी हुई जाए पूरी, तो ऐसा लक्षण देख ही रहा हो तो बिल्कुल सबसे पहलो काम ये करना है कि घर में कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा लक्षण आई रहा है तो सीधा आसपास का जी भी चिकित्सालय है वहाँ ले जावा अपन। पर बचाव का ही कर सकें, बस ये अपना पास है कि तेज धूप में बाहर जाना से बचा, निकलना पड़ा कभी तो माथा पर टोपी लगे लेवा, रुमाल बांधी लेवा, गमछो बांधी लेवा, या छाता को उपयोग भी बहुत अच्छो एक उपाय है। हल्का ढीला कपड़ा पहनूज कि हवा यहाँ से वहाँ तक निकल जाए। दिन भर पानी पहनूज खूब सारो, छाछ, नींबू पानी, या फिर कैरी को अमलानो अमलानो इमली को कैरी को झोलियों पे पी सकान। एक साथ साथ नींबू की शिकंजी न साथ में तरबूज खीरा खरबूज ये सब न को सेवन भी करी सकान। न प्याज तो कहे कि भाई बिल्कुल रामबाण इलाज है, खूब खाणू भी न अपना साथ लई न भी जाणू। पेट भरी ना घर से निकलनू ज, भूखा पेट बिल्कुल घर से बाहर निकलना की आवश्यकता नहीं है। बच्चा न खाओ, धूप में खेलना नहीं देनू है। न कभी लू लगी जाए तो देखो अब अपन ने कहा कि ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा घर पर इलाज करने की जरूरत नहीं है, पर हल्को असर देखा है तो आप ओखा ठंडी जगह पर लेटाई दो जेखा कि लू लगेल छे, ओखा ठंडा पानी का कपड़ा सी या ओखा में बर्फ नाखी सको तो हरू अच्छो इना कपड़ा सी पूरा शरीर का पोछी दो। लगातार पोछते रहो जब तक कि शरीर को तापमान एकदम कम नहीं हो जाए। ऐसी स्थिति में अपन ने कहा इन्हीं बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ना बचाव जी छे कच की सबसे अच्छो उपाय छे। यदि कोई काम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो तो इना समय 8-9 दिन न कच की भाई आखिरी आखिरी में तो नौ तपा में भी पानी पड़ी जाए तो 2-4 दिन की गर्मी जी छे ओखा सहन करनूज, घर में रहने ना अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखनूज, अपना परिवार को भी ध्यान रखनूज, न खेती में काम करने वाला अपना पशु न को भी ध्यान रखनूज। अब आगे आज सुनांगा मंगलवार को दिन छे तो हमारा किसान भाई बहन रस्तो देखी रहे रामायण पाठ को, तो सुनाएं मुकेश ने उनका साथी नको गायल रामायण पाठ।

अभी अपन सुनी रहा था रामायण पाठ मुकेश ने उनका साथी नको गायल। भाई बहनों ने अमा घड़ी कही रही कि काल का कार्यक्रम का बारा में बात कर लेवा। काल सवेरा खेती की बात न निमास्त्र न ब्रह्मास्त्र का बारा में जानकारी लेवांगा। वाचक स्वर रहेगा तुलसाधर गैया को। संध्या का खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आज की बात होएगा, लोकगीत भी सुनांगा न सुनांगा एक वार्ता। गर्मी न पशु को देखभाल किना तरीका से करा, उनको बचाव किना तरीका से करा, एक बारा में जानकारी देगा डॉक्टर विक्रम सिंह कुशवाहा। तो अमा अनुराधा कदेव आज्ञा राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुर्खियों में भोपाल से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी।

0: मध्य प्रदेश है, रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में क्वाड की भूमिका पर और आने वाले समय में क्वाड की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर हर्ष वी पंत, वाइस प्रेसिडेंट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। प्रोफेसर, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद। ठीक
2: है। दुनिया इस समय एक बड़े जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, जहां इंडो पैसिफिक सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और साथ ही स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का केंद्र बन चुका है। ऐसे में नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस बैठक में कई बड़े और प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स की घोषणा की है, चाहे बात हो मैरिटाइम सर्वेलेंस की, क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन्स की, एनर्जी सिक्योरिटी की, सिक्योर टेलीकॉम नेटवर्क्स की या फिर एआई आधारित एग्रीकल्चर इनोवेशन की। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले सुनते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने क्वाड की भूमिका और इंडो पैसिफिक को लेकर क्या अहम बात कही।
4: We've just concluded very substantive and productive meeting of the Quad foreign ministers. Understandably, much of the discussions and indeed the bilateral exchanges were devoted to the current state of the world. Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are 4 maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building and HADR activities.
2: प्रोफेसर, चर्चा की शुरुआत मैरिटाइम सिक्योरिटी से करते हैं। कुछ अहम अनाउंसमेंट्स इस सेक्टर से संबंधित हुए हैं, जिनमें इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस कोलैबोरेशन इनिशिएटिव काफी अहम माना जा रहा है। हमारे श्रोताओं को अगर आप समझा सकें कि ये कितना ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव होगा समुद्री सुरक्षा के लिहाज से।
3: देखिये, जो हिंद प्रशांत की जब हम बात करते हैं तो ये एक मैरिटाइम ज्योग्राफी है, ये एक समुद्री क्षेत्र है जिसमें एक साझा परिचालन तस्वीर, कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर की जब हम बात करते हैं, वो उसकी एक जरूरत मुझे लगता है चारों देशों को पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं हिंद प्रशांत में, इतने बड़े भू राजनीतिक बदलाव आए, जियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स आए और उसके बाद मैरिटाइम स्पेस में भी इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी बदल रही है, देशों की सोच बदल रही है और उसके साथ उनकी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बदल रही है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कहीं पर सबसे पहले अगर हम किसी चीज की बात, देश जो चार देश है ये अपनी साझेदारी इनकी जो बढ़ाने की जब बात करते हैं प्रशांत में, तो सबसे पहले कि ये देश जानना चाहेंगे क्या इनके पास एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर है कि नहीं है, क्या ये चारों देश एक ही तरीके से एक ही असेसमेंट रखते हैं जो हिंद प्रशांत मैरिटाइम स्पेस में हो रहा है, तो उसके लिए सर्वेलेंस की जरूरत है, उसके लिए निगरानी की जरूरत है। और मुझे लगता है ये जो एक इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस फ्रेमवर्क इनिशिएटिव को आज आगे बढ़ाया गया, इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल ये होगा कि ये आपको एक, ये जो देश है इनको एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर देगा इस रीजन के बारे में, उसके जो यहाँ पर चैलेंजेस उभर कर आ रहे हैं उसको, उसके बारे में आगाह करेगा और कहाँ पर इकट्ठे तौर पर इन चैलेंजेस को इकट्ठा रहकर टैकल किया जा सकता है, उसके बारे में एक रोड मैप बनाने में और आसान हो जाएगा रास्ता। ये मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा रोल होगा और इसके साथ जब ऐसा होगा तो इससे न सिर्फ इन चार देशों को मदद मिलेगी बल्कि वो सारे देश जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मैरिटाइम सर्वेलेंस कर पाए या मैरिटाइम समुद्री निगरानी रख पाए या पूरे जो ये हिंद प्रशांत है इस पर एक अपनी पकड़ बना पाए, तो उसमें इनकी मदद करने में ये क्वाड जो फ्रेमवर्क है ये हेल्पफुल होगा। तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं होगा चार देशों के लिए बल्कि पूरे हिंद प्रशांत के लिए एक अच्छी पहल है और इसको मुझे लगता है इससे जो बाकी देशों को भी फायदा होगा वो भी इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे आगे।
2: प्रोफेसर, आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो क्या ये कहा जा सकता है कि कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर को विकसित करने से इंडो पैसिफिक में रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग की क्षमता काफी बढ़ जाएगी?
3: जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग होगी और उसके साथ साथ उस मॉनिटरिंग से आप कैसे आपकी जो एसेट्स हैं उनको आप कैसे ऑपरेशनल यूज के लिए ला सकते हैं। चारों जो देश हैं, भारत,

0: अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके पास मैरिटाइम एसेट्स काफी हैं, लेकिन ये मैरिटाइम एसेट्स जो इनके हैं वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, कि भारत जो है वो इंडियन ओशन में डोमिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक में है, जापान साउथ ईस्ट चाइना सी एरिया में डोमिनेंट है। तो इनको इकट्ठा करके, इनकी कैपेबिलिटीज को इकट्ठा करके जब आप कोई तस्वीर बनाएंगे इस रीजन की, तो आपको एक तो पूरी टोटैलिटी में समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या चल रहा है, और उसके साथ अगर आप किसी और देश की कैपेसिटी बिल्ड करने में मदद करना चाहते हैं, सर्वेलेंस उसकी कैपेसिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अपनी जो कैपेबिलिटीज है उनको और ऑपरेशनल बनाना चाहते हैं, तो सबकी जो पहली स्टेज होती है वो सर्वेलेंस होती है। तो मुझे लगता है वो जो एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर की बात हम कर रहे हैं, उससे इस जो पहल है इसको और गति मिलेगी और बाकी देशों को जोड़ने का भी अवसर मिलेगा।
1: प्रोफेसर, क्वाड ने इंडो पैसिफिक में सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की भी घोषणा की है। आज के दौर में जब रेयर अर्थ मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, इनको सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स माना जा रहा है, क्या यह इनिशिएटिव चीन पर दुनिया की निर्भरता को कम करने और एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन सिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कदम है?
0: जी बिल्कुल, मुझे लगता है क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो इस समय सबसे महत्वपूर्ण एक कैटेगरी है, जहां पर सभी देश जो हैं वो, जो पूरी दुनिया है वो इस समय एक तरह से क्राइसिस से गुजर रही है, जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी, उनकी प्रोसेसिंग, उनका यूटिलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और जिस तरह से जो डोमिनेंस कुछ देशों की है क्रिटिकल मिनरल्स पर, रेयर अर्थ मिनरल्स पर, वो किस तरह से उसको वेपनाइज कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या देशों के सामने है, खासकर उन देशों के सामने जिनके पास इंडिजिनस मिनरल्स नहीं है और जो बहुत डिपेंडेंट है बाहरी दुनिया के ऊपर। तो मुझे लगता है जो फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है आज क्रिटिकल मिनरल्स, जिसका की एम होगा कि कैसे करीब करीब 20 बिलियन US डॉलर्स को मोबिलाइज करे पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, जिससे कि सिक्योर और रिजिलियंट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स थ्रू आउट इंडो पैसिफिक, पूरे हिंद प्रशांत में बन पाए, इसकी जो एक कोशिश करेगा, ये मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है दुनिया को और उन देशों को जो क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज कर रहे हैं, कि आपकी ऑल्टरनेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बढ़ रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, और क्रिटिकल मिनरल्स की जो डिपेंडेंस है अगर वो दूसरे देशों की तरफ से देखें तो वो उसको कम करने की कोशिश, डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरा इसमें अहम बात यह है कि जब आप हम आर्थिक तरक्की की आज बात करते हैं, उसमें जिस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी, जिस तरह का इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स का रोल सेंट्रल है। तो आप अगर डेवलपमेंट की भी बात हम करें, अगर हम डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज हमारी हैं उसकी भी बात करते हैं, तो उसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स का क्या रोल होगा और कैसे बाकी देश जो क्वाड के देश हैं, क्वाड मेंबर्स हैं, वो किस तरह से एक अल्टरनेटिव दुनिया को या हिंद प्रशांत के देशों को देने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस इनिशिएटिव में नजर आता है। और इसमें कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, कि कैसे जो क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, जो उसकी स्टेबिलिटी है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि वही जब स्ट्रेंथन आप करेंगे तब आप हिंद प्रशांत की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, जो स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस है, उसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे।
1: जी बिल्कुल। एक तीसरा अहम इनिशिएटिव जिसका जिक्र डॉक्टर जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी किया, वो है क्वाड इनिशिएटिव ऑन इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी। प्रोफेसर, मौजूदा ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के संदर्भ में ये कितना अहम है, और खास करके हम देख रहे हैं कि ये लगातार एनर्जी क्राइसिस हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखा गया, और अभी के मौजूदा ग्लोबल सिनेरियो को भी अगर देखें तो ऐसे में क्या एनर्जी रेजिलियंस अब सिर्फ एक इकोनॉमिक कंसर्न नहीं है बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के दृष्टिकोण से भी एक काफी केंद्रीय मुद्दा बन चुका है?
0: जिस तरह से आपने जिसका जिक्र किया कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद और अब जो मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, उसके बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि किसी भी देश के ऊपर अगर आप ज्यादा निर्भर करते हैं अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो वो आपको हानि पहुंचाने के लिए काफी होता है। और हमने ये बात अभी हम नोटिस कर रहे हैं कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कि हम हमेशा ही मानते थे, दुनिया ये मानती थी कि ये अनइम्पीडेड कॉमर्स के लिए इसेंशियल है और इसलिए हमेशा खुला रहेगा, उसमें जिस तरह का बदलाव आया है, उसमें जिस तरह से ब्लॉकेड हुआ और उसको रोकने की कोशिश की गई, वो मुझे लगता है एक तरह से अलार्म बेल है दुनिया के लिए कि अगर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है जो इनिशिएटिव है ये एक तरह से ये दिखाने की कोशिश है दुनिया को कि जो चार जो पिवोटल पावर्स हैं हिंद प्रशांत की, वो इस बात को लेकर सीरियस है कि कैसे जो प्रत्येक देश के ऊर्जा क्षेत्र के संसाधनों को, उनकी क्षमताओं को पहचाना जाए और उनका लाभ उठाया जाए, साथ ही उनसे संबंधित जो रणनीतिक पेट्रोलियम प्रणालियां हैं उनको मजबूत कैसे किया जाए। तो कहीं पर जब हम चार देशों की बात

0: करते हैं, तो ये अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, उनको इकट्ठा करके आगे बढ़ने की जो कोशिश इसमें है वो नजर आ रही है।
1: प्रोफेसर, फ्यूचर टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एआई एंगेज इनिशिएटिव के तहत एग्रीकल्चर इनोवेशन और फूड सिक्योरिटी पर सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। क्या ये कहा जा सकता है कि क्वाड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ अब डेवलपमेंटल पार्टनरशिप की ओर भी बढ़ रहा है?
0: जो हम देख रहे हैं अभी क्वाड में जो हो रहा है उसमें मुझे लगता है एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि क्वाड न सिर्फ स्ट्रेटेजिक मुद्दों के ऊपर, सामरिक मुद्दों के ऊपर अपनी एक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि एक तरह से डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं उसको वापस किस तरह सेंटर में लाया जाए, कैसे इस डिस्कोर्स के सेंटर में लाया जाए, इसकी पहल काफी ज्यादा हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो इसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को किस तरह से डेवलपमेंटल प्रायोरिटी से जोड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि इससे आपकी सामरिक जो क्षमताएं हैं वो उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश, पर उससे किस तरह से इकोनॉमिक रेजिलियंस और डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को साधा जाए इसकी कोशिश हो रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो कोलैबोरेशन है इसमें हमने ये कोशिश देखी है इन चार देशों की कि एक ऑल्टरनेटिव मॉडल सेट करने की कोशिश है कि हम कि क्वाड जो कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, अपने हितों को साधने की कोशिश नहीं, बल्कि जो क्वाड कंट्रीज के एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी कैपेसिटीज हैं, उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उसको कैसे रीजन के लिए लेवरेज किया जाए, मुझे लगता है उसमें ये जो धारणा है इस क्वाड के इनिशिएटिव्स में। और जब हम एआई एंगेज इनिशिएटिव की बात करते हैं तो उसमें भी क्या आप कैसे एआई को, इमर्जिंग टेक को एग्रीकल्चर सेक्टर में लेवरेज कर पाएंगे, इसके ऊपर जिस तरह की रिसर्च होनी चाहिए, जिस तरह के फंड्स आने चाहिए, जिस तरह से इसको अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को हमको सशक्त बनाना है, काफी सारी जो इकोनॉमीज हिंद प्रशांत में है वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है, तो अगर हमको उन इकोनॉमीज को रेजिलियंट बनाना है, डेवलपमेंट को अपने सेंटर में रखना है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स की जरूरत बहुत ज्यादा है। और ये जो अल्टरनेटिव है कि क्वाड का मॉडल वो वाला मॉडल नहीं है कि जहां पर दूसरे देश आते हैं, पैसा देते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्सेज और चले जाते हैं। क्वाड का मॉडल अल्टीमेटली एक ऐसा मॉडल है जो कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश है दुनिया भर में, हिंद प्रशांत में, खासकर उन देशों में जो जिनके पास अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज कम है या जिनको हेल्प की जरूरत है। तो मुझे लगता है उस मामले में एआई एंगेज इनिशिएटिव बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, और एआई और इमर्जिंग टेक से आप कैसे अपनी डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज को साध सकते हैं उसके लिए बहुत अच्छा नमूना क्वाड देशों ने पेश।
1: प्रोफेसर, एक आखिरी सवाल क्वाड के भविष्य को लेकर अगर बात करें, और जिस तरह से हमने देखा कि आज फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद जिस तरह से मैरिटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, एनर्जी कनेक्टिविटी, इन सब क्षेत्रों में देखा गया कि कोऑर्डिनेटेड इनिशिएटिव्स सबने मिलकर लॉन्च किया है, कई ऐसे नए क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है जिसमें सहमति बन सकती है आने वाले समय में, क्या ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा संकेत था क्वाड के द्वारा कि आने वाले समय में इस ग्रुपिंग की इंस्टीट्यूशनल डेप्थ और बढ़ सकती है?
0: बिल्कुल, मुझे लगता है जितना विस्तृत क्वाड का एजेंडा आज हम देख रहे हैं और जिस तरह से क्रिटिकल एरियाज में क्वाड इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ इशारा है, उसमें ग्रेटर एंगेजमेंट की तरफ इशारा है, उसमें इशारा है कि कैसे आप ज्यादा क्लोजली काम कर सकते हैं एक साथ, अगर आप आए, चार बड़े देश आए और उसके बाद वो न सिर्फ अपने लिए काम करें बल्कि दूसरे देशों को भी एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करें, मुझे लगता है उसकी तरफ इशारा है। तो एंगेजमेंट है, एक्सपीरियंस शेयरिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, और उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जरूरत होगी, उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बढ़ेगा आगे, मुझे लगता है। ये बात कही गई शुरू में जब ये समिट शुरू हुआ कि कैसे एक क्वाड आइडियाज से निकलकर ऑपरेशनल इश्यूज पर, प्रैक्टिकल इश्यूज की तरफ मूव कर रहा है, और मुझे लगता है अच्छी शुरुआत है क्योंकि इससे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे ऑन द ग्राउंड ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा क्वाड मेंबर्स में, और वो देश जो क्वाड की ओर उम्मीद भरी निगाहें लगाए बैठे हैं कि क्वाड अगर अच्छा करेगा इन सेक्टर्स में तो उनसे उनका भी फायदा।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है आज की बैठक से ये बड़ा संदेश दे दिया गया है उन सभी को कि ये चार देश अभी सिर्फ वर्तमान की चुनौतियों का ही जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं बल्कि भविष्य की इकोनॉमिक रियालिटीज क्या होंगी और जियो पोलिटिकल रियालिटीज को भी शेप करने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए प्रोफेसर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दिल्ली फिर याद किया सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो से की पूजा ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। जिसे देखा नहीं उसने दिखा दी सारी दुनिया, जिससे मिले नहीं उसने बसा दी दुनिया। बिन देखे उसके पास आने का एहसास करता है बेचैन मुझे हर रात। होश कहाँ रहता है मुझे, दिल कहता है प्यार हुआ है मुझे। मन उसी ओर जाता है, खुद ब खुद कदम बढ़ जाते हैं प्यार की दुनिया में। दिल की आवाज़ कुछ यूं आती है, होठों पे ये नगमा लाती है। बड़े अरमान उसे रखा है बलम, तेरी कसम प्यार की दुनिया में ये पहला कदम।

प्यार में हमेशा एक दूसरे से सवाल करते हैं, कब तक साथ दोगे, क्या जीवन भर निभाओगे। लेकिन प्यार में भावनाएं होती हैं, प्यार में कुछ कहा नहीं जाता, सिर्फ किया जाता है। आत्मा से, दिल की गहराइयों से, जिसमें तड़प हो, समर्पण हो, साथ ऐसा जो जन्मों तक ना छूटे, जो शब्दों में ना समाए, सिर्फ महसूस किया जाए, ऐसा प्यार जिसकी उम्र चांद और सूरज की तरह हो, अमर हो, कयामत तक ना छूटे।

तो ताज ठुकरा दिए जाते हैं मोहब्बत के लिए। मोहब्बत का ये कमाल है कि सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। अगर चलना जिंदगी की नियति है तो मोहब्बत आधार है। सोचो, अगर दुनिया में मोहब्बत ना हो तो क्या होगा? क्या चांद अच्छा लगेगा? क्या नज़ारे खूबसूरत लगेंगे? ना रंग रहेंगे, ना रिश्ते रहेंगे, ना वादे रहेंगे, ना शिकायतें रहेंगी। इन सब का आधार सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। ना धन से, ना दौलत से, दुनिया चलती है सिर्फ मोहब्बत से।

मुझे अपने हर दर्द का हमदर्द बना लो, दिल में नहीं तो ख्यालों में बैठा लो, सपनों में नहीं तो आँखों में सजा लो, अपना एक सच्चा एहसास बना लो, बन जाओ हम सफ़र हम डगर हम राज बना लो, मुझे कुछ इस तरह से अपना लो कि अपने दिल की धड़कन बना लो, मुझे छुपा लो सारी दुनिया से, मुझे छुपा लो सारी दुनिया से ऐसे कि अपना गहरा राज बना लो, करो मुझसे मोहब्बत इतनी अपनी हर एक चाहत का अंजाम बना लो, रख दो अपना हाथ मेरे हाथों में इस तरह कि मुझे अपने जीवन का हम सफ़र बना लो।

पैगाम लिया है कभी पैगाम दिया है, आँखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है। न जाने क्या कशिश है उनकी मदहोश आँखों में, नज़र उनसे हटती ही नहीं, आँखों की लबों से भी जंग होती है। लब जो कहते चले जाओ तो आँखें रोक लेती है, आँखें बयां करती हैं दिल का हाल। न जाने क्या होता है जब सामने हो तुम, भूल जाते हैं सब, बस दिखता है तो आँखों में प्यार। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहने की तमन्ना दिल में रखते हैं, मोहब्बत में जुबा बंद हो जाती है, आँखें बात करती हैं।

हर मुलाकात पर वक्त का तकाजा हुआ, हर याद पे दिल का दर्द ताज़ा हुआ। सुनी थी सिर्फ हमने गज़लों में जुदाई की बातें, अब खुद पे बीती तो हकीकत का अंदाज़ा हुआ। जब प्यार में दो दिलों की मुलाकात होती है तो दिल कहता है कभी कभी ऐसे आया करो, चांद निकले तब जाया करो, आओ जाओ हमारी मर्जी से तुम, प्यार किया है तो नाज भी उठाएंगे हम। ठहरो ठहरो कि दिल को संभाल लूँ ज़रा, पलकों में तुमको छुपा लूँ ज़रा, तुम मिले तो कुछ ऐसी बात हो गई, कुछ नहीं था मेरे पास और ज़िंदगी से मुलाकात हो गई।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्र

0: निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षित कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंक

0: अमेरिकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
1: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसर्स एंड स्पॉन्सर्स।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया

0: है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। सीबीएसई ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रूपये से बढ़ाकर 1,580 रूपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration. Condemn terrorism in all its forms and manifestations.

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म जुर्म से। स्वर हैं कुमार शानू और साधना सरगम के, बोल हैं इंदिवर के।

इस गीत के साथ ही चित्रगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। उर्दू कार्यक्रम कहकशा अब भोपाल से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

आदाब, उर्दू प्रोग्राम कहकशा में मैं शीरीन खान आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, कहकशा सिर्फ सितारों के मजमुए का नाम नहीं, ये तो उन जज्बों की ताबिंदगी है जो एक इंसान को जमीन की पस्तियों से उठाकर रूहानियत की बुलंदियों तक ले जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी बजाते खुद एक सफर है, लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनकी मंजिल मिट्टी का कोई शहर नहीं बल्कि अल्लाह का कुर्ब होती है। आज का हमारा ये प्रोग्राम महज आवाजों का संगम नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी बज्म है जहां हम उस मुबारक सफर की कैफियत का जिक्र करेंगे जो सब्र की भट्टी से गुजरकर यकीन कामिल की रोशनी तक पहुंचता है। ये तस्किरा है उस तड़प का जो एक मोमिन को हरम की गलियों तक ले जाती है जहां हर कदम पर सब्र का इम्तिहान है और हर सांस में यकीन की खुशबू जो रूह की गहराइयों से शुरू होकर अल्लाह की रजा के उफुक तक जाता है। ये सफर हज हो या इश्क इलाही की कोई और पगडंडी, इसके लिए हमें दो ही चिराग दरकार होते हैं, एक सब्र की ढाल और दूसरा यकीन का चिराग। सब्र जो हमें पुरखार रास्तों में टूटने नहीं देता और यकीन जो अंधेरी राहों में नवीद मंजिल बनकर चमकता है। अल्लामा इकबाल ने इसी रूहानी बेदारी और बुलंद परवाजी को क्या खूब पेराए इजहार दिया है, नहीं है तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। समीन, इस प्रोग्राम की पहली पेशकश गुलुकारा रजिया बानो की आवाज में, कलाम है ताबिश कानपुरी का, समाप्त कीजिए।

दोस्तों अभी आप रजिया बानो की आवाज में कव्वाली समाअत फरमा रहे थे और कलाम था ताबिश कानपुरी का। हम बात कर रहे थे रूहानी सफर और सब्र के बारे में। रूहानी मसाफात का अवलीन जीना खुलूस

मुख्तलिफ रंग में सारी दुनिया से है सिलसिला आपका सारी हर मेरे

दोस्तों भी आप महमूद निजामी और साथी की आवाज में कव्वाली समाअत फरमा रहे थे। हम बात कर रहे थे सब्र की। सब्र के कठिन रास्ते पर जब इंसान थकने लगता है तो उसे जिस सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है यकीन, जो इस कहकशा का सबसे रोशन सितारा है। यकीन वो ताकत है जो तपते हुए सहराओं में भी ठंडक का एहसास दिलाती है। जब बंदाए मोमिन लब्बैक की सदा बुलंद करता है तो उसे कामिल भरोसा होता है कि उसकी पुकार अर्शे मौला तक रसाई पा चुकी है। ये यकीन ही है जो उसे हुजूम में तन्हा नहीं होने देता और तन्हाई में अल्लाह के करीब कर देता है। यकीन वो नूर है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है। जब हम मकामे इब्राहिम पर खड़े होते हैं या सफा मरवा के दरमियान दौड़ते हैं तो दरअसल हम उस यकीन की तारीख को दोहरा रहे होते हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम का शेवा था। रूहानी सफर हमें दर्स देता है कि अगर यकीन कामिल मयसर हो तो बेआबो गया वादियों से भी चश्माए जमजम फूट सकता है। जब इंसान यकीन की मेराज पर होता है तो नामुमकिनात भी मुमकिन होने लगती हैं। यकीन हमें तूफानों में साहिल की उम्मीद और मौजों में साबित कदमी अता करता है। रूहानी सफर का मुसाफिर तभी बामुराद होता है जब उसका यकीन संगे गिरा की तरह मजबूत हो। अल्लामा इकबाल ने इस यकीन को हयात इंसान की शमशीर करार दिया है। यकीन महकम अमल पाहम मोहब्बत फातेह आलम जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। सामीन इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मुनव्वर मासूम कव्वाल की आवाज में और कलाम है हनीफ भोपाली का, समाप्त कीजिए।

दोस्तों अभी आप मुनव्वर मासूम कव्वाल की आवाज में कव्वाली समाअत फरमा रहे थे और कलाम था हनीफ भोपाली का। दोस्तों किस कदर दिलकश है वो लम्हा जब सब्र और यकीन हम आगोश होकर इंसानी तकदीर बदल देते हैं। ये रूहानी सफर दरअसल अपनी जात की बाजियाबी का नाम है। जब हम कायनात के रंगों में सनाए के रंग तलाश करने लगते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। हमें एहसास होता है कि दुनिया की हर शय फानी है, सिर्फ अल्लाह का इश्क और उसका कुर्ब ही दायमी है। जिंदगी के शोर में अपने अंदर की आवाज सुनना और इस पर यकीन रखना ही वो असल कामयाबी है जिसे पाने के लिए सूफिया इकराम ने अपनी उम्रें गुजार दी। जब दिल नूरे इलाही से मुनव्वर हो तो बेसाख्ता जबान पर ये शेर आ जाते हैं। निगाहे शौक को वो कैफो सुरूर मिल गया, मेरे सब्र को आज तेरा नूर मिल गया। समीन इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गुलकार जानी बाबू की आवाज में और कलाम है पयाम सईदी का, समाप्त कीजिए।

होती। हम इस अहद के साथ रुखसत होंगे कि जिंदगी के हर सफर, चाहे वो जाहिरी हो या बातिनी, हमेशा सब्र और यकीन के सहारे ही तय किया जाता है। अल्लाह ताला हमें इस पाकीज़ा सफर की लज्जतें नसीब फरमाए और कल्ब को वो इस्तेहकाम यकीन अदा करे जो लग्जिशों से महफूज रहे। याद रखिए, मशीयत इलाही में ताखीर तो हो सकती है मगर नाइंसाफी नहीं। बस थोड़ा सा सब्र और ढेर सारा यकीन ही हमारी कामयाबी की जमानत है। रूहानी सफर तो सांसों की डोरी की साथ साथ जारी रहेगा, बस हमें अपने दिलों को शक और बेचैनी के गुबार से पाक रखना है। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, आपके खुलूब में सुकून की चंद बीज बो गए होगा। अपने तासरात और कदर तजावीज हमें खतूत के जरिए जरूर भेजें। हमारा पता नोट फरमाइए, उर्दू प्रोग्राम कहकशा मार्फत, स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड है 462002। उर्दू प्रोग्राम कहकशा को बरोज मंगल रात 9:30 बजे सुनना ना भूलें। अब अपनी दोस्त शीरीन खान को दीजिए इजाजत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी जिंदगी की कहकशा को महकाते रहें। आदाब।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम मन भावन।

0: श्रोताओं, मन भावन कार्यक्रम में आपके पत्र और आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी पूजा ठाकुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर बॉबी फिल्म का गीत। स्वर है लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह के, बोल है आनंद बख्शी के, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। और इस गीत की फरमाइश की है हमें कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली ने। नांदखेड़ जिला वासीम से लिख भेजा है हमें अशोक चुंगले, दिनेश, रूपेश, लीलाबाई, चैताली और प्रीति वांदने ने। बड़भूंजी जिला आगर मध्य प्रदेश से लिख भेजा है हमें रघुनाथ मालवीय, भवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, दुर्गा, श्याम बाबू, भावना, आयुष, उमंग और ओम प्रकाश ने। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से इसी गीत की फरमाइश की है बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ से वैष्णो कॉलोनी सनावत से लिख भेजा है हमें मोहम्मद शादिक, मुस्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनंजय, राहुल कुमार, विशाल, शीला और गायत्री धनंजय। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी, महिमा और नीतू वैद ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

हीर रांझा इस फिल्म का गीत सुनिए, अनवर और लता मंगेशकर के स्वर में, बोल है आनंद बख्शी के, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। और इस गीत की फरमाइश की है हमें नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से सुभाष चंद्र बजाज और बिट्टा बजाज। शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से लिख भेजा है हमें विजय महोबिया, कविता, संजय, नंदनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज महोबिया और भैयू दादा ने। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, मेंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा ने। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सनावत मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव एवं काव्यांशी कटारिया। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत की फरमाइश किए हमें हरदेव मिक्का, बलविंदर बिरक, जेतक और मिक्का बिरक ने। दयापुर बाबली महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं गजानन येले, नवदीप येले और शेरी वर्नेर अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कामचोर इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में। बोल है इंदिवर के, धुन है राजेश रोशन की और इस गीत की फरमाइश की है हमें छत्तीसगढ़ भाटा पारा दंतेरी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। सुराना

जिला रतलाम से शेख हैदर खान, शकीला रुखसार और मोहम्मद आरिश ने इसी गीत को पसंद किया है। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर ने लिखने वाले हैं उत्तराखंड जसपुर से। बोरी खुर्द से लिख भेजा है हमें श्री सुधाकर राजदेव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, जगुताई, साक्षिताई, सचिन, प्रथमेश देशमुख, स्वामी देशमुख, प्रणाली देशमुख और सानवी देशमुख ने। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से लिख भेजा है हमें मनमोहन राजावत, राज, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रीचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार ने। इसी कड़ी में जुड़े हैं जिला उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश। वंदना नगर इंदौर से सुनना चाहते हैं रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। नांदेड़ से लिख भेजा है हमें गौतम नगर से प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले ने। इसी कड़ी में जुड़े हैं महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के और हनुमान बोड़के। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

येसुदास के स्वर में सुनिए चिच्चोर फिल्म का ये गीत। धुन है रविंद्र जैन की और बोल में है रविंद्र जैन की, और इस गीत की फरमाइश की है हमें घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमंत और सनमति पंचोलिया ने। ओम साई राम रेडियो श्रोता संघ झुमरी तलैया से देव इंगोले, छकुली और आरडी इंगोले। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्तबा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सपना संगीतारोह इंदौर से सुनना चाहते हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य और मन पटेल। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक एवं समस्त डागला परिवार। मुखर्जी नगर इंदौर से सुनना चाहते हैं जगदीश चौहान पेंटर, ललिता, अन्नू, विशाल, उर्वशी, कुमारी प्रियंका, प्रियांशी, ऋतिक, लक्की, शौर्य, बसंतीबाई, किशनलाल, महेंद्र और मालती चौहान। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और श्रीमती शीतल राजेश। महादेव घाट अमलेश्वर से सुनना चाहते हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज ठाकुर, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में श्रोताओं आइए सुनते हैं गायन पंडित त्र्यंबक राव जानोरेकर का, राग है सावनी कल्याण।

0: अभी आप सुन रहे थे गायन पंडित त्रयंबक राव जानूरीकर का, राग था सानवी कल्याण।
1: केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं

0: को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said, while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
3: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन एंड सिमिलर एरियाज थ्रेट विद इन द नेक्स्ट सिक्स मंथ हाउएवर सिंस दीज ड्रोन इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल
2: परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: मिस्टर शाह सेड स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज इन्वॉल्वड। ही स्ट्रेस्ड दैट सिंस द ड्रोन्स लैंड इन द इंडियन टेरिटरी क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द लोकल पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई दोज रिसीविंग सच कंसाइनमेंट्स एंड न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स इफेक्टिवली। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of the State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism. Foreign Affairs Minister of Australia Penny Wong today called on Prime Minister Modi in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi discussed the growing India-Australia comprehensive strategic partnership in areas such as defence, trade, technology and ensuring supply chain resilience. The Prime Minister said India and Australia will work together to continue for the work for free, open, secure and prosperous Indo-Pacific. The Ministry of Railway has given its order to start operations of the country's first hydrogen-powered 10-coach demo train. It will run at a maximum speed of 75 km per hour between Jind and Sonipat under the Northern Railway Zone. The train will use hydrogen fuel cells to generate power instead of diesel or electricity-based traction. The government has revised the minimum assured procurement price MAPP of onion stocks from 1,000 to 70 rupees to 1,580 rupees per quintal. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 106 for 8 in 12.4 overs when reports last came in. And Gujarat Titans won the toss and elected to bat. And that's the end of the news bulletin.
4: मीडियम वेव 462.9 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। आज की हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:51 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।